सुप्रभात, ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज दिन गुरुवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 11वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 2 जुलाई सन 2026। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:59 और 30 सेकंड्स हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की यह सभा। आप सबका दिन मंगलमय हो। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री तकाइची कल शाम भारत की 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में सहायता मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि पिंस प्रक्रिया खराब मौसम और जमीनी नेविगेशन सहायता उपलब्ध न होने की स्थिति में विशेष रूप से उपयोगी है। इसका विकास भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने किया है। झारखंड में पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया है। सरकार ने सभी उपायुक्तों को वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में बुखार का सर्वेक्षण, मलेरिया की त्वरित जांच और मरीजों के समय पर इलाज के निर्देश जारी किए हैं। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा आज से शुरू हो रही है। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। और डूरंड कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। ये पहला मौका है जब डूरंड कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। इसके अलावा फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने DR कांगो को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अटलांटा में खेले गए मुकाबले में कप्तान हैरी केन ने मैच के अंतिम 15 मिनट में 2 गोल दागकर इंग्लैंड को रोमांचक जीत दिलाई। अंतिम 16 में इंग्लैंड का मुकाबला 6 जुलाई को सह मेजबान मैक्सिको से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है आज का चिंतन, विषय है अध्ययन ज्ञान का आधार।

आज का युग प्रतियोगिता का युग है। सबके सब मानो दौड़ लगा रहे हैं और हर आदमी येन केन प्रकारेण दूसरे से आगे निकल जाना चाहता है। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया भाग रही है और सबको मंजिल तक पहुंचने की भीषण हड़बड़ी है। नियम कायदे कर्तव्य की किसी को चिंता नहीं, बस गंतव्य तक पहुंच जाना है चाहे जैसे भी हो। रास्ते की महत्ता तो खत्म हो गई, मगर यह सही दृष्टि नहीं है। कल्पना करें कि दो आदमी नदी में बहे जा रहे हैं, एक सिर्फ हाथ पैर फेंकने की धुन में है और जल्दी ही जल्दी किनारे तक पहुंच जाना चाहता है, जबकि दूसरा बहा भी जा रहा है और अगल बगल के परिवेश को देखता भी जा रहा है। उसके लिए मंजिल तक किनारे तक पहुंचना ही काफी नहीं है, रास्ते की भौगोलिक प्राकृतिक स्थितियों का ज्ञान भी प्राप्त करना है। मगर आज के यांत्रिक युग में रास्ते को महत्व देने की न तो किसी को इच्छा है, न अवसर, न उतनी फुर्सत। बस दो चार हाथ मारे और किनारे लगे। यह आदमी सफल आदमी तो कहला सकता है, पर ज्ञानी नहीं। आज विद्या अध्ययन के क्षेत्र में यह अराजकता सबसे ज्यादा है। छात्रों को अध्ययन में कोई रुचि नहीं, वे तो जल्द से जल्द परीक्षा पास कर लेना चाहते हैं, गेस पेपर, प्राइवेट ट्यूशन आदि के शॉर्टकट से। शिक्षकों को भी न तो छात्रों को ज्ञान देने में कोई रुचि है, ना फुर्सत। वे तो कोचिंग वगैरह के रूप में दुकान खोले बैठे हैं। हर तरह का इंतजाम है वहां छात्रों को शॉर्टकट से परीक्षा की वैतरणी को पार कराने के लिए। इसलिए महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों को अधिक से अधिक ग्रेजुएट उत्पादित करने वाली फर्म कहा जाए तो कोई गलती नहीं होगी। विद्या एक ऐसा धन है जिसकी तुलना संसार के किसी भी धन से नहीं की जा सकती है, पर इसे पाने के लिए कठोर परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है। कहा भी गया है, विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना हिलाए ना डुले जो पंखे का पौन। पर डिग्री पाने की लालसा में भ्रमित छात्र अध्ययन जरा भी नहीं करना चाहते। ज्ञान से उन्हें कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसे पाने का रास्ता शॉर्टकट नहीं है, लंबा है, परिश्रम की मांग करता है। महाभारत में एक बड़ी रोचक और प्रासंगिक कथा है। यवकृत नामक एक ऋषि कुमार बिना अध्ययन किए अनायास वेदों का प्रकांड ज्ञाता बनना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। आखिर इंद्र को उसके समक्ष आना ही पड़ा। उन्होंने उसे इस कठोर तपस्या का कारण पूछा और जब ऋषिपुत्र ने उन्हें अपनी अदम्य

बालू इसीलिए समुद्र में फेंक रहा हूं कि यह भर जाए तो मैं पार कर सकूं। यवक्रीत को लगा कि यह बुढ़ा पागल हो गया है। उसने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारा मस्तिष्क तो खराब नहीं हो गया बाबा? मुट्ठी भर बालू से तुम समुद्र भर दोगे? बूढ़े ने, जो स्वयं इंद्र थे, छूटते ही कहा, हे ऋषिपुत्र, जब तुम बिना अध्ययन किए सिर्फ तपस्या करके चारों वेदों के प्रकांड ज्ञाता बन जाने का दुस्साहस पाल सकते हो, तो मैं मुट्ठी मुट्ठी बालू डालकर समुद्र क्यों नहीं भर सकता? ऋषिपुत्र को मानो ज्ञान का बोध हुआ। उस दिन तपस्या छोड़कर वह अध्ययन चिंतन में लग गया। कहने का तात्पर्य यह कि हर काम उचित तरीके से ही होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य डिग्री प्राप्त करने मात्र से पूरा नहीं हो जाता। बिना विषयों के गहन अध्ययन के डिग्री मिल सकती है, ज्ञान नहीं।

आप सुन रहे थे आज का चिंतन, विषय था अध्ययन ज्ञान का आधार। FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

आपने ट्यून किया है 102.1 मेगाहर्ट्ज़ और इस वक्त आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। लीजिए पेश है कार्यक्रम का अगला भक्ति गीत।

आपने ट्यून किया 102.1 मेगाहर्ट्स और इस वक्त आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। और अब लीजिए पेश है कार्यक्रम का ये आखिर

आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान की आज की कड़ी।

वाणकुलित मानस को गोस्वामी तुलसीदास ने मानस सरोवर का रूपक रूप दिया है, जिसके चार मनोहर घाट हैं। घाट की संज्ञा उन संवादों को दी है जिनकी रचना काक भुशुंडी गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्क भरद्वाज तथा स्वयं तुलसी सरीखे अन्य संतों ने की है। रामायण के सात कांड इस सरोवर की सात सीढ़ियां हैं तथा श्री राम की महिमा उसकी अटल गहराई है। श्री राम और सीता का सूरज इसका निर्मल जल है और उपमा अलंकार इसकी मनोहर तरंगे हैं। रामचरित मानस की चौपाइयों में कमलिनी का विस्तार है और इसके छंद सुरथे तथा दोहे कमल के बहुरंगे फूलों की सुषमा लिए हुए हैं। इनमें वर्णित ज्ञान वैराग्य और विचारों की तुलना हंसों से की गई है। काव्य की ध्वनि वक्रोक्ति तथा प्रभावशाली गुण मानस सरोवर की मछलियां हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष ज्ञान विज्ञान का विचार वर्णन काव्य के नौ रस जप तप योग और वैराग्य अन्य जलचर प्राणी

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान की आज की कड़ी। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। अब आइए हम आपको बता दें आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की एक संक्षिप्त रूपरेखा।

सुबह 7 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग। सुबह 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे सर्वाइकल कैंसर कारण लक्षण और बचाव। सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत संगीत। सुबह 8 बजे आप सुनेंगे मॉर्निंग समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। उसके बाद आप सुनेंगे 8:30 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 8:45 में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी। सुबह 9 बजे आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों को आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। सुबह 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो हजारीबाग। सुबह 11 बजे से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों को आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक रंग, लोक गीतों का यह कार्यक्रम है और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। लीजिए पेश है कार्यक्रम का ये आखिरी लोकगीत मनोज तिवारी की आवाज में।

0: अभी आप सुन रहे थे लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे भेंट वार्ता। विषय है सर्वाइकल कैंसर, कारण, लक्षण और बचाव। इस बारे में विस्तार से जानकारियां दे रही हैं डॉक्टर चित्रांगदा सिंह, और इनसे हमारी ओर से बातें की है हमारे सहयोगी संजय कुमार केसरी ने। तो आज आप सुनेंगे इस भेंट वार्ता का पुनर्प्रसारण।
1: दोस्तों, सर्वाइकल कैंसर भारतीय महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे बड़ा कैंसर है। इससे सालाना लगभग 74,000 महिलाएं मौत की शिकार हो जाती हैं, जो विश्व के आंकड़ों का लगभग एक तिहाई है। तो दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम इसी विषय पर बात करेंगे, और इस गंभीर विषय पर बात करने के लिए हमारे बीच आज मौजूद हैं हजारीबाग की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चित्रांगदा सिंह। तो मैडम, आज के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए।
1: मैडम, सबसे पहले हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि ये सर्वाइकल कैंसर, जिसे हम गर्भाशय के मुंह का कैंसर के नाम से भी जानते हैं, ये होता क्या है?
2: सर्वाइकल कैंसर गर्भाशय के निचले हिस्से, जिसको कि सर्विक्स कहते हैं, में होने वाला एक कैंसर है। ये महिलाओं में पाए जाने वाले कैंसरों में एक प्रमुख कैंसर है, जो ब्रेस्ट कैंसर के बाद सबसे कॉमनली भारतीय जनता में पाया जाता है।
1: जैसा कि अभी आपने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर के बाद ये महिलाओं में पाया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा कैंसर है, तो ये कैंसर किसे होता है? किस आयु वर्ग की महिलाएं इस तरह के कैंसर से पीड़ित होती हैं?
2: सर्वाइकल कैंसर या सीए सर्विक्स जिसे कहते हैं, वो दो उम्र में के लोगों में मिलता है। एक जो 35 से 39 साल के बीच में हो, और एक दूसरा पीक जो 50 से 55 साल के बीच में होता है। इस कैंसर का मुख्य कारण एक वायरस, जिसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं, उसका संक्रमण है। यह वायरस यौन संपर्क में आने के माध्यम से फैलता है। लोगों की इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा प्रणाली की वजह से यह सामान्यतः यह संक्रमण खुद पे खुद ही समाप्त हो जाता है, किंतु अगर यह लंबे समय तक शरीर में रह जाए तो कैंसर का रूप ले सकता है।
1: कौन ऐसी महिलाएं हैं जिनमें सर्वाइकल कैंसर होने की संभावनाएं जो हैं वो सबसे अधिक होती हैं?
2: जिनमें महिलाओं में HPV वायरस का संक्रमण ज्यादा हो, जैसे कि अगर विवाह कम उम्र में हो, अगर यौन संबंध की शुरुआत कम उम्र में हो, एक से अधिक या सेक्सुअल पार्टनर्स होने से, धूम्रपान, कई बार जो हमारे निचले वर्ग की महिलाएं होती है उनमें, या कमजोर प्रतिरक्षा क्षमता वाली जो महिलाएं होती है उनमें यह कैंसर होने की चांसेस ज्यादा है।
1: वो महिलाएं सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित होती हैं, तो उनके शरीर में प्रारंभिक लक्षण क्या दिखलाई देते हैं?
2: कई बार शुरुआती दौर में कुछ लक्षण नहीं भी दे सकते हैं। जैसे जैसे समस्या बढ़ती है, उन सारे महिलाओं में मासिक धर्म में अनियमितता, या संभोग के बाद रक्तस्राव, मेनोपॉज के बाद दोबारा ब्लीडिंग शुरू होना, कई बार योनि में से असामान्य रूप से सफेद पानी का रिसाव होना, कमर दर्द या पेट के निचले हिस्से में पेल्विक एरियाज में दर्द होने की संभावना रहती है।
1: मैडम, आगे हम ये जानना चाहेंगे कि मेडिकल साइंस में सर्वाइकल कैंसर को लेकर किस प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं, कैसे उसका पता लगाया जाता है?
2: सामान्यतः 35-30 साल की उम्र के बाद पैप्समेयर बोल के एक टेस्ट किया जाता है, जिससे सर्विक्स में किसी भी एबनॉर्मल सेल्स के बारे में पता लगता है। जब हम पैप्समेयर करते हैं तो हम इसी के साथ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वो प्रजातियां जिसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर होते हैं उनका भी पता लगा सकते हैं। तो नियमित जब हम 30 साल के बाद, हर 5 साल के बाद पैप्समेयर करते हैं, तो हम कैंसर सर्विक्स को स्क्रीन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी के पैप्समेयर में कुछ रिजल्ट्स एबनॉर्मल आते हैं, तो उन्हें हम फिर कॉल्पोस्कोपी या फिर बायोप्सी के द्वारा यह पता कर सकते हैं कि उनमें सीए सर्विक्स या कैंसर सर्विक्स होने की संभावना कितनी है।
1: और अगर हम इसके इलाज की बात करें, तो मेडिकल साइंस में सर्वाइकल कैंसर के निदान के लिए क्या

0: क्या इलाज है?
1: सर्वाइकल कैंसर को स्टेज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि वो कहाँ तक फैला हुआ है, वो
0: किस
1: स्टेज पे है, और उसका ट्रीटमेंट भी स्टेजिंग के हिसाब से, शुरुआती दौर में जिसे स्टेज 1A1, 1A2 या 1B1 को सर्जरी करके ठीक किया जा सकता है। इस सर्जरी में यूट्रस, जिसे बच्चेदानी कहते हैं, और आसपास की जो चीजें हैं जिसे लिम्फ नोड्स, पैरामेट्रियम, उसे निकालने की जरूरत पड़ती है। स्टेजिंग बढ़ने पे सर्जरी ना करके रेडियोथेरेपी देने की जरूरत पड़ती है। तो शुरुआती दौर में सर्जरी और बाद की अवस्था में रेडियोथेरेपी करके कैंसर सर्विक्स को ट्रीट किया जा सकता है।
0: महिलाएं क्या करें जिससे वो सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से अपने आप को बचा सके?
1: ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, तो ये 9 से 14 वर्ष की लड़कियों को या फिर जिनकी उम्र ज्यादा भी हो उन्हें लगवा लेना चाहिए, तो ये रोकथाम के लिए बहुत कारगर है। इसके बाद जैसे जैसे उम्र बढ़े तो रेगुलर पैप्समियर कराते रहना चाहिए, जिससे सर्विक्स में किसी भी एबनॉर्मल सेल्स के बारे में हमें पता लगेगा। एबनॉर्मल सेल्स का उपचार कॉल्पोस्कोपी या बायोप्सी करा के कर लेना चाहिए, इससे हमें रेगुलर स्क्रीनिंग करके हम कैंसर सर्विक्स का पता लगा सकते हैं। कैंसर सर्विक्स के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लक्षण शुरू होने और कैंसर सर्विक्स डेवलप करने के बीच में 10 साल का समय लगता है, तो यह एक अकेला कैंसर है जिसको हम स्क्रीनिंग से बचाव कर सकते हैं।
0: कोई महिला सर्वाइकल कैंसर से ग्रसित है तो इलाज के बाद क्या वो गर्भधारण कर सकती है या गर्भधारण में किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है?
1: कैंसर सर्विक्स का जो एज ग्रुप है 35 to 39 ईयर्स, या जो एक दूसरा एज ग्रुप है 50 एंड बियॉन्ड, तो जो महिलाएं रिप्रोडक्टिव एज में है अगर उनको कैंसर का पता शुरुआती दौर में लगता है तो कंजर्वेटिव सर्जरी करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में जहां सर्विक में कैंसर हो सिर्फ उसी हिस्से को निकाला जा सकता है, तो ऐसी महिलाएं एक बार ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद गर्भधारण कर सकती हैं। पर हाँ, कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं या उनमें समय से पहले डिलीवरी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो उसके लिए उन्हें रेगुलर चेकअप कराते रहना होगा।
0: आम लोगों के बीच ये धारणा है कि कैंसर बहुत ही गंभीर बीमारी होती है, इसमें लोगों की मृत्यु तक हो जाती है, तो सर्वाइकल कैंसर को लेकर क्या आप कहना चाहेंगे? ये किस तरह की बीमारी है? क्या यह पूर्णतः इनका इलाज संभव है मेडिकल साइंस में?
1: कैंसर के लिए अगर पूछे तो निश्चय ही ये बहुत गंभीर बीमारी है, जिन पे बीतती है वही जानते हैं। कैंसर सर्विक्स के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि यही एक कैंसर है जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, वैक्सीन लेके, रेगुलर टेस्ट करा के, अगर शुरुआती दौर में पता लग जाए सर्जरी करा के इसे ठीक किया जा सकता है। जब कैंसर की ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो हम हमेशा पूर्णतः इलाज की बात नहीं करते, हम प्रिकॉशंस के या हम कितने दिनों तक कैंसर फ्री रहती है इस बारे में भी बात करते हैं। कैंसर का इलाज बहुत कुछ स्टेजिंग पे डिपेंड करता है। इनिशियल स्टेजेस में पता रहने पे पेशेंट का आउटकम जो है वो डेफिनेटली अच्छा है, लेट स्टेजेस में अगर पता लगे उसका सर्वाइवल रेट डिफरेंट है अगर वो अर्ली स्टेजेस से हो, तो हम ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि पूर्णतः खत्म कर पाएंगे या पूर्णतः इलाज कर पाएंगे, मगर हाँ, इलाज जरूर होता है और इलाज बहुत कारगर है।
0: और अंत में मैडम, हम आपसे कहना चाहेंगे कि समाज में महिलाएं, बच्चियां सर्वाइकल कैंसर को लेकर जागरूक हों, अपने आप को इस तरह के गंभीर बीमारी से बचा सकें, इसके लिए आप उनके बीच क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: मैं सारी महिलाओं को यह संदेश देना चाहूंगी कि कैंसर सर्विक्स ही एक ऐसा कैंसर है जिसके लिए यदि हम समय पे स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट कराएं तो ये पूर्णतः प्रिवेंट किया जा सकता है। आपके घर में जितनी बच्चियां हैं जो 9 से 14 साल के बीच में हो, उन्हें जरूर टीका केंद्र में ले जाएं और HPV का वैक्सीन दिलाएं, सुरक्षित यौन संबंध बनाएं, पैप स्मियर रेगुलरली 30 साल के बाद, हर 5 साल के बाद कराते रहें। जब हम जागरूक बनेंगे तभी हम इस कैंसर से लड़ पाएंगे। डरने की जरूरत नहीं है। यदि आपको किसी भी तरह की परेशानी हो, खासकर अगर आपको पीरियड्स को लेके कोई दिक्कत हो रही हो, अगर है ना आपको बहुत वाइट डिस्चार्ज या सफेद पानी आ रहा हो जिसमें से बदबू आ रही हो, तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिले और जाने कि आपके लिए उपचार की क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है। हम जागरूक बनेंगे तभी हम इस कैंसर से लड़ पाएंगे।
0: तो मैडम, जिन लक्षणों के बारे में आज के इस कार्यक्रम में आप जो चर्चा की है, अगर वो लक्षण किसी भी महिला में या फिर किसी भी बच्चियों में ये दिखलाई देते हैं, 9 साल से 15 साल की बच्चियों में, तो उन्हें अवश्य जो है एक बार महिला चिकित्सक से मिलकर अपना इलाज अपना टेस्ट जो है वो जरूर करवाना चाहिए ताकि इस तरह की गंभीर बीमारी से वो बच सके।
1: बिल्कुल, कैंसर सर्विक्स से लड़ना हम सब की जिम्मेदारी है। हम जानते हैं कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, वैक्सीन ले सकते हैं, वैक्सीन बहुत जरूरी है। अपने बच्चों को जाएं, वैक्सीन दिलवाएं, अपना पैप स्मेयर करवाएं, तभी हम इस कैंसर से लड़ पाएंगे।
0: तो मैडम, आज के इस खास कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़ी और महिलाओं में होने वाले दूसरे सबसे बड़े कैंसर सर्वाइकल कैंसर से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आप हमारे श्रोताओं के बीच में साझा की, इसके लिए एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आप सबको इस कार्यक्रम को सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता। इसके अंतर्गत आज आपने सुना भेंट वार्ता, विषय था सर्वाइकल कैंसर, कारण, लक्षण और बचाव। इस बारे में विस्तार से जानकारियां दे रही थी डॉक्टर चित्रांगदा सिंह और इनसे हमारी ओर से हमारे सहयोगी बात कर रहे थे संजय कुमार केसरी।

0: FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं सोनू निगम को।
1: जो कभी तपिश, कभी खलिश और कभी घुटन बनकर हमेशा सताते हैं, इसीलिए जो कहना है कह दो, वरना ये अनकही यादें बनकर तमाम उम्र तुम्हारा पीछा करेंगी।

0: आपने ट्यून किया 102.1 मेगाहर्ट्ज़ और इस वक्त आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत संगीत। हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम के शेष गीत इन जरूरी संदेशों के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
3: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
2: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
3: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
2: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
0: जरूरी संदेशों के बाद आपका एक बार फिर से कार्यक्रम गीत संगीत में स्वागत है। लीजिए पेश है कार्यक्रम का अगला गीत अभिजीत की आवाज में।

आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत संगीत आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। लीजिए पेश है कार्यक्रम का अगला गीत अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में।

अभिजीत और साथियों की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। और अब आइए कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं पंकज उदास की गाई

पंकज उदास के गाए इसी गीत के साथ ही गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। उसके बाद आप सुनेंगे 8:30 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। तो हमारे इन प्रसारणों की कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची के साथ आज नई दिल्ली में वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के दो तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल हैं। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय आदान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री तकाईची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। 12वीं उपसमिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बढ़ाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर जोर दिया गया है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
2: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त तो नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख रहे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कल नए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने अवकाश प्राप्त एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है। श्री नागेश कपूर 4 दशक से वायुसेना में हैं। उनके पास 3,500 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव है। उधर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने थलसेना उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक बढ़ा दिया है। श्री मिस्त्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। यह हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
3: नई व्यवस्था के अंतर्गत केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ही पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी पंपों से ईंधन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS6 से निचले स्तर के सभी मोटर वाहनों के राजधानी में प्रवेश और संचालन पर रोक रहेगी। वहीं सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन और पर्यावरण विभाग द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त श्रेणियों के वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सर्दियों के दौरान अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्माण गतिविधियों, धूल प्रदूषण और खुले में कचरा या पत्तियां जलाने पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डिजी रोवर की शुरुआत की है। ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल दिल्ली में डेंगू की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और नगर निकाय डेंगू के मामलों में संभावित वृद्धि से निपटने के लिए तैयार हैं। जयपुर में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों के वितरण के लिए समाप्त होगा। ये पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों द्वारा ई गवर्नेंस संबंधी उत्कृष्ट पहलों के लिए प्रदान किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। कश्मीर घाटी के बालतल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बम बम भोले के नारे लगाते हुए एकत्रित हुए। 57 दिन की ये वार्षिक तीर्थयात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गों पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है और 28 अगस्त तक चलेगी। ये यात्रा अनंतनाग जिले के नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालतल से होकर गुजरती है। तीर्थयात्रियों को केवल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर ही यात्रा करनी होगी। मुगल रोड और धार रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों पर तीर्थयात्रा का आवागमन वर्जित है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण जारी है और यात्रा से पहले लगभग 4 लाख तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। खेलों में फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलीमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही

0: 20 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। दो क्वार्टर फाइनल, एक सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले कोलकाता में होंगे। ये पहला मौका है जब डूरन कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सामाजिक न्याय के अग्रदूत डॉक्टर सोनूलाल पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर सोनूलाल ने असमानता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का सशक्त संदेश दिया। केंद्र सरकार ने असम में हाल ही में बाढ़ से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सबसे ज्यादा प्रभावित धेमाजी जिले सहित पूरे राज्य में बाढ़ से हुए आरंभिक नुकसान का जायजा लिया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। कर्नाटक के तटीय भाग, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले दो दिन में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुबह बारिश के साथ हुई। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, इससे दिल्लीवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: धन्यवाद फरहत। कमर्शियल गैस, एटीएफ राहत, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर इंतजार। जुलाई के पहले सप्ताह ही जेब पर पड़ेगा अच्छा असर, राजस्थान पत्रिका की खबर है। प्रदूषण हो या ना हो, 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम, दिल्ली में ग्रैब की पाबंदियां 4 महीने तक स्वतः लागू रहेंगी। हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की आज सुर्खी बनी है। मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी का कार्यकाल बढ़ा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई तक बढ़ाई समय सीमा, वीर अर्जुन की खबर है। दोहा में मध्यस्थों के जरिए अमरीका और ईरान में बातचीत, देश बंधु की सुर्खी है। भारत पहुंची जापान की पीएम, रणनीतिक संबंधों पर जोर, पीएम मोदी के साथ शिखर वार्ता आज, दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की खबर है। आयात के दम पर जीएसटी संग्रह 14% बढ़ा, वृद्धि की रफ्तार 13 माह में सबसे तेज। चुनौतियों के बावजूद विदेशी उत्पादों के बंपर आयात में जून में भरी सरकार की झोली, अमर उजाला के कारोबार पन्ने की ये खबर ध्यान खींचती है। आज और कल भी कभी भी एनसीआर में दस्तक दे सकता है मानसून, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रवेश के बाद अगली मंजिल एनसीआर, हरियाणा और पंजाब, दैनिक जागरण ने यह खबर सचित्र दी है। अमर उजाला लिखता है, उत्तराखंड में भारी बारिश से केदारनाथ हेली सेवा स्थगित, उड़ाने डायवर्ट, चारधाम यात्रा में कुछ ही दिनों में अंतर दिखने का समाचार दैनिक भास्कर ने आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 20 दिन में बदली तस्वीर दर्शनार्थियों की दौड़ में, केदारनाथ से आगे निकला बद्रीनाथ। छोटे शहरों में ऑनलाइन खरीदारी का क्रेज, कंपनियां बढ़ा रही हैं निवेश, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। वीर अर्जुन ने ग्राम सभा पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, गांव की लोकतांत्रिक आत्मा क्या कागजों पर सिमट रही है, ग्राम सभाएं। लेख में कहा गया है कि ग्राम सभा को विकास कार्यों के सोशल ऑडिट का वास्तविक अधिकार मिलना चाहिए। जब लोगों को दिखेगा कि उनके द्वारा किए गए ऑडिट से भ्रष्टाचार पर रोक लग रही है तो उनकी भागीदारी स्वतः बढ़ेगी।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया। और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold annual summit with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi today. EPFO notifies 8.25% interest rate on EPF deposits for financial

0: सभी उपायुक्तों को वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम के लिए कार्रवाई के निर्देश। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने कहा, राज्य में शिक्षण संस्थानों का बुनियादी ढांचा किया जा रहा मजबूत, बच्चों को स्वास्थ्य रक्षा का दिया संदेश। जमशेदपुर में चाकूबाजी कांड में फरार मुख्य आरोपी पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित, मृतक की पत्नी को मिलेगी नौकरी। राज्य के कई हिस्सों में आज तेज हवाओं के साथ भारी बारिश और वज्रपात का पूर्वानुमान, 8 जुलाई तक के लिए येलो अलर्ट जारी। और रांची पहली बार डोरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट की करेगा मेजबानी, 26 जुलाई से 16 अगस्त तक बिरसा मुंडा स्टेडियम में होंगे मुकाबले। और अब समाचार विस्तार से। पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मौत के बाद झारखंड सरकार ने राज्यभर में स्वास्थ्य अलर्ट जारी करते हुए सभी उपायुक्तों को वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम के लिए तत्काल व्यापक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में बुखार सर्वेक्षण, मलेरिया की त्वरित जांच, समय पर उपचार तथा गंभीर मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने के निर्देश दिए हैं। अधिक प्रभावित गांवों में स्वास्थ्य कर्मियों को RDT किट और मलेरिया रोधी दवाएं उपलब्ध कराने के साथ कीटनाशक छिड़काव और फॉगिंग अभियान तेज करने को कहा गया है। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने कहा है कि राज्य में शिक्षण संस्थानों का बुनियादी ढांचा मजबूत करने के साथ ही आधुनिक ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कल जामताड़ा जिले के नाला प्रखंड अंतर्गत भंडार बेड़ा उच्च विद्यालय की चहारदीवारी और अतिरिक्त वर्ग कक्ष निर्माण का शिलान्यास किया। श्री महतो ने छात्र छात्राओं से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए जंक और फास्ट फूड से परहेज करने की हिदायत दी।
1: कि जो लोग जंक फूड या फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं वो कोई भी मेडिकल टेस्ट में सफल नहीं हो पाते, क्योंकि उस फूड को कंजम्पशन करने के बाद शरीर में कुछ कुछ ऐसा बीमारी आ जाता है जो आपको आगे का रास्ता को बाधित। इसलिए हमारे यहाँ का जो ट्रेडिशनल फूड है, चीजों का इस्तेमाल करने से हमारा सेहत के लिए भी अच्छा है।
0: दुमका के सांसद नलिन सोरेन की अध्यक्षता में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट फंड से संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल समेत अन्य बुनियादी सुविधाओं पर चर्चा की गई। सांसद ने योजनाओं के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन पर जोर देते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मौके पर मौजूद विधायक वसंत सोरेन ने कहा कि आगे भी कई कार्य योजनाओं पर कार्य होगा।
2: ये सारे फंड किस तरीके से किन किन चीजों में लगाए जा रहे हैं और वो इनकी जानकारी लेनी आवश्यकता थी, आवश्यक थी कि सही उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए, सुंदर दुमका था भी है भी और आगे के दिनों में और सुंदर बनाने का प्रयास है। काफी सारी योजनाएं अभी दुमका में चल रही हैं और आगे भी कई योजनाओं पर काम होना है।
0: झारखंड उच्च न्यायालय ने खूंटी जिले में वर्ष 2013 में पुलिस मुखबिरों की हत्या के मामले में पूर्व विधायक पॉलुस सुरीन और नक्सली नेता जेठा कच्छप को बरी कर दिया है। साक्ष्यों और पक्षकारों की दलीलों के आधार पर दोनों की आपराधिक अपील स्वीकार कर ली गई। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट ने जुलाई महीने के लिए नया उड़ान शेड्यूल जारी किया है, जिसके तहत राजधानी से दिल्ली, मुंबई, बंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, अहमदाबाद, पटना और भुवनेश्वर सहित 10 शहरों के लिए नियमित विमान सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। नए शेड्यूल के अनुसार रांची से प्रतिदिन 23 नियमित उड़ानों का संचालन होगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सीआईडी SP एहतशाम वकारिब को जमशेदपुर का SSP बनाया गया है। वहीं मनोज स्वर्गियारी सरायकेला जिले के नए पुलिस अधीक्षक नियुक्त किए गए। गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। पूर्वी सिंहभूम जिले के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में चाकूबाजी की घटना के मुख्य आरोपी विश्वनाथ मंडल उर्फ बोदरा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने प्रयास तेज कर दिए हैं। पुलिस ने उस पर 2 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है, साथ ही स्पष्ट किया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति

0: का नाम और पता पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा। राज्य सरकार के निर्देश पर सरायकेला खरसावां के उपायुक्त नीतिश कुमार सिंह और कोल्हान डीआईजी अनुरंजन किस्पुट्टा ने हिमांशु हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मुलाकात की। अधिकारियों ने परिजनों की मांगे सुनी और मामले में त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिया। उपायुक्त नीतिश कुमार सिंह ने कहा कि मृतक की पत्नी को तत्काल राहत देते हुए आउटसोर्सिंग के माध्यम से रोजगार का ऑफर लेटर सौंप दिया गया है।
1: जो मूल इस बात यही थी कि जो भी लोग इन्वॉल्व है उसमें उन पर कार्रवाई करने का था और सबका अरेस्टिंग मिलिट्री करने का निर्देश था। इस बार वो लगातार तत्पर है और इसमें यथाशीघ्र उनका अरेस्टिंग करने का प्रयास किया जा रहा है। और दूसरा था ये जो दिवंगत की वाइफ है उनकी इम्प्लॉयमेंट से संबंधित मामला था, तो जिसमें तत्काल तौर पर हम लोगों ने आउटसोर्सिंग से इनको इम्प्लॉयमेंट का एक ऑफर लेटर दे भी दिया है और बाकी इनकी जो डिमांड है उसको हम लोग यथावत स्टेट कर लेंगे।
0: दुमका जिले के काठीकुंड थाना क्षेत्र के बूढ़ी डंगाल गांव में वज्रपात से दो सगी बहनों की मौत हो गई। तेज बारिश के बीच वज्रपात की चपेट में आने से दो की मौत हो गई जबकि एक घायल हो गई। राज्य में मॉनसून मौजूदा स्थिति चिंताजनक है। झारखंड औसतन 54% वर्षा की कमी झेल रहा है। ऐसे में सुखाड़ की संभावना को देखते हुए कृषि विभाग ने भी तैयारी कर ली है। कृषि निदेशक विद्यानंद शर्मा पंकज ने कहा कि राहत के लिए बीज और अन्य सहायता उपलब्ध कराने की तैयारी का निर्देश दिया है।
2: अगर बारिश कम हो तो अपलाइन में हम लोग जो मिलेट्स हैं उसका प्रोडक्शन करें, हॉर्टिकल्चर में जो है क्रॉप प्रोडक्शन है उसको बढ़ावा दें। उसके लिए हम लोगों ने सीड्स का रेट भी फाइनल कर लिया है, कंपनी के साथ ऑर्डर भी दे दिया है कि अगर इस तरह की सिचुएशन आए तो किसानों को तुरंत बीज जो है उपलब्ध हो और वो खेती कर सके। केंद्र सरकार भी इस मामले में पूरी सेंसिटिव है और डीसी भी लगातार हो रही है केंद्र सरकार के साथ।
0: मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में आज तेज हवाओं के साथ भारी बारिश और वज्रपात का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग ने 8 जुलाई तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। रांची पहली बार डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। टूर्नामेंट के मुकाबले 26 जुलाई से 16 अगस्त तक बिरसा मुंडा स्टेडियम में खेले जाएंगे। रांची में लीग चरण के मुकाबलों के साथ एक क्वार्टर फाइनल भी खेला जाएगा। डूरंड कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होकर 23 अगस्त तक चलेगा। अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित प्रमुख अखबारों ने पारा शिक्षकों के मामले में झारखंड हाईकोर्ट के फैसले की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, सरकार सख्त, व्हाट्सएप के यूजर नेम फीचर पर रोक, केंद्र ने जवाब मांगा। हिंदुस्तान के शब्द हैं, राज्य में वज्रपात से 5 की मौत, आज से भारी बारिश का अलर्ट। दैनिक जागरण ने लिखा है, ब्रेन मलेरिया को लेकर सभी डीसी को किया गया सतर्क। प्रभात खबर की सुर्खी है, हाई कोर्ट का आदेश, नियमित नियुक्ति से पहले संविदा पर दी गई सेवा भी पेंशन योग्य। और अब अंत में मुख्य समाचार। पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से मौत के बाद राज्य सरकार ने स्वास्थ्य अलर्ट किया जारी। सभी उपायुक्तों को वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम के लिए कार्रवाई के निर्देश। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने कहा, राज्य में शिक्षण संस्थानों का बुनियादी ढांचा किया जा रहा मजबूत, बच्चों को स्वास्थ्य रक्षा का दिया संदेश। जमशेदपुर में चाकूबाजी कांड में फरार मुख्य आरोपी पर 2,00,000 रुपए का इनाम घोषित, मृतक की पत्नी को मिलेगी नौकरी। राज्य के कई हिस्सों में आज तेज हवाओं के साथ भारी बारिश और वज्रपात का पूर्वानुमान, 8 जुलाई तक के लिए येलो अलर्ट जारी। और रांची पहली बार डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट की करेगा मेजबानी, 26 जुलाई से 16 अगस्त तक बिरसा मुंडा स्टेडियम में होंगे मुकाबले। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आज मैं आपके साथ ऋतुश्री

श्रोताओं, हम आपको बताना चाहेंगे आज रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत में आप सुनेंगे गिटार पर राग मिश्र गारा धुन और गिटार पर राग बागेश्वरी में आलाप और गत, मध्यलय की रचना झपताल में और द्रुतलय की रचना तीन ताल में निबद्ध होगी। कलाकार होंगे पंडित विश्वमोहन भट्ट।

9:30 पे आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत में पंडित मोर मुकुट केडिया को। इनसे हम सुनेंगे सितार पर राग अहीर भैरव में आलाप और जोड़ के पर दो गते, दोनों ही गते तीन ताल में निपत होंगी। इनके साथ तबले पर संगत करेंगे श्रीजीत चैटर्जी।

0: आइए सुनिए लोकगीत का हमारा कार्यक्रम लोक रंग। और उनके साथी तो लीजिए सुनिए ये पहला गीत।
1: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी। कार्यक्रम का आगाज आइए हम करते हैं फिल्म राजकुमार के इस खूबसूरत से गीत के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

0: आप नीचे के 102.1 MHz और इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी। हम आपको सुनाएंगे कार्यक्रम के शेष गीत इन जरूरी संदेशों के बाद।
1: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
3: मैं फसल की नहीं NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
2: हैं मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
3: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रूपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
5: हेलो
6: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
5: फिर से?
6: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
7: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
5: सर इतने कहाँ से?
7: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
6: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
5: 2 लाख
8: क्या हुआ पापा?
5: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
6: अरे
5: काट दिया।
8: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
5: फ्रॉड?
8: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
5: तो पैसे गवाओगे,
9: RBI कहता है।
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: जरूरी संदेशों के बाद आपका एक बार फिर से कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी में स्वागत है। लीजिए पेश है कार्यक्रम का ये आखिरी गीत। फिल्म का नाम चितचोर, आवाज येसुदास की।

येसुदास के आवाज में गाई। फिल्म चितचोर के इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी यहीं समाप्त होता है।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, FM 102.1 MHz पर। सुबह के हमारे स्टूडियो के घड़ी में सुबह के 9 बजने को है। अब आइए हम आपको ले चलते हैं विविध भारती के कार्यक्रमों की ओर, जिन्हें हम रिले कर रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। तो कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

यमला पगला दीवाना फिर से, ये फिल्म थी जिसका गीत आप सुन रहे थे सचेत टंडन की आवाज में, पुलकित ऋषि ने से लिखा, सचेत परंपरा का संगीत। कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और आज बात हो रही है नींद की, कि भाई नींद पूरी क्यों नहीं हो रही है, किसकी नजर लगी हमारी नींद पर, क्यों ना उसे हम हटा दें और अच्छी नींद पा लें। लेकिन ज्ञान देना बड़ा आसान होता है, असली बात कौन बताएगा, भाई हम ही बताएंगे। तो अच्छे समय पर सोने के लिए आप ये कर सकते हैं कि सोने का एक समय पहले निर्धारित कर लें कि इस समय में मुझे सोना है, और रोजाना रात का 10 बजे हो, 9 बजे हो, जो भी हो, एक समय निर्धारित कर लें। और ये तो हम नहीं कह सकते कि फोन का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि कई बार बहुत जरूरी काम भी होते हैं और इससे हम दूर उतने ज्यादा नहीं हो सकते, तो ये एक व्यवहारिक तौर पर हम कह सकते हैं। तो फोन का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन सिर्फ उतना ही जितना जरूरी हो। कोई बहुत जरूरी काम हो, बहुत जरूरी मेल भेजना हो, बहुत जरूरी संदेश भेजना हो, तो जरूर इस्तेमाल कीजिए, और बाकी सारी चीजें वगैरह देखने के लिए ना करें फोन का इस्तेमाल। कोई शांत सा संगीत लगा लीजिए, और चाहे तो मेडिटेशन कर सकते हैं उस वक्त भी, या डायरी लिखने की एक आदत आप डाल सकते हैं रोजाना रात में, तो इससे भी मन शांत होता है और पूरे दिन क्या क्या हुआ इसका लेखा जोखा तो मिलता ही है, साथ ही आपको भी पता चलता है।

है कि आपके मन के अंदर क्या चल रहा है, क्या भावनाएं हैं आपकी, और आप चाहें तो किताब पढ़ सकते हैं या घर में बच्चे हों तो उनको कहानी सुनाने का एक समय निर्धारित कर लें रात का, तो उनकी भी जो देर से सोने की आदत है या फोन देखने की आदत है वो सब भी दूर होती जाएगी, तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे। और इसके साथ ही साथ सोने का जो अपना एक स्थान तो तय होता ही है, तो उस स्थान पर चले जाएं उस वक्त, तो एक मन को संदेश मिलता है कि हाँ अब सोने का वक्त हो चला है, तो वो जो बहुत ज्यादा खुश रहता है या बहुत ज्यादा कुछ काम करने के लिए एक्टिव रहता है वो धीरे धीरे शांत होने लगता है और समय पर आपको नींद आ जाएगी। तो ये कह सकते हैं कि एक तरह से एक जिद पाल लें कि सोना है समय पर और रोजाना, और ये जिद अगर आप पाल लेंगे तो एक अच्छी जिद है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप ये जिद जरूर पालेंगे।

निकिता गांधी की आवाज में रश्मि रॉकेट फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। कौशल मुनीत के बोल, अमित त्रिवेदी का संगीत। कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। तो भाई किस तरह से अच्छी नींद हो आपकी, इसके बारे में तो हमने आपको

0: किसी के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक, और हम बात कर रहे थे नींद की, कि नींद क्यों समय पर पूरी नहीं होती। तो कई बार ऐसा होता है कि हम कोई मैच देखने के लिए भी जागते हैं और ये मैच हम तक पहुंचाते हैं खेल पत्रकार, जिन जो आंखों देखा हाल अपना सुनाते हैं या हमें दिखाते हैं, और साथ ही साथ कमेंट्री भी होती रहती है। बहुत कुछ होता है इसके पीछे और इसकी वजह से हम जागते रहते हैं और रोमांच बना रहता है। आज है विश्व खेल पत्रकार दिवस, जो कि प्रतिवर्ष 2 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी साल 1994 में। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रेस संघ यानी कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन ने इस दिन को मनाने की शुरुआत की थी और इसीलिए इस संघ के स्थापना दिवस को ही विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाने के लिए चुना गया। और ये दिन उन मेहनती पत्रकारों की भूमिका को उजागर करने का है जो दिन रात लगातार खेल के मैदान से आंखों देखा हाल रेडियो, टीवी और अन्य माध्यमों से हम तक पहुंचाते हैं, और इनकी पत्रकारिता निष्पक्षता, शांति, एकजुटता और खेल भावना का संदेश आम जन तक पहुंचाती है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है जो ये करते हैं। तो आज विश्व खेल पत्रकार दिवस पर हम सभी खेल पत्रकारों को शुभकामनाएं देते हैं और उनके कामों के लिए देते हैं उन्हें धन्यवाद।
1: India in deep trouble now, having lost 2 matches in a row.
2: अपना है दिल ये आज का।

0: ऐसे लगा हम खेल ही नहीं, पहले ही कंधे घेर दोगे फिर कैसे लड़ो।
1: जब तू इन स्विंगर डालता है तो बैट्समैन को टेलीग्राम क्यों?

रांझणा फिल्म का ये गीत आपने सुना सिराज उप्पल और जसविंदर सिंह की आवाजें, इरशाद कामिल के बोल, ए.आर. रहमान का संगीत। कार्यक्रम चित्रलोक में अब आपको सुनवा रहे हैं नीति मोहन, विशाल ददलानी, के और शंकर महादेवन की आवाजों में ये गीत, जिसे लिखा इरशाद कामिल ने, विशाल शेखर का संगीत, फिल्म हैप्पी न्यू ईयर।

स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए, दिन भर में जहां भी रहिए रहिए विविध भारती के साथ, और दीजिए अपनी दोस्त नेहा शर्मा को इजाजत। चित्रलोक कार्यक्रम यही समाप्त होता है।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

लीजिए पेश है प्रोग्राम आज के फनकार। सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों आज के फनकार हैं जाने माने पार्श्व गायक मोहम्मद

0: My name is Lakhan, my name is Lakhan, सजनों का सजन मेरा नाम है लखन।
1: दोस्तों, लखन नाम तो फिल्म राम लखन में अभिनेता अनिल कपूर का नाम था, लेकिन इस गाने की मकबूलियत ने पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज को सुनने वालों के दिलों में इस तरह बसा दिया जैसे सीप में मोती और किसी अंगूठी में कोई शानदार नगीना।

0: नजीना जीना
1: उंगली में अंगूठी अंगूठी में नजीना
0: उंगली में अंगूठी अंगूठी में नजीना।
2: 2 जुलाई 1954 को गुमा वेस्ट बंगाल में जन्मे मोहम्मद अजीज का पूरा नाम था सैयद मोहम्मद अजीज उन नबी। शुरुआती कुछ फिल्मी गाने उन्होंने मुन्ना अजीज के नाम से भी गाए, बाद में उनकी पहचान बनी बतौर पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज के नाम से। मोहम्मद अजीज जाने माने पार्श्व गायक मोहम्मद रफी के बड़े प्रशंसक थे।
0: न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, न फनकार तुझसा तेरे बाद आया।

0: मोहम्मद अजीज को अपने जीवन में फिल्मी गायन का पहला मौका मिला बंगाली फिल्म ज्योति से। दोस्तों, आपको यहाँ याद दिलाना चाहेंगे कि बंगाली फिल्मों में मोहम्मद अजीज के तमाम गाए गीत बेहद मशहूर हुए। उसके बाद 1984 में हिंदी फिल्म अंबर में भी उन्होंने पार्श्व गायन का सिलसिला जारी रखा, लेकिन हिंदी फिल्म संगीत जगत में उनकी पहचान बनी मर्द फिल्म के इस गाने से।
1: मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, हे मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त है ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला, ओ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त है ऊपर।

0: जानवर से नहीं वफादार। ओ खत्म तेल को तोड़ दे दम, मरते दम तक चले ये टम टम। अरे क्यों भाई बादल क्यों भाई मोती, मैं तक कहता हूँ मर्द टंगे वाला मैं हूँ, मर्द टंगे वाला। तुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त ऊपर वाला। मर्द टंगे वाला मैं हूँ, मर्द टंगे वाला। तुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरा दोस्त ऊपर वाला।
1: अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म मर्द का ये सुपरहिट गीत गाकर मोहम्मद अजीज रातों रात पार्श्व गायन की ऊंची पायदान पर जा पहुंचे। इस फिल्म का संगीत दिया अनु मलिक ने और लोगों ने पहले तो ये समझा कि ये गाना शब्बीर कुमार ने गाया, लेकिन जब गौर किया गया तो पता चला मोहम्मद अजीज की आवाज है और बाद में इस आवाज ने धूम मचा दी।

मोहम्मद अजीज का बंगाली और उड़िया फिल्म इंडस्ट्री से भी जो गहरा नाता रहा है उसका जिक्र हम शुरू में ही कर चुके हैं। हिंदी फिल्म जगत की नामी संगीतकार जोड़ी लक्ष्मी

मोहम्मद अजीज ने अपने गायन जीवन में अपनी समकालीन दिग्गज गायिकाओं के साथ गीत गाए। लता जी के साथ उनका गाया ये गीत हम कैसे भुला सकते हैं, जो सिंदूर फिल्म का है।

दोस्तों मोहम्मद अजीज ने, जैसे कि हम बता चुके हैं, अपनी समकालीन हिट सुपरहिट गायिकाओं के साथ भी गाने गाए हैं, तो उसमें अलका याग्निक का जिक्र ना हो तो प्रोग्राम थोड़ा अधूरा सा लगेगा। आइए सुनवाते हैं आपको बंजारन फिल्म का ये गाना।

0: इसीलिए।
1: दोस्तों यहाँ ये भी जिक्र करना जरूरी होगा कि मोहम्मद अजीज ने हिंदी फिल्म जगत के तमाम बड़े सितारों के लिए पार्श्व गायन किया है, जैसे अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, अनिल कपूर और गोविंदा के साथ साथ और भी कई कलाकार हैं। ऋषि कपूर के लिए मोहम्मद अजीज का गाया फिल्म नगीना का ये गीत बेहद मकबूल रहा है।

बहुमुखी गायन प्रतिभा के मालिक मोहम्मद अजीज ने विभिन्न भारतीय भाषाओं में लगभग 20,000 गीत गाए हैं। संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर डी बर्मन, नौशाद, ओपी नैयर, राजेश रोशन, राम लक्ष्मण और रविंद्र जैन से लेकर उषा खन्ना, आनंद मिलिंद, नदीम श्रवण, जतिन ललित, अनु मलिक, आनंद राज आनंद और आदेश श्रीवास्तव तक तमाम संगीतकारों के निर्देशन में मोहम्मद अजीज ने गीत गाकर सभी को लुभाया है, बहलाया है। अनुराधा पौडवाल के साथ मोहम्मद अजीज का गाया ये गीत आज भी 90 के दशक के फिल्म संगीत की यादों को ताजा कर देता है।

मोहम्मद अजीज ने हमारे देश के अलावा विदेशों में भी जाकर मंच पर अपने कई प्राइवेट कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। उड़िया और बांग्ला भाषाओं में कई फिल्मी गाने उन्होंने अनुराधा पौडवाल के साथ भी गाए और तमाम कई फीमेल सिंगर के साथ भी उनके गाए गीत मकबूल हुए हैं। और जहां तक भजन का सवाल है तो आपको हम ये बता दें कि उड़िया भाषा में उनके कई भजन मशहूर रहे हैं और कई अवसरों पर गाए जाते हैं।

27 नवंबर 2018 को अचानक हुए हृदयाघात यानी हार्ट अटैक की वजह से मोहम्मद अजीज हमारे बीच नहीं रहे। दोस्तों कहते हैं ना, जिस्मानी तौर पर भले ही कलाकार हमारे बीच ना हो, लेकिन अपनी विधा के बल पर वो अपने चाहने वालों के दिलों में बसा करते हैं। इसी तरह पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज भी अपनी आवाज के जरिए हमेशा हमेशा अपने चाहने वालों के मन में जीवित रहेंगे।

0: तो दोस्तों ये था आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज पर। तकनीकी सहयोग दिया वंदना ठाकुर ने और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। अब दीजिए अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम हेलो हजारीबाग।

0: प्रत्येक दिन के इतिहास, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिन, मृत्यु और महत्वपूर्ण दिवस का संपूर्ण ब्यौरा मिलेगा डे टू डे। हेलो हजारीबाग, मिलेगी मौसम की जानकारी, साथ ही हजारीबाग के अस्पताल के ओपीडी अपडेट्स मिलेंगे, हजारीबाग के ट्रैफिक अपडेट्स, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल इवेंट्स के कर्टन रेजर रोजाना, लोकल इवेंट्स के ग्राउंड रिपोर्ट्स का खजाना, सिटी के इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में हजारीबाग के यूनिवर्सिटी की गतिविधियों और स्पोर्ट्स के ताजे हाल का हेलो हजारीबाग। और अंत में आज के विचार को सुनकर कर देंगे दिन की पॉजिटिव शुरुआत। गीतों संगीत से सजा सवरा जीवन के प्रत्येक आवश्यक गतिविधियों के संग हेलो हजारीबाग।
1: कार्यक्रम हेलो हजारीबाग सुनने वाले आप तमाम श्रोताओं का आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कीजिए स्वीकार श्वेता का प्यार भरा नमस्कार जोहार। कार्यक्रम की शुरुआत आइए करते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ, फिर करेंगे आपसे ढेरों जानकारियों भरी बातें।

गीत के बाद आपका एक बार फिर से कार्यक्रम हेलो हजारीबाग में स्वागत है। दोस्तों, मुश्किलें स्थायी नहीं होती, समय के साथ हालात बदलते हैं, इसलिए तनाव लेने के बजाय धैर्य रखना बेहतर होता है। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से न करें, क्योंकि ये दोनों न तो दोबारा आते हैं और न ही दोबारा मौका देते हैं। तो इन्हीं खूबसूरत सुविचारों के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। सुनवा रहे हैं आपको एक और गीत।

और अब आइए जानते हैं आज का इतिहास। श्रोताओं, कई ऐसी घटनाएं होती हैं बीते दिनों में, बीते ईस्वियों में, जब कोई महत्वपूर्ण घटना अपना स्थान बना लेती है इतिहास के पन्नों पर, जिन्हें याद रखना भी हमें जरूरी होता है।

अंद्रेई ग्रोमिको सोवियत संघ के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 1940 में आज ही की तारीख को ब्रिटिश सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को विद्रोह भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। आपको बता दें, नेताजी हुगली में बने होलवेल मॉन्यूमेंट को हटाने के लिए एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व करने वाले थे और इसी वजह से ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें उनके घर में नजरबंद कर दिया गया था। वहीं अगली खबर से आपको, अगली घटना से आपको रूबरू करवाएं तो चंद्र मिशनों का नेतृत्व कर मून मैन ऑफ इंडिया बने डॉक्टर मायल स्वामी के बारे में हम बात करें तो डॉक्टर मायल स्वामी अन्ना दुरई का जन्म 1958 में आज ही की तारीख को तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में हुआ था। उन्होंने पीएसजी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से एमटेक किया। 1982 में इसरो में शामिल हुए और शुरुआत में डिजिटल सिस्टम इंजीनियर के रूप में काम किया। आगे चलकर वह भारत के पहले चंद्र मिशन चंद्रयान 1 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर बने। इसी मिशन के दौरान चंद्रयान 1 ने चंद्रमा की सतह पर पानी के कणों की खोज की थी। भारत के अंतरिक्ष विज्ञान को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और देश के सबसे महत्वाकांक्षी चंद्र मिशनों का नेतृत्व करने के कारण उन्हें मून मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अमेरिका की स्वतंत्रता के लिए ऐतिहासिक मतदान आज ही की तारीख को हुआ। सन 1776 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया में कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने ब्रिटेन से पूरी तरह अलग होने और स्वतंत्र होने के पक्ष में मतदान किया था। हालांकि अमेरिका की आधिकारिक स्वतंत्रता का घोषणा पत्र 4 जुलाई को अपनाया गया, लेकिन कानूनी रूप से वास्तविक फैसला इसी दिन लिया गया था। वहीं 2004 ईस्वी में आज ही की तारीख को भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने जकार्ता में आपसी बातचीत की थी। 2006 में आज ही की तारीख को इंग्लैंड फुटबॉल टीम ने कप्तान डेविड बेकहम ने अपना पद छोड़ा था। और अब आइए जानते हैं आज ही की तारीख को किन किन महान हस्तियों ने जन्म लिया। 1893 ईस्वी में आज ही की तारीख को चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी का जन्म हुआ था। ये आंध्र प्रदेश के पहले राज्यपाल थे। 1925 ईस्वी में आज ही की तारीख को भारतीय योगाचार्य स्वामी राम का जन्म हुआ था। 1941 ईस्वी में मराठी और हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक आशा लता वाबंगार का जन्म हुआ और 1954 में भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज का भी जन्म हुआ। तो श्रोताओं, हम आपको बता दें, मोहम्मद अजीज की जो गायन शैली थी वो काफी हद तक मोहम्मद रफी से मिलती थी और इस वजह से इनके जो गीत हैं वो भी काफी लोकप्रिय हुए। लेकिन दुर्भाग्यवश इनको बॉलीवुड में इनकी काबिलियत के अनुरूप जो है काम नहीं मिल पाया। ये बहुत कम फिल्मी गीत गा पाए हैं और कुछ भक्ति गीतों को भी इन्होंने अपनी आवाज दी। मोहम्मद अजीज बहुत ही मेहनती और बहुत ही खूबसूरत आवाज के जादूगर थे और इनकी गाए गीत जो हैं आज भी काफी लोकप्रिय और कर्णप्रिय हैं। चलिए हम आपको सुनवाते हैं इनकी गाए हुए इस गीत को।

आपने ट्यून किया है 102.1 MHz। इस वक्त आप सुन रहे हैं दैनिक कार्यक्रम हेलो हजारीबाग। अब आइए हम आपको बता दें, आज जिन महान हस्तियों ने दुनिया को अलविदा कहा उनके बारे में। दोस्तों हम आपको बता दें, 1934 ईस्वी में आज ही की तारीख को भारत के महान क्रांतिकारियों में से एक असित भट्टाचार्य का निधन हो गया था। 1950 ईस्वी में आज की

तारीख को स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक यूसुफ मेहर अली का निधन हुआ। अमेरिकी उपन्यासकार, लघु कहानीकार और पत्रकार अर्नेस्ट हेमिंग्वे का निधन हुआ आज की तारीख को सन 1961 ईस्वी में।

आप मिट्यून के 102.1 MHz और इस वक्त आप सुन रहे हैं दैनिक कार्यक्रम हेलो हजारीबाग। श्रोताओं, हम आपको बता दें महत्वपूर्ण उत्सव और दिवसों के बारे में। तो आज है 2 जुलाई और 2 जुलाई 2004 को छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन को यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया।

और विश्व खेल पत्रकार दिवस भी आज ही की तारीख को मनाया जाता है। तो श्रोताओं, एक पत्रकार समाज, राजनीति और दुनिया भर की घटनाओं की सटीक जानकारी जुटाकर, उनकी पुष्टि करके और उन्हें समाचार के रूप में तैयार कर जन जन तक पहुंचाता है। पत्रकार समाज को जागरूक करने, जनमत तैयार करने और सत्ता को जवाबदेह ठहराने के मुख्य प्रहरी के रूप में भी जाने जाते हैं। शायद इसीलिए पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। आज है 2 जुलाई और आज का यह विशेष दिवस पत्रकारिता को, उनके योगदानों को सम्मानित करते हुए प्रत्येक वर्ष विश्व खेल पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह विशेष दिवस दुनिया भर के खेल पत्रकारों के अथक प्रयासों, खेल संस्कृति को बढ़ावा देने में उनके योगदानों को सम्मान दिया जाता है। विश्व खेल पत्रकार दिवस को मनाने की शुरुआत वर्ष 1994 में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन द्वारा की गई थी। खेल पत्रकारिता खेल की दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह न केवल खेल के बारे में जानकारी प्रदान करती है, बल्कि खेल और खिलाड़ियों के बीच एक सेतु का भी काम करती है। यह खेलों की जानकारी, विश्लेषण और कहानियां प्रस्तुत करते हैं, जो दर्शकों को खेल के बारे में जागरूक करते हैं और उन्हें बांधे रखते हैं और उन्हें प्रेरित भी करते हैं। खेलों के विकास में पत्रकारिता की भूमिका अहम मानी जाती है। खेल पत्रकार दिवस के इस खास मौके पर पत्रकारिता से जुड़े सभी सज्जनों को हम देते हैं खेल पत्रकार दिवस पर ढेरों शुभकामनाएं और बधाइयां।

और अब आइए आपको रूबरू करवाते हैं शहर में कुछ शहर की कुछ गतिविधियों से। श्रोताओं, हम आपको बता दें, भागवत गीता पाठ का आयोजन किया गया झील सेंटर। भागवत गीता पाठ का आयोजन किया जाएगा, स्थान होगा झील सेंटर, समय हो गया होगा 6:30 पर। साईं मंदिर में पूजा अर्चना की जाएगी, स्थान होगा छठ तालाब साईं मंदिर ओकनी, और समय होगा कल सुबह 6 बजे से।

योग शिविर का आयोजन किया गया। सुबह 7 बजे स्थान था झील परिसर। शिक्षा संबंधी बैठक समीक्षा बैठक की जानी है। स्थान होगा डीईओ कार्यालय परिसर। समय होगा पूर्वाह्न 11 बजे से। परीक्षा संबंधी समीक्षा बैठक एक और आयोजित की जा रही है। स्थान होगा विनोबा भावे विश्वविद्यालय परिसर और समय होगा पूर्वाह्न 11:30 से। वहीं आज के मौसम का हाल करें बताएं आपको तो हल्की बूंदाबांदी के साथ आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और दोपहर से लेकर शाम तक गरज के साथ बौछारें पड़ने की भी संभावना जताई गई है, जिससे तापमान में गिरावट की संभावना भी बनी हुई है। वहीं आज अधिकतम तापमान की बात करें तो आज हजारीबाग का अधिकतम तापमान रहने वाला है 36.0°C और न्यूनतम रहेगा 22.0°C। कल के अधिकतम तापमान की बात करें तो कल हजारीबाग में 37.0°C अधिकतम तापमान रहेगा और न्यूनतम रहेगा 23.0°C। आज कोडरमा के तापमान की बात करें तो 36.0°C अधिकतम तापमान रहेगा और 25.0°C न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है। वहीं कल के तापमान की बात करें तो कोडरमा में कल 3 जुलाई को अधिकतम तापमान रहेगा 35.0°C और न्यूनतम रहेगा 23.0°C। आज के आर्द्रता की बात करें तो अधिकतम आर्द्रता आज की रहने वाली है 60% और न्यूनतम आर्द्रता होगी 55%। आज सूर्यास्त का समय होगा शाम 6:45 पर और कल सूर्योदय का समय होगा सुबह 5:09 से। वहीं हम आपको बता दें मौसम विभाग की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है कि 4 जुलाई से लेकर 5 जुलाई को दिन में झमाझम बारिश होगी और देश भर में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। और जम्मू कश्मीर के बाद मॉनसून हरियाणा और पंजाब पहुंचा। राजस्थान दिल्ली को छोड़कर देश के हर राज्य में दस्तक दे चुका है मॉनसून और इस वजह से भी बारिश की संभावना बहुत ज्यादा जताई गई है। जून में 40% कम बारिश हुई, जुलाई में भी 6% कम बारिश होने की आशंका है। वहीं बारिश के दिनों में ठनका गिरने की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो दुमका में ठनके से 2 बहनों की मौत हो गई है और बारिश के आसार जो है वो आज भी जताए जा रहे हैं। वहीं संथाल में ठनका से 5 और मरे हैं। राज्य में आज से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। बारिश में सुधार और फिर भी 50% की कमी आंकी जा रही है। तो बारिश के मौसम में 2-3 दुर्घटनाएं होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है श्रोताओं, तो आप इन सब से बच के रहें। जैसे कि ठनका गिरता है तो ठनके गिरने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, इससे आप बच करके रहें। और अगर थोड़ी बहुत कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो ही जाते हैं आप ठनके से तो घर पर प्राथमिक उपचार करने की बजाय आप हॉस्पिटल जरूर जाएं, डॉक्टरों की सलाह जरूर लें, डॉक्टरों से इलाज करवाएं समय रहते ताकि जान बचाई जा सके। वहीं सांप बिच्छू जो है वो इस मौसम में काफी सक्रिय हो जाते हैं तो उनकी सक्रियता को देखते हुए आप बच करके रहें। और सांप बिच्छू अगर आपको काट भी लें तो गलती से तो फिर आप घर पर प्राथमिक उपचार उसका बिल्कुल ना करें, सीधा हॉस्पिटल जाएं। और इस तरह के मरीजों के लिए मुफ्त जो है इलाज सरकार की तरफ से उपलब्ध होता है अस्पतालों में, तो इसकी सेवाएं आप जरूर लें, इससे बचें ताकि आपकी जान बच सके। साथ ही बरसात के मौसम में संक्रामक बीमारियां भी फैलने की बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे में अगर आप किसी भी तरह के संक्रामक बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं तब भी आपको डॉक्टर की सलाह, डॉक्टर का इलाज जरूर लेना चाहिए, क्योंकि घर पर जो प्राथमिक उपचार हम करते हैं कई बार वो कारगर नहीं होती है और लापरवाही की वजह से लोगों की जान चली जाती है। तो आप इन सब लापरवाहियों से बचें और समय रहते डॉक्टर की सलाह पर अपना ट्रीटमेंट जरूर करवाएं और स्वस्थ रहें, खुश रहें, दुर्घटनाओं से
प्राकृतिक आपदाओं से बचकर रहें। बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, सुनवाते हैं आपको एक और गीत।

और अब आइए हम आपको रूबरू करवाते हैं अखबारों की कुछ सुर्खियों से। श्रोताओं, भोजन की तलाश में डपोक जंगल से सटे इलाके में पहुंचे तीन हाथी मक्के की फसल को किया बर्बाद। ग्रामीणों ने वन विभाग से हाथियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखने की मांग की है। वहीं चिंगी गांव में 79 साल के बाद भी न सड़क बनी और न ही स्कूल। आजादी का अमृत महोत्सव बीता पर नहीं बनी पक्की सड़कें। वन विभाग ने NOC नहीं मिलने के कारण सड़क निर्माण को रोका। तिलैया टाड़ और चिंगी गांव में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। गिरिडीह के स्कूल जाने को मजबूर हैं नौनिहाल बच्चे। रोड पार कर रहे बुजुर्ग को तेज रफ्तार स्कूटी ने मारी टक्कर, दो लोग घायल। बरही के मिडिल स्कूल के पास हुआ ये हादसा। वहीं रांची के राज्य का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट तैयार और पारा शिक्षकों की संविदा सेवा भी पेंशन से जुड़ेगी। मरकच्चों में स्कूल परिसर में छात्र को सांप ने डसा, गंभीर रूप से घायल। वहीं अगली खबर से आपको रूबरू करवाएं तो देश विदेश की खबरों से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण के दावे पर अड़ा ईरान। जहाजों से शुल्क वसूलने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता चाहता है तेहरान। इस पर सहमति बनने तक दूसरे मुद्दे पर आगे नहीं बढ़ेंगे उसके वार्ताकार। वहीं पाकिस्तान में ISIS ठिकानों पर हमला, कई आतंकी ढेर हुए। हाल ही में पाक के हमलों में 36 अफगानी नागरिक मारे गए थे। अमेरिका से आर्थिक मदद लेना बंद करना चाहता हूं, नेतन्याहू ने ऐसा कहा। इसराइली प्रधानमंत्री का देश को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर, सीमा के भीतर बैठकर खतरा पैदा होने का इंतजार नहीं करेंगे। वेनेजुएला में भारतीय सेना का ऑपरेशन अमिस्ताद जारी, 79 वर्षीय महिला को बचाया गया। अमेरिका में आई बाढ़ से भारतीय IT पेशेवर की मौत हो गई है। ग्रेट इमिग्रेंट्स सूची में 4 भारतीय अमेरिकी शामिल। और अब खेल जगत की खबरों से आपको रूबरू करवाएं तो अभिषेक को पछाड़कर नंबर 1 T20 बल्लेबाज बने ईशान। रोहित शर्मा ने 87.05 मीटर भाला फेंक कर दिखाया अपना दमखम। मार्टिना नहीं बन सकी सेरेना विलियम्स। अंतिम 32 में अल्जीरिया को पीटने उतरेगा स्विट्जरलैंड। गजब की फॉर्म में चल रही स्विट्जरलैंड की टीम फीफा विश्व कप 2026 के अंतिम 32 के मुकाबले अल्जीरिया से भिड़ेगी। मैक्सिको ने 7200 फीट की ऊंचाई से गिराया एक और प्रतिद्वंदी। मैक्सिको सिटी के एत्जेको स्टेडियम में मैक्सिको का विश्व कप रिकॉर्ड जल्दी ही सामान्य ज्ञान का सवाल बन जाएगा। इस विश्व कप में मैक्सिको ने इत्तेखा में एक और मैच जीतते हुए इस स्टेडियम में अपना अपराजय सिलसिला जारी रखा है। साल 1970 में यहां विश्व कप में एक भी मैच न हारी मैक्सिको ने अंतिम 32 के मुकाबले में इक्वाडोर को परास्त कर दिया है। और अब कार्यक्रम में चलते चलते हम आपको सुना रहे हैं एक और गीत।

0: और अब इसी के साथ ही दैनिक कार्यक्रम हेलो हजारीबाग से श्वेता को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: जो खत्म हो किसी जगह, ये
0: अभी आप सुन रहे थे दैनिक कार्यक्रम हेलो हजारीबाग। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 11 बजने को हैं। अब आइए हम आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों को। तो कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
2: Eight, seven, six, five.

दिव्य कुमार और अदिति सिंह शर्मा की आवाजों में आपने सुना ये पारंपरिक गीत। आइए रंग तरंग कार्यक्रम का ये अगला गीत सुनते हैं।

ये थी ऋचा शर्मा की आवाज और आइए अब आपको सुनवाते हैं सुलक्षणा पंडित और आरती मुखर्जी का गाया हुआ ये गाना। लिखा है माया गोविंद ने, धुन बनाई है राज कमल ने।

0: के बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: रंग तरंग कार्यक्रम में अब सुनवा रहे हैं राजेंद्र मेहता और नीना मेहता की गाई ये गजल।

जुबिन नौटियाल की आवाज में आपने सुना ये गाना, गुरुप्रीत सैनी के बोल थे, रोचक कोहली का संगीत था। और आइए अब आपको सुनवाते हैं दिलराज कौर की आवाज, मोहसिन नकवी का कलाम।

0: उनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता कर रहे हैं। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। आज सुबह प्रधानमंत्री ताकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंची। प्रधानमंत्री ताकाइची का ये भारत का पहला आधिकारिक दौरा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत ने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा है कि आतंकवाद को किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मानदंडों की कड़ी आलोचना करते हुए एक मजबूत और एकजुट वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने ये बात कही। श्री हरीश ने कहा कि भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद का शिकार होता रहा है और इसलिए मानता है कि आतंकवाद के सभी रूपों की स्पष्ट रूप से निंदा की जानी चाहिए। केंद्र सरकार ने असम में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ के हालात को लेकर बेहद गंभीर है। असम के मुख्य सचिव रवि कोटा ने बताया कि बाढ़ से 13 जिलों के करीब 72,000 लोग प्रभावित हुए हैं। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि योजना का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बनाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने आईएसआई प्रायोजित अंतर्राज्य आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधि को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 11 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले इस सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर हिस्सों और राजस्थान के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। राजधानी में बारिश से गर्मी और उमस से भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन में मानसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

अभी आपने सुना यादों की बारात फिल्म का गाना किशोर कुमार और मोहम्मद रफी की आवाजों में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे और राहुल देव बर्मन का संगीत। और अब सुनते हैं फिल्म उमर कैद का ये गाना, लता मंगेशकर मुकेश का गाया हुआ, गुलशन बावरा का गीत, सोनी ओमी का संगीत।

0: फिल्म सावन का ये गाना सुन रहे थे जिसे लिखा था असद भोपाली ने, धुन बनाई थी हंसराज बहल ने, आवाज थी लता मंगेशकर की।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में आप सुन रहे थे वारिस फिल्म का ये गाना। वर्मा मलिक के बोल, उत्तम जगदीश का संगीत था। और आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म सौदागर का ये गाना।

आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफी और सुलक्षणा पंडित की आवाजों में फिल्म फांसी का ये गाना, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

योगेश की शब्द रचना, सचिन देव बर्मन का संगीत, किशोर कुमार की आवाज में आपने सुना फिल्म मिली का ये गाना। और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म राजपूत का गीत किशोर कुमार और साथियों के स्वरों में। आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

जावेद अख्तर के बोल, हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत, फिल्म मशाल का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। ये थी आज की यादों के महफिल की अंतिम प्रस्तुति। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

0: आप सभी को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। सुरीला सफर कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में जो इबारत हमने फेसबुक पर पोस्ट की है वो आपने पढ़ी और बहुत सारे संदेश भेजे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने अभी नहीं पढ़ी है उनके लिए हम एक बार यहाँ पढ़ देते हैं। खिलते नगमों की कलियां चुनने वाली दिलकश बहार का मौसम, 100 सालों से बंधन अनजाना बांध के चलने का मौसम, ये कहता है दिल थाम लोगर रंग साथ अभी खिल जाएंगे, बन सुगंध सुमन मिल जाओ तो सब एक ताल बंध जाएंगे, रजनी गंधा संग खिलता मन बांधे अनजाना सा बंधन, ये मौसम धीरे धीरे से जीवन में घुल मिल जाता है, पर जाता है तो बीते लम्हों की कसक छोड़ कर जाता है। तो ये है आज की इबारत और इस इबारत को लेकर बहुत सारे गानों के बारे में भी आपने कहा है, तो बस ये देखना है कि आज जो गाने प्ले होने वाले हैं उनसे आपकी लिस्ट कितनी मैच कर रही है, हमें ज़रूर बताइएगा। हो सकता है कि आपने अभी अभी जो गाना सोचा हो वो हमारी इस लिस्ट में हो, तो अगर अभी भी कोई दिमाग में गाना आ रहा हो तो जल्दी से हमें बताएं। बहरहाल आज मौसम को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं और हमारे श्रोताओं ने भी मौसम के बारे में कई संदेश भेजे हैं। एक संदेश में कहा है कि एक हम हैं जो उदास होकर चुपचाप अपने काम कर रहे हैं और आप कितनी प्यारी सी इबारत लेकर आई हैं, जबकि हम जानते हैं कि ऐसा करना ठीक नहीं है। कितना प्यारा मौसम और प्यारा सा विविध भारती का साथ, फिर भी ना जाने क्यों ये दिल बार बार उदास हो जाता है, पर हमने अपने दिल से कह दिया कि हमें मुस्कुराना है और हमें उदासी दूर होती नजर आई और हम हो गए शामिल सुरीला सफर में। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे लिखती हैं कि आपकी इबारत में हमें फूल और कलियां नजर आई तो हमने अपने गमले में एक बात नोटिस की, 3 दिन से हिबिस्कस यानी गुड़हल के एक पौधे में 3 दिन से 3-3 फूल खिल रहे हैं, आज 3रा दिन है और कल 4थे दिन के लिए भी उसमें 3 कलियां हैं। इन छोटी छोटी बातों पर हमारा ध्यान नहीं जाता, पर कभी कभी ये सब देखना भी अच्छा होता है क्योंकि इस बहाने हम प्रकृति से जुड़ते हैं और फिर ये पौधे तो कितनी खुशियां देते हैं हमको। बहुत सुंदर बात कही आपने और संदेशों में बहुत सारी बातों के साथ साथ ये भी कहा गया है कि इस कार्यक्रम में विविध भारती और उसके श्रोता साथ साथ मिलकर चलते हैं तो मौसम के साथ सजन का लुत्फ ही कुछ और है। न जाने कितनी गीत कविताएं इनके सानिध्य में परवान चढ़ी हैं। कवि और गीतकारों की कलम का जादू जब कोरे कागज पर उतरता है तो सावन भादो बरखा पतझड़ हर मौसम के गीत बन जाते हैं। मौसम जीवन में वो सब अनुभूतियां देता है जिसे हम खुशी का नाम दे सकते हैं। शायर बशीर बद्र के माध्यम से कहें तो अजब मौसम है मेरे हर कदम पर फूल रखता है, मोहब्बत में मोहब्बत का फरिश्ता साथ चलता है। बहुत सुंदर। तो मौसम की इतनी बातें हो गई हैं तो क्यों ना उन सभी गीतों पर एक नजर डालते चलें जो कि आपकी पसंद हैं, एक एक कर उनकी एक झलक सुनते जाते हैं।
1: झूमता माँ

दरअसल मौसम को लेके इतने खूबसूरत गीत हैं कि अगर हम उनको थोड़ा थोड़ा भी प्ले करते चले तो आज के कार्यक्रम का वक्त ही पूरा हो जाएगा, इसलिए कुछ गीतों को हमने छांट कर लिया है, चुनकर लिया है। अब जो गीत हमने चुना है वो तो आपको सुनवाएंगे ही, आपसे पूछेंगे फिल्म का नाम और कलाकारों के नाम, लेकिन एक सवाल और है। आज की इबारत में शुरुआत में एक गीत के अंतरे की कुछ पंक्तियां छिपी हुई हैं, आपको वो गीत पहचानना है, फिल्म का नाम बताना है और साथ ही वो अंतरा भी बताना है कि वो अंतरा असल में क्या है, उसमें से कुछ शब्द लिए हैं अंतरे के। तो अब ये गीत और बताइए फिल्म का नाम और मुख्य कलाकारों के नाम।

0: जोर है।
1: थे प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने एसआईआर के तहत स्वयं गणना प्रपत्र भरकर और हस्ताक्षर कर बीएलओ को सौंपा। सभी पात्र नागरिकों से की सहभागिता की अपील। केंद्र सरकार ने ईपीएफओ योजना 2026 को किया अधिसूचित। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। राज्यसभा सांसद प्रदीप कुमार वर्मा ने चांडिल मुरी रेलखंड की विद्युतीकरण परियोजना को अधिसूचित किए जाने को बताया ऐतिहासिक कदम। प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का जताया आभार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक। लिए जाएंगे कई महत्वपूर्ण फैसले। और एनटीपीसी और सीएमपीडीआई के बीच कोयला एवं खनिज परियोजनाओं के विकास और संचालन के लिए हुआ एमओयू। और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची स्थित लोक भवन में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत स्वयं गणना प्रपत्र भरकर और हस्ताक्षर कर उसे संबंधित बीएलओ को सौंपा। इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार, रांची के जिला निर्वाचन पदाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री तथा अन्य निर्वाचन अधिकारी उपस्थित रहे। राज्यपाल ने सभी पात्र भारतीय नागरिकों से बीएलओ द्वारा दिए जाने वाले गणना प्रपत्र को समय पर भरकर हस्ताक्षर जमा करने की अपील की, ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे। उन्होंने अभियान से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मियों को सफल तथा प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शुभकामनाएं भी दी। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। यह योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बनाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने

0: बहुत डिरेल हुई हैं और स्थिति राज्य की डामाडोल है।
1: पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। गिरिडीह में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जमशेदपुर में पुलिस के सामने हत्या कर देना गंभीर मामला है। श्री मरांडी ने इस घटना के दोषी पुलिसकर्मियों पर FIR की मांग की।
2: खंड में आज कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई। पिछले दिनों जो जमशेदपुर में जो घटना पुलिस के सामने की हत्या और इसके बाद जो कार्रवाई हुई, तो मैं कह सकता हूं कि खाना पूर्ति से अधिक कुछ भी। तो मैं समझता हूं कि SP को हटाना कोई एक सजा नहीं, कायदे से होना तो ये चाहिए था पुलिस के ऊपर FIR होनी। अगर पुलिस के सामने अगर किसी की भी हत्या होती तो फिर उसके लिए तो पूरी तरह से पुलिस जिम्मेवार।
1: इधर आरोपों पर झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने सख्त प्रशासनिक कदम उठाए हैं। उन्होंने भाजपा पर घटना पर राजनीति करने का आरोप लगाया।
3: दो दो पुलिस कप्तान हटाए गए, थानेदार सस्पेंड हुआ, पुलिस कर्मी सस्पेंड हुए, प्रशासनिक कार्रवाई और SIT का गठन हुआ, मुख्य आरोपी पर पकड़ने के लिए इनाम घोषित की गई। इससे बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई और क्या हो सकती है? उसमें आप बंद बुलाइए, मशाल जुलूस निकालिए, ये जनता को गुमराह करने के लिए।
1: राज्यसभा सांसद प्रदीप कुमार वर्मा ने चांडिल मुरी रेलखंड के 59 किलोमीटर विद्युतीकरण परियोजना को अधिसूचित किए जाने को ऐतिहासिक कदम बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि यह परियोजना न केवल क्षेत्र में रेल अवसंरचना को सुदृढ़ करेगी बल्कि यात्रियों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ क्षेत्र के औद्योगिक, व्यापारिक और आर्थिक विकास को भी नई गति प्रदान करेगी। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का आभार जताया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज प्रोजेक्ट भवन में शाम 4 बजे झारखंड कैबिनेट की बैठक होगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में कई कल्याणकारी योजनाओं को मंजूरी मिलने की संभावना है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने जमशेदपुर के सदर अस्पताल पहुंचकर ब्रेन मलेरिया से पीड़ित बच्चों का हालचाल जाना। उन्होंने पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका, घाटशिला और मुसाबनी के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रेन मलेरिया के बढ़ते प्रकोप पर गंभीर चिंता जताई। श्री मुंडा ने जिला प्रशासन से तत्काल युद्ध स्तर पर रोकथाम, उपचार और जागरूकता अभियान चलाने की मांग की।
4: फर्सिफेरम ब्रेन मलेरिया के नाम से बच्चों, लगभग इस समय 35 इस तरह के पेशेंट यहाँ एडमिट है, उसमें से अधिकतर बच्चे हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अस्पताल नहीं पहुँचे, इसलिए वो सारे बच्चों की मृत्यु हुई। मैं ये आग्रह करूँगा खास करके ग्राम प्रधानों से और मुखिया से, ऐसे प्रभावित लोग उनको विलम्ब किए बगैर तुरंत अस्पताल के लिए भेजे।
1: घरेलू शेयर बाजार आज 0.3% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 244 अंक की उछाल के साथ 77,166 के उच्चतम स्तर पर और निफ्टी 81 अंक बढ़कर 24,086 पर आ गया। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,34,800 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,40,000 रुपए प्रति किलो है। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है।
5: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की

0: बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड और सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड सीएमपीडीआई ने कोयला एवं खनिज परियोजना के विकास और संचालन के लिए 3 वर्षीय तकनीकी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत अन्वेषण, खान संचालन, परियोजना प्रबंधन, पर्यावरण प्रबंधन, प्रयोगशाला परीक्षण तथा क्षमता निर्माण सहित खनन मूल्य श्रृंखला के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। चतरा, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, हजारीबाग, पलामू, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम जिलों के कुछ भागों में अगले 1 से 3 घंटों में तेज हवा चलने, बादल गर्जन तथा वज्रपात के साथ वर्षा की संभावना है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने एसआईआर के तहत स्वयं गणना प्रपत्र भरकर और हस्ताक्षर कर बीएलओ को सौंपा। सभी पात्र नागरिकों से की सहभागिता की अपील। केंद्र सरकार ने ईपीएफओ योजना 2026 को किया अधिसूचित। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। राज्यसभा सांसद प्रदीप कुमार वर्मा ने चांडिल मोरी रेलखंड की विद्युतीकरण परियोजना को अधिसूचित किए जाने को बताया ऐतिहासिक कदम। प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का जताया आभार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक। लिए जाएंगे कई महत्वपूर्ण फैसले। और एनटीपीसी और सीएमपीडीआई के बीच कोयला एवं खनिज परियोजनाओं के विकास और संचालन के लिए हुआ एमओयू। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

जब आप मिला, वासु की भूमिका कमल हासन ने निभाई थी और सपना बनी थी रति अग्निहोत्री फिल्म एक दूजे के लिए का ये गाना, लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीत। कितनी खूबसूरत पंक्तियां लिखी हैं आनंद बख्शी साहब ने, दुनिया में प्यार की एक ही बोली। तो बताइए कि इस एक ही बोली के साथ साथ कितने सारे गीत बनते चले जाते हैं और वो कौन सा गीत है जो आपको सबसे ज्यादा मन को लुभाता है? बताइए हमें कि इस भाव के साथ लिखा गया वो कौन सा गीत है जो आपको सबसे ज्यादा लुभाता है। हमारे श्रोताओं के कुछ संदेश हैं। मन किसी गीत नगमे की तरह खिल रहा है और किसी खास इंसान, अनजाना रिश्ते की तरफ, अपने भीतर छिपे किसी एहसास की तरफ आकर्षित हो रहा है। ये मौसम की इनायत भी हो सकती है और प्यार का एहसास भी। हमारे एक श्रोता ने बताया कि सुरीला सफर शुरू होते ही बनारस में बारिश शुरू हो गई। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई बारिश की, ये मौसम की पहली बारिश, बहुत बहुत मुबारक। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि आज तो सुरीला सफर में शायद विवाह की बात होगी। एक ऐसा रिश्ता अनजान होते हुए भी एक दूसरे को सब कुछ सौंप देना, प्यार की असीम खुशी के साथ जीवन जीने की इच्छा और 7 जन्म तक साथ निभाने का वादा करना ही जीवन है। एक और श्रोता ने कहा है कि कहा जाता है कि बंधनों के कई रूप होते हैं, 7 फेरों का बंधन, 7 जन्मों का बंधन, जन्म जन्मांतर का बंधन, परंतु एक बंधन और हो भी होता है, मन से मन का। बहुत सुंदर, रेशम सा कोमल, बहते हुए नीर सा पवित्र, हवाओं में खुली हुई चंदन और फूलों की महक सा जो मन से मन की डोर को बांध कर रखता है। जब यह बंधन बनता है तो एक चुप सा मौन सा बन जाता है। यहाँ दिव्य प्रेम की अनुभूति होने लगती है जिसमें किसी अग्नि साक्षी, किसी हवन, यहाँ तक कि किसी 7 वचन की भी कोई भूमिका नहीं है। यहाँ जो प्रेम डोर में बंधन होता है उसे आपस में केवल मन से मन को एक मौन ने स्वीकार किया है। न बांधने की चाहत, न छूटने का डर, क्योंकि ये है मन से मन का बंधन। बहुत सुंदर बात कही आपने। और अब अगला गीत सुन रहे हैं, सुनिए और बताइए कि इस फिल्म के संगीतकार कौन हैं। और हाँ, मौसम को लेकर जो प्यार की बोली की बात है उसमें आपको सबसे सुंदर, सबसे प्यारा, मन के करीब गाना कौन सा लगता है?

वहाँ एक अबरे जवां, देखो तो जरा क्यों झुकने लगा, ओ हो, और देख के ये क्यों दिल अपना कुछ घटने लगा, कुछ रुक

0: इकबाल कुरैशी का संगीत था इस फिल्म में लव इन शिमला का। ये गाना आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में। और हमने जो गानों के का जिक्र किया था कि ऐसे दिल के बोल, दिल की प्यार की बोली बोलने वाले कौन से गाने आपको पसंद हैं, तो हमारे श्रोताओं ने कई गाने, बड़े सुंदर सुंदर गाने लिख भेजे हैं। मीठे बोल बोले बोले पायलिया, और पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, रफी जी, सुमन जी, शगुन फिल्म का गाना, और एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। एक और श्रोता ने लिखा है कि आना तो आके कभी अब जाना नहीं। एक श्रोता लिख रही है कि बाहर बरसात हो रही है और रेडियो सेट पर गानों की क्या बात है। एक और श्रोता ने बताया नजरों से कह दो प्यार में मिलने का मौसम आ गया। एक श्रोता पूछ रहे हैं कि रुम्बा कहाँ की भाषा है, इसका क्या मतलब है जी। तो अच्छा होगा कि हमारे जो कोई दक्षिण भारतीय साथी इस समय हो फेसबुक पर वो बताएं। एक बड़ा खूबसूरत सा गाना हमारे एक श्रोता ने लिख भेजा है, अरे ओ शोक कलियों मुस्कुरा देना, जो वो जब आए, सुनो फूलों महक अपनी लुटा देना, वो जब आए, फिल्म जब याद किसी की आती है का ये बड़ा ही सुंदर सा गीत इन्होंने हमारे साथ साझा किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक श्रोता बता रहे हैं कि फिल्म एक दूजे के लिए मैंने 1982 में पहला मैटनी शो देखा था, उस समय मैं फोर्थ ईयर कॉलेज में था, इस फिल्म ने सभी को पागल बना दिया था। और बहुत सारे संदेश और भी हैं। हमारे एक श्रोता ने कहा है कि मौसम अंगड़ाई में गदराई वसुधा के रूप सौंदर्य से बौराए आशिक मिजाजी दीवानगी को और भी दहनशील बनाती इबारत है, सुमन सुगंध व्याप्त कुसुमदल के मधुरस पान कराती और प्रेम रस बिखेरती इबारत में दीवानगी की हदें पार हो जाएं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। एक और श्रोता ने कहा है कि प्रकृति का सौंदर्य, फूलों की मुस्कान एवं भीनी खुशबू और मौसम का मनमोहक मिजाज आपस में मिलकर एक ऐसी जीवंत कविता रचते हैं जो तन और मन को गहराई से भिगो देती है। ये वो त्रिवेणी है जहां हर एक तत्व दूसरे का पूरक बनकर इस धरा को स्वर्ग जैसा अनुभव कराता है। सौंदर्य, सुगंध और मौसम के संगम का सीधा असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। क्या बात कही है, बदलते मौसम के साथ प्रकृति का मिजाज भी बदलता है। आसमान में तैरते बादलों की लुका छिपी कभी रिमझिम फुहारें और क्षितिज पर बिखरती सूर्य की किरणें ऐसा समा बांधती हैं कि प्रकृति का हर कण जीवंत हो उठता है, जो आसमान के साथ जीवन में भी सतरंगी इंद्रधनुष रच देता है। तो बताइए कि ये जो इंद्रधनुष रचता है सतरंगी आसमान में बारिश के दिनों में, उस इंद्रधनुष के साथ रंगों का प्रयोग इस गाने में तो हो ही रहा है जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, और कहां कहां पर होता है, और क्या आज भी आप वैसे ही ललक कर इंद्रधनुष देखने छत पर जाते हैं या बाहर निकलते हैं जैसे बचपन में जाया करते थे?
1: नहीं नहीं,

सलील चौधरी का संगीतबद्ध किया हुआ ये सुरीला सा गाना आनंद फिल्म से मुकेश की आवाज में आपने सुना और बहुत सारे श्रोताओं ने बताया वो गाना जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है। एक श्रोता ने लिखा है कि जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा, ये भी मुझे पसंद है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि इस मौसम का सबसे बेहतरीन सुंदर गीत जो मेरा और विविध भारती का पेटेंट परमानेंट गीत है, रिमझिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन। इस गीत का फिल्म का नाम मैंने विविध भारती रखा है, वैसे इस फिल्म का नाम है मंजिल। क्या बात है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि रफी साहब की आवाज है ये तो पहचाने, इन्होंने शायद लव इन शिमला फिल्म के उस गाने की बात की है। इसी गाने के लिए हमारे एक और श्रोता ने बताया है कि इस गाने में इलेक्ट्रिकल हवाईयन गिटार स्वर्गीय सरदार हजारा सिंह जी द्वारा बजाया गया है और बड़ा प्यारा गीत दिल थाम चले हम। जब भी बारिश होती है तो पहले ये गाना होठों पर तैर जाता है, बरखा रानी जरा जम के बरसो। और ये पर्वतों के दायरे ये शाम का समा, ये गाना बहुत पसंद है हमारे एक और श्रोता को। मौसम आधारित गीतों में सबसे ज्यादा पसंद है ये गाना हमारे एक और श्रोता को, मौसम मौसम ये लवली मौसम। और दूसरा लोफर का आज मौसम बड़ा बेईमान है। और हमारे कुछ श्रोताओं ने दिल थाम चले गीत के बारे में बताया है कि बहुत ही रोमांटिक गाना है। एक श्रोता बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा लुभाने वाला फिल्म गीत है तीसरी कसम का, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। और ये एक और श्रोता ने कहा है कि इस गीत के बारे में केवल ये पता है कि रफी साहब गा रहे हैं। तो चलिए, हमारे जिन श्रोताओं को पता है कि इस फिल्म में रफी साहब की गीत के इस आवाज को पर्दे पर कौन अपने होठ हिला रहे हैं, तो अगर आपको पता हो तो हमें जरूर लिख भेजें। एक और श्रोता ने केदारनाथ फिल्म के गाने का जिक्र किया है, काफिराना सा है इश्क है या क्या है, ऐसे तुम मिले हो जैसे मिल रही हो इत्र से हवा। बहुत सुंदर गाना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, ये इनका गाना बहुत इन्हें प्रिय है। तमिल भाषा का शब्द है रुम्बा, हमारे एक श्रोता ने बताया है। और एक और श्रोता कह रही है कि आपकी दुआ का असर हुआ है, कल बनारस में रात को एक घंटा रिमझिम बारिश हुई थी, हमारे सभी पेड़ पौधे बारिश के पानी से भीग गया था, जैसे खिल गया सब पेड़ पौधे, बनारस में मौसम सहनीय हो गया है, आपको ढेर सारा शुभेच्छा। आप नहीं वर्षा के बाशिंदों को दुआ भेजिए जी, जरूर वहां बारिश होगा। क्या बात है भाई, हम तो बिल्कुल भेज रहे हैं अपने उन सभी श्रोताओं के लिए, ठंडे ठंडे बादल वहां तक पहुंचे। और अब ये गाना आप सबके लिए, जरा इस गीत को सुनिए, फिल्म का नाम और प्रमुख कलाकारों के नाम बताइए।

इंद्रधनुष को लेकर हमने जो सवाल पूछा था उसके जवाब कई देखने को मिले। इंद्रधनुष को देखना अच्छा लगता है बचपन में भी और अब भी, इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। और एक और श्रोता ने बताया कि मैं अमेरिका के नियाग्रा फॉल देखने गई थी, वहां मैंने एक ही जगह पर ही छोटे छोटे बहुत से इंद्रधनुष हर थोड़ी थोड़ी दूर पर देखे जो बहुत अजूबे से लगे। वाकई हम तो सोच रहे हैं कि क्या नजारा होगा वो। एक और श्रोता ने कहा है कि असल जिंदगी में मुंबई में इंद्रधनुष नहीं दिखता। आज का प्रोग्राम मुझे प्रोत्साहित कर रहा है कि मुंबई से बाहर जाके इंद्रधनुष देखूं। क्या बात है। एक और श्रोता ने कहा है कि इंद्रधनुष जब भी बादलों से झांकता था हम रंग गिनने लग जाते थे, शहरों में कम दिखाई देता है। मिस यू। सच में इंद्रधनुष जब भी दिखता है तो लगता है वाह वो दिन लौट आए। एक और श्रोता ने कहा है कि हम तो अभी भी इंद्रधनुष उतनी ही ललक के साथ देखते हैं, और एक बार तो दो एक साथ इंद्रधनुष निकले थे तो इच्छा भी मांग ली। हाँ ये टोटका तो बहुत ही ज्यादा कारगर होता था, और कितना इसको जो सबसे पक्की सहेलियां होती थी वो तुरंत दौड़कर बुला ले जाती थी कि चलो चलो दो इंद्रधनुष निकले हैं, जो मांगना है मांग लो। और बहुत बार मांगा जाता था कि भाई गणित का पर्चा बड़ा खराब होने वाला है, नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो वो उसमें अच्छे नंबर आ जाए, या कि हमें ये ड्रेस मिल जाए, कुछ इस तरह की ख्वाहिशें होती थी। आपने क्या कभी ऐसी कोई ख्वाहिश की है हमें जरूर बताइएगा। एक और श्रोता कह रहे हैं कि रुम्बा ये तमिल शब्द है, मतलब बहुत ज्यादा, बहुत या बहुत ज्यादा। एक और श्रोता ने कहा है रंग तो जीवन शैली का अभिन्न अंग है, शिक्षा हो, सजावट हो, प्रकृति हो, विज्ञान हो या जीवन ही क्यों ना हो, ये सात रंग ही असली हैं, बाकी सब नकली है। बरसातों में दूर पहाड़ पर ये इंद्रधनुष मनमोहक होता है। और ये भी तो बताइए कि इन सात रंगों का, इन सात की ये गिनती जो है वो सुरों में भी इस्तेमाल होती है, सात सतरंगी सपने भी होते हैं और इंद्रधनुष तो होता ही होता है। एक श्रोता ने कहा है कि हमारी सगाई के बाद जब पारिवारिक फंक्शन में होने वाली धर्मपत्नी से मुलाकात हुई थी तो मौका देखकर अकेले में ये गीत गाकर सुनाया था, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा, ये सुनकर वो मुस्कुराई, ये प्यार आज तक कायम है और अंतिम सांस तक रहेगा। वाह बहुत सुंदर बात। एक और श्रोता कह रहे हैं वाह बहुत सुंदर, मैंने तेरे लिए सात रंग के सपने, सुरीले सपने चुने, हर अंतरे में कई भावों को बांध कर दिल की बातें करता हुआ प्रतीत होता है। मुकेश जी की आवाज। और ये हमारे श्रोताओं ने कुछ संदेश में कहा है रजनीगंधा की बात। रजनीगंधा संग खिलता मन अक्सर किसी अनजाने से बंधन की महक से सराबोर हो जाता है। जिंदगी की आपाधापी में जब कोई खास करीब आता है तो भावनाएं धीरे धीरे से दिल में अपनी जगह बनाने लगती हैं। शुरुआत भले ही खामोश हो लेकिन जैसे ही दिलों के तार जुड़ते हैं जीवन के सारे सुर सुरमयी हो जाते हैं और बिखरे हुए जज्बात सिमट कर एक मुकम्मल ताल में बन जाते हैं। बड़ी सुंदर बात कही आपने। तो चलिए अब अगला गाना सुनते हैं। इस गाने को सुनकर बताइए कि इस फिल्म में प्रमुख भूमिका में अभिनेत्री कौन थी, और साथ ही आपको यह भी बताना है कि ये जो फूल है रजनीगंधा ये गुलदानों में बहुत लोकप्रिय होता है, या कभी हम जब किसी को बुके गिफ्ट करते हैं, आपको अपने फ्लावर वेज में कौन सा फूल सबसे सुंदर लगेगा अगर आप किसी को देना चाहें या घर में सजाना चाहें, कौन सा फूल सबसे सुंदर लगता है।

0: पिछले गीत के सवाल का जवाब नजर आया। हमारे श्रोताओं ने बताया कि प्रेम गीत फिल्म के का जो गाना हमने सुनवाया था और पूछा था कि प्रमुख कलाकार कौन से हैं, राज बब्बर और अनीता राज पर फिल्माया गया है ये गाना और इनकी लिस्ट का ये पांचवा गीत शामिल हुआ, बहुत बहुत बधाई। और एक और श्रोता ने बताया कि जबलपुर का मौसम बड़ा खुशगवार हो गया है, बरखा रानी आज सुबह से ही बरस रही है, सुबह सुबह छत पर जाकर सूर्य नमस्कार करने की आदत है, आज जब छत पर गए तो रिमझिम फुहारों और फुहारों के साथ फूलों का झूमना, पंछी की मधुर आवाज दिल को अजीब सुकून दे रही थी, ये मंजर हमने वीडियो में कैद कर लिया है। आज की बारिश शायद ये कहना चाह रही है, रजनीगंधा फूल तुम्हारे यूं ही महके जीवन में, ये पल हमें याद आएंगे, मौसम मस्ताना रास्ता अनजाना। अच्छा, इन्होंने कुछ और गीत भी बताए हैं, क्या मौसम है चल कहीं दूर निकल जाएं, हाँ ये भी बहुत सुंदर ही सा गीत है। एक श्रोता ने बताया कि बचपन में जब इंद्रधनुष दिख जाता था तो हम कुछ विश मांगते थे, और एक श्रोता ने कहा है कि वाह क्या सुंदर प्रश्न पूछा आपने, हम तो जब भी वर्षा ऋतु में मेघों का आगमन होता है तो मोबाइल लेकर छत पर चढ़ जाते हैं रूई जैसे सुंदर सुंदर मेघों की क्लिक्स लेने के लिए, खूब सारी क्लिक्स लेते हैं लेकिन फिर वापस भागना पड़ता है भीगने के डर से, स्वयं नहीं मोबाइल के। सच में मोबाइल बचाना बहुत जरूरी है इस मौसम में। एक और श्रोता कह रहे हैं, जो हमने छोटे छोटे इंद्रधनुषों वाला एक संदेश पढ़ा था उसी से संबंधित है ये संदेश हमारी एक और श्रोता का, लिखा है ये तो हमने भी देखा क्योंकि कनाडा और अमेरिका दोनों के बीच का नजारा ही है नियाग्रा फॉल्स पर, बड़ा ही प्यारा नजारा हम कभी नहीं भूल सकते, वो इतना प्यारा समा वो पल मानो हमारे दिल में सदा के लिए बस गया है। एक और श्रोता ने कहा है कि मौसम की बातें हो रही हैं तो आज सभी को गरजते बरसते बादलों का इंतजार है लेकिन कुदरत भी और इंतजार करा रही है, इंतजार के इस वक्त के लिए इनको गीत याद आया है कहां से आए बदरा, फिल्म चश्मे बदूर का गाना। और एक श्रोता कह रहे हैं कि भाई इंद्रधनुष प्रेमी इंद्रधनुष को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भली भांति देख सकते हैं और अपने अपने दुनिया को मुट्ठी में भरकर खुश हो सकते हैं। भाई ये कुछ मतलब ठीक है देख सकते हैं लेकिन देखने के साथ जो उसको एक उल्लास जुड़ा रहता है वो कैसे महसूस होगा। ये हमारे एक श्रोता ने मैसेज भेजा है कि आज कालिख वक्त एहसास और यादों के खूबसूरत ताने बाने को बुनता है, ये महज एक कुछ पंक्तियां नहीं बल्कि जिंदगी के सुरीले सफर का एक जीवंत दस्तावेज है, इसमें एक ऐसे रूमानी मौसम का जिक्र है जो अपने साथ सतरंगी ख्वाब लेकर आया है, जहां अनजाने रिश्ते भी सदियों पुराने लगते हैं, जैसे ही रजनीगंधा की भीनी खुशबू हवाओं में घुलती है जिंदगी का हर बिखरा सुर एक मुकम्मल ताल बन जाता है, ये लम्हा भले ही हमेशा न ठहरे पर जाते जाते दिल में ताउम्र मुस्कुराने वाली एक मीठी कसक छोड़ जाता है। सच में एक और श्रोता ने कहा है कि पुष्प बहार का सुहाना मौसम सुगंधित फूलों की महक जीवन को खुशियां प्रदान कर रही है, सृष्टि देवता खिलकर प्रसन्नता से हंस रही है, मन भावन गीत तन्मयता से गुनगुना रही है, बिल्कुल बादल बिजली चंदन पानी और सुमन सुगंध की तरह धीरे धीरे यह मस्ताना मौसम एक मीठी मीठी सी चुभन और ठंडी ठंडी सी अगन हमें अर्पित कर रहा है, सुरीले सफर में आज ऐसे ही कुछ मधुर गीत। और इन्होंने कुछ गीतों का भी जिक्र किया है और बड़ी खुशी की बात है कि शुरुआत में भेजा हुआ संदेश इसमें से कई गाने हमारी लिस्ट से मैच हो गए। एक और श्रोता ने कहा है कि कलियां और बहारों की तो बातें हैं और रजनीगंधा फूल तुम्हारे यूं ही महके जीवन में, आओ मिल जाएं हम सुमन और सुगंध की तरह, ये कुछ इन्होंने गीत लिखे हैं तो चलिए ये गीत भी शामिल हो गए। और एक और श्रोता ने कहा है कि फूल और कलियों की बातों पर इन्होंने अपने चारों तरफ उन्हें खिलते हुए महसूस किया है। अब ये कार्यक्रम का आखिरी गीत आपके लिए, इस गीत को सुनिए, बताइए फिल्म का नाम और प्रमुख कलाकारों के नाम।
1: अभी अलविदा मत कहो।

रात होगी लेकिन यादों के ये चिराग जलते रहेंगे। हमारे श्रोताओं ने बताया निकाह फिल्म का ये गाना आपने सुना। महेंद्र कपूर की आवाज़, हसन कमाल के बोल, रवि का संगीत, राज बब्बर और सलमा आगा की ये फिल्म। और बहुत सारे संदेश भेजे हैं उन फूलों के बारे में। हमारे एक श्रोता ने कहा है, रजनीगंधा तो सच में दिल से दिल की आवाज़ पहुंचाने का जरिया है। मानो हमारी गुरु स्वरूपा दीदी ने जब इतने प्यार से हमारे सत्संगी सखी के लिए रजनीगंधा फूलों का गुलदस्ता भेजा तो नेत्रहीन हो चुकी और डायलिसिस पर चल रही सखी फूलों को पाकर खुशी से झूम उठी और रजनीगंधा फूल तुम्हारे गीत गुनगुनाने लगी। उनकी खुशी देखकर हम सब भी खुशी से सारे दर्द भूल कर उनके साथ झूमने लगे। ये बदलाव पर व्यंग है जिसकी गिरफ्त में हम सभी प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग का दंश झेल रहे हैं, हमारे एक और श्रोता ने कहा है, जो उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया पर देख सकते हैं और कर सकते हैं। और हमारे और श्रोताओं के भी संदेश हैं, लेकिन अब कार्यक्रम का वक्त हो रहा है। एक श्रोता कह रही है कि फ्लावर वास से ज्यादा हमको ये जो पेड़ों पर फूल अच्छे लगते हैं, पेड़ पौधों पर अच्छे लगते हैं, क्योंकि फ्लावर वाज में ये जल्दी से मुरझा जाते हैं। हाँ, सच में मुरझा जाते हैं, लेकिन यादों की खुशबू कभी कम नहीं होती और कभी नहीं मुरझाते वो फूल जो मीठी मीठी बातों के साथ हमारे मन में यादों के रूप में सुरक्षित रहते हैं। इन्हीं बातों के साथ अब दीजिए राजुल को इजाजत। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन, विविध भारती।

नमस्कार दोस्तों, मान सम्मान आदर किसी भी व्यक्ति संस्था या वस्तु के प्रति सकारात्मक भावना या सम्मानपूर्ण व्यवहार होता है। ये किसी के अच्छे गुणों, योग्यताओं या उपलब्धियों के लिए प्रशंसा की भावना को व्यक्त करता है। हर एक मानव स्वभाव के लिए ये एक सार्वभौमिक या सर्वमान्य सच्चाई है कि हर व्यक्ति अपने लिए सम्मान और आदर की अपेक्षा रखता है। सम्मान पाने की ये लालसा किसी भी उम्र, लिंग या पद से परे होती है। सम्मान किसी स्वार्थ या मजबूरी से प्राप्त किया गया है तो ज्यादा नहीं टिक पाता, कभी ना कभी सच्चाई सामने आ ही जाती है। इसीलिए ये जान लें कि सच्चा सम्मान आपसी विश्वास और प्रेम से ही उपजता है। इस बुनियादी मानवीय मूल्य को समझने की बहुत आवश्यकता है। यदि सम्मान किसी भी व्यक्ति की उम्र, जाति, धर्म, पद प्रतिष्ठा, सामाजिक या आर्थिक स्थिति की वजह से किया जा रहा है तो बस ये एक झूठ है या फिर छलावाई से समझ सकते हैं, क्योंकि सम्मान तो ऐसी हर स्थिति से परे मानवीय गरिमा की निशानी है।

सम्मान कोई खरीदी जाने वाली वस्तु नहीं, बल्कि इंसान के कर्मों, विचारों और व्यवहार से कमाई गई सबसे बड़ी पूंजी है। ये ऐसा अनमोल उपहार है जो हम दूसरों को दे सकते हैं और बदले में हमें वही वापस भी मिलता है। विनम्रता और आदर के बिना सच्चा सम्मान कभी पाया नहीं जा सकता। हर व्यक्ति अपनी गरिमा और आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहता है और ये एक शाश्वत सत्य है। सम्मान एक दो तरफा प्रक्रिया है। वो इस तरह कि यदि कोई व्यक्ति दूसरों से आदर की अपेक्षा करता है तो उसे खुद भी अन्य लोगों के विचारों, भावनाओं और सीमाओं को सम्मान देना होता है। बाहरी सम्मान की प्राप्ति के लिए हमें खुद की नजर में सम्मानित और आत्मविश्वासी होना जरूरी है। जो व्यक्ति खुद का मूल्य समझता है, दुनिया भी उसकी कद्र करती है। अपने व्यक्तिगत जीवन या कार्य क्षेत्र में सम्मान पाने के लिए दूसरों को सम्मान देने की हमारी भावना बेहद जरूरी है।

सम्मान की चाह मानव स्वभाव का एक अंतर्निहित हिस्सा है। हम दूसरों से सम्मान पाना तो चाहते हैं, तो सबसे पहले दूसरों के विचारों, सीमाओं और भावना को सम्मान करना सीखना होगा। किसी भी व्यक्ति से सम्मान की अपेक्षा रखने से पहले आत्मसम्मान करना और अपने मूल्यों पर अडिग रहना बहुत ही जरूरी है। जो व्यक्ति खुद की कद्र करता है, दुनिया भी उसकी कद्र करती है। अपनों से बड़ों का सम्मान करना हमारी संस्कृति और नैतिक मूल्यों की मजबूत नींव है। अपने अनुभव हमें सही मार्गदर्शन देते हैं और बड़ों का आशीर्वाद हमारे जीवन में सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। बड़ों के प्रति आदर भाव रखने से सकारात्मकता बढ़ती है और हमें जीवन में आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। भला।

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मॉनसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। फीफा विश्व कप में अमेरिका ने बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। बेल्जियम ने सेनेगल को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान ने आर्थिक तथा ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की। सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि इस परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत और जापान ने एआई के क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत जापान जैव गैस पहल के माध्यम से भारत में 1000 जैव गैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे भारत के गांवों में स्थिरता, समृद्धि और ग्रामीण आजीविका को नई शक्ति मिलेगी।
1: भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं। इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोडमैप तैयार किया है। इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर, क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के माध्यम से हमें भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाने में सहायता मिलेगी।
0: इससे पहले आज प्रधानमंत्री ताकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से चले आ रहे प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाए

0: गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया है कि वे भारत द्वारा 3 दशक पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सर्वमान्य कानूनी ढांचे का अभाव वैश्विक आतंकरोधी प्रयासों को कमजोर करता है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड न अपनाने पर बल देते हुए अपराधियों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया।
1: India has been a victim of cross-border terrorism for decades.
2: भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
0: अमेरिका, इसराइल और अर्जेंटीना ने प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। 4,822 श्रद्धालुओं का पहला जत्था, जिसमें बालटाल रूट के लिए 2,312 और पहलगाम रास्ते के लिए 2,510 लोग शामिल थे, 147 गाड़ियों के काफिले में रवाना हुए। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, विकसित भारत जयराम जी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ आज तिरुपति जिले के मुक्कावली पल्ले गांव में विकसित भारत जयराम जी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
3: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जयराम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कर रहे, पहले साल ही विकसित भारत जयराम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
0: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आंध्र प्रदेश के लिए 70,000 से अधिक आवासों की मंजूरी दी। उन्होंने ग्रामीण संपर्क और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 422 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि से 146 ग्रामीण सड़कों और 19 पुलों के निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र भी सौंपे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक से दूसरी तकनीक की जगह नहीं ले रहा है, बल्कि इससे टिकाऊ औद्योगिक इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित भारत के लिए देश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ तथा संतुलित विकास के साथ जीवन को सुगम बनाने के प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मॉनसून के मौसम में 21 लाख पौधे लगाए जाएंगे। जिले में विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची के लोकभवन में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर संबंधित मुख्य चुनाव अधिकारी रवि कुमार और जिला चुनाव अधिकारी मंजुनाथ भजंत्री को सौंपा। उपराज्यपाल ने देश के सभी योग्य पात्रों को जनगणना प्रपत्र सही समय पर भरने की अपील की। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई।

0: घटना उस समय हुई जब मधपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गया जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉ जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने आईएसआई प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @XHIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में तथा मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर भागों में पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन में मॉनसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की उम्मीद है। वहीं पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों के लिए तेज बारिश की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में मॉनसून के आगमन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई है।
1: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को लंबे वक्त से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर और संभल में बहुत भारी बारिश हुई, जिससे कुछ क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि दिन के तापमान में भी गिरावट आई। ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे थे। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है और कहा है कि राज्य भर में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम के हालात बेहतर बने हुए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: महाराष्ट्र में आज लगातार दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश जारी रही।
2: मुंबई में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, यातायात धीमी पड़ गई है और उपनगरीय रेल सेवाएं कुछ मार्गों पर प्रभावित हो रही है। लगातार बारिश के चलते पवई लेक पूरी तरह भर चुका है। मुंबई विश्वविद्यालय ने पालघर जिला तथा पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र के महाविद्यालयों में आज होने वाली परीक्षा रद्द कर दी है। मौसम विभाग ने उत्तर महाराष्ट्र तथा दक्षिण महाराष्ट्र गोवा तट पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: कनाडा के अधिकतर क्षेत्रों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। वहीं कुछ क्षेत्रों में बारिश और बाढ़ की समस्या बनी हुई है। ओंटारियो, क्यूबेक, प्रेरीज और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के कुछ हिस्सों के लिए गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, बाहरी गतिविधियों से बचने और वरिष्ठ नागरिकों तथा बच्चों का ध्यान रखने की सलाह दी है। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलेमंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। अब अमरीका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 402 अंक के साथ 77,325 के उच्चतम स्तर पर और निफ्टी 129 अंक बढ़कर 24,135 पर आ गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। आइए सुने सदाबहार नगमे। सदाबहार नगमे कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं अमर फिल्म का ये गाना, लता मंगेशकर और साथियों का गाया हुआ, शकील बदायूनी के बोल हैं और नौशाद की धुन।

असद भोपाली का लिखा और रवि का संगीत पर किया हुआ ये गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम अपना बना के देखो। और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म चार दीवारी का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा है शैलेंद्र ने, सुरों में पिरोया है सलील चौधरी ने।

0: एक रास फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। बोल मजरूह सुल्तानपुरी के थे और धुन बनाई थी चित्रगुप्त ने।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं हनीमून फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा है शैलेंद्र ने, धुन बनाई है सलील चौधरी ने।

लता मंगेशकर और मन्ना डे के स्वरों में ये गीत आपने सुना। सम्राट चंद्रगुप्त से हसरत जयपुरी ने लिखा था और कल्याण जी आनंद जी ने धुन बनाई थी। और अब आपको सुनवा रहे हैं न्यू दिल्ली फिल्म का ये गीत, लता मंगेशकर और साथियों का गाया हुआ गीत। लिखा है शैलेंद्र ने, सुरों में पिरोया है शंकर जयकिशन ने। यह है आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। दीजिए राजुल को इजाजत, सुनते हैं ये सदाबहार नगमा।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है आज। इस बैठक में राज्य की नई औद्योगिक और टेक्सटाइल नीति पर बड़ा फैसला होने की संभावना है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। इसके अलावा राज्य के विकास और जनहित से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है। करणी सेना के नेता हिमांशु सिंह हत्याकांड के विरोध में भारतीय जनता पार्टी आज शाम जमशेदपुर में मशाल जुलूस निकालेगी। भाजपा ने राज्य की कानून व्यवस्था के खिलाफ कल जमशेदपुर बंद का भी आह्वान किया है। इस बीच पुलिस ने मुख्य फरार आरोपी पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू 5 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका मुख्य फोकस विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान पर रहेगा। किसी भी पात्र मतदाता का नाम न छूटे, इसके लिए कांग्रेस ने राज्य भर में 23,000 बूथ लेवल एजेंट तैनात किए हैं। सरायकेला खरसावां जिले के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी ने कार्यभार संभाल लिया है। पदभार लेते ही उन्होंने आदित्यपुर थाना का औचक निरीक्षण किया। नए एसपी ने कहा कि जिले में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी।
1: प्रीवियस एसपी है, उन लोगों ने अच्छा काम करके क्या क्या कार्रवाई कर सकते हैं, पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि ड्रग्स में हम लोग हमेशा जीरो टॉलरेंस रहेगा और पुराने क्रिमिनल्स पहले हम लोग को वेरीफाई किया जाएगा। एंटी क्राइम चेकिंग में दिन में 2 बार हम लोग लगाने का शुरू करेंगे और उसमें अगर कोई क्रिमिनल इसमें घूम रहा है तो उसको भी हम लोग नजर करेंगे।
0: गौरतलब है कि कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर वर्तमान एसपी निधि द्विवेदी के स्थान पर मनोज स्वर्गियारी को जिले की कमान सौंपी गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पाकुड़ में साल 2013 में नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए तत्कालीन एसपी अमरजीत बलिहार और 5 जवानों की पुण्यतिथि पर आज उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह समेत वरिष्ठ अधिकारियों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शहादत को नमन किया। इस मौके पर शहीद जवानों के परिजनों को भी सम्मानित किया गया। राज्य सरकार के आदेश पर जिले के सभी 6 प्रखंडों में ड्राइविंग लाइसेंस कैंप लगाए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज जामताड़ा प्रखंड कार्यालय में विशेष कैंप का आयोजन किया गया, जहां आवेदकों की भारी भीड़ उमड़ी। जिला परिवहन पदाधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि दस्तावेजों की जांच के बाद पात्र आवेदकों को मौके पर ही लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं।
2: उपायुक्त महोदय के मार्गदर्शन में यह प्रखंड स्तरीय ड्राइविंग लाइसेंस का कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आवश्यक दस्तावेज है, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आधार नंबर, इन सभी दस्तावेजों को लेकर प्रज्ञा केंद्र में आवेदन करेंगे। आवेदन करने के उपरांत ऑनलाइन फी पेमेंट करके स्लॉट बुक करेंगे, यहाँ इस कैंप में टेस्ट के लिए आएंगे। अग्रेतर कार्रवाई करते हुए उनको लर्निंग लाइसेंस दिया जाएगा।
0: हजारीबाग नगर निगम को चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में कुल 6,09,00,000 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। इस अवधि में 649 नए हाउस होल्ड का पंजीकरण भी किया गया है। राजस्व संग्रह में वार्ड संख्या 12 पहले और वार्ड संख्या 5 दूसरे स्थान पर रहा। निगम प्रशासन ने समय पर टैक्स भुगतान करने वाले नागरिकों का आभार व्यक्त किया है। राज्य में 10 जुलाई तक अच्छी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार कल बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले 10 दिनों तक अच्छी वर्षा होगी, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। हालांकि प्रशांत महासागर में अल नीनो के प्रभाव के कारण पूरे जुलाई महीने में सामान्य से कम बारिश का अनुमान है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ सकती है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सखी सहेली सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। दीपा आपको भी मेरा नमस्कार।
1: सोनाली आपको और हमारी सभी सखियों सहेलियों श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
0: और क्या हालचाल है?
1: बिल्कुल अच्छे। और आशा करते हैं कि हमारी सारी सखियां हमारे सभी श्रोता अपना और अपनी सेहत का और अपने परिवार का खूब अच्छा ध्यान रख रहे होंगे, क्योंकि बदलता मौसम है इस वक्त कुछ और एक्स्ट्रा ध्यान रखने की जरूरत है।
0: और झमाझम बारिश हो रही है तो बारिश का हम सभी लुत्फ उठा रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: जिन जगहों पर अभी बारिश नहीं आई है वे बारिश का इंतजार कर रहे हैं
1: और उनके लिए भी ये शुभकामना है कि जल्दी से उनके शहर में भी ये जो ठंडक हम जो एहसास कर रहे हैं उन्हें भी ये एहसास हो।
0: और ये ठंडक का एहसास है ना दीपा, ये तो इस मंच पर आते से ही हमें होने लगता है। भले ही कितनी भी चिलचिलाती गर्मी हो या बहुत ठंड हो या बारिश हो, यहाँ आने के बाद में जो सुखद अनुभूति मिलती है ना उसका हम वर्णन नहीं कर सकते।
1: ये बात तो बिल्कुल 16 आने सही कही तुमने।
0: और जब सुखद अनुभूति कब मिलती है? जब हम अपने घर में पुराने फोटो के एल्बम लेकर बैठते हैं, कह रहे मैं पहले कैसे दिखती थी, कितनी सुंदर दिखती थी, मेरे बाल कितने लंबे थे, मैं कितनी सुंदर दिख रही थी, मेरे बच्चे कितने अच्छे दिख रहे थे, या फिर हमारा बचपन कितना खूबसूरत था। ये सब हम जब पुराने फोटो एल्बम देखते हैं ना, पुराने फोटो एल्बम देखना अपना एक अद्भुत अनुभव होता है।
1: बिल्कुल। और एक फिल्म से चल जाती है उस दिन को, हम फिर से लगता है जैसे
0: जी रहे हैं
1: और वो वक्त उस वक्त क्या हुआ था, कुछ बातें भी याद आ जाती हैं और सभी लोग उस बातों को फिर याद कर करके खूब खुश होते हैं और आनंद का जो
0: क्षण होता है
1: वो उसकी अनुभूति, उसका अनुभव ही कुछ अलग है सोनाली।
0: साथ ही कहानी पद्मश्री की, इसके अंतर्गत हम तकदीदा बेगम कांथा कढ़ाई वर्क में जिन्होंने काम किया है बहुत आगे बढ़ी है, तो उनके बारे में हम जानकारी देंगे।
1: और जो आजकल एक बात चली है कि बच्चों की शादी अपनी मर्जी से होना चाहिए या उसमें बड़ों की भी मर्जी शामिल होना चाहिए, सलाह उनकी शामिल होनी चाहिए या नहीं, ये इस बातों पर घर घर में बहुत सारी बातों पर विचार विमर्श

0: चलते रहते हैं, जहाँ पे शादी योग्य युवक या युवतियां हैं उनके घरों में। तो हम भी कुछ जानेंगे कि कैसा होना चाहिए, बड़ों की सहमति या बड़े दिखाएं या बच्चे ही अपनी मर्जी बता दें, क्या सही है क्या गलत है उनके लिए, इस बारे पे थोड़ी विचार और विमर्श करेंगे।
1: देखिए जो बदलता जमाना है ना, पुराने जमाने में थोड़ी छोटी उम्र में शादी हो जाती थी, तो उस वक्त माता पिता जो है वे उनके बारे में अच्छा ही सोचते थे। पर अब बदलते जमाने के नजरिए जो बच्चे हैं ना थोड़ी बड़ी उम्र में शादी करते हैं, 25, 26, 27, 28 के बाद में शादी करते हैं, तो उनकी राय जान लेना उतना ही जरूरी है, क्योंकि उन्हें एक साथ जिंदगी गुजारना होता है। तो इस विषय में हमारे श्रोताओं ने, हमारी सखियों ने बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्स लिखे हैं, तो उनके हम कमेंट शामिल करेंगे, क्योंकि ये श्रोताओं का ही सेगमेंट है। मुझे कुछ कहना है, बच्चों की सहमति से हो शादी, है ना?
0: बिल्कुल।
1: और साथ ही उपयोगी टिप्स अच्छी नींद के लिए, जो आजकल हम सभी को नसीब नहीं होती है। कुछ कुछ खुशकिस्मत होते हैं जिन्हें बस ऐसे बिस्तर पर लेट गए और नींद लग जाती है, पर कुछ कुछ लोगों को बहुत जद्दोजहद के बाद नींद आती है।
0: जी, तो इसके लिए भी बहुत जरूरी है कि भाई एक स्वस्थ नींद अगर मिलेगी तो स्वस्थ तन होगा, और उसके बाद आपका अगला दिन उसी तरह से स्वस्थ होगा, और साथ में तभी वो सकारात्मक हो सकेगा। तो आगे आने वाले दिनों के लिए या कल के लिए आज की रात सोना बहुत जरूरी है, वो भी एक गुड क्वालिटी स्लीप आपको मिलना चाहिए।
1: और आप क्या करना चाहिए?
0: गीत सुनना चाहिए,
1: तो सुनते हैं गीत।
2: शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

0: तो दीपा बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम कहानी पद्मश्री की, इसके अंतर्गत आज हम जानकारी देंगे तकदीरा बेगम के बारे में।
1: जी, बंगाल की रहने वाली हैं ये। और सोनाली, आप तो जानती हैं कि बंगाल राज्य अपनी पारंपरिक और उत्कृष्ट कांथा कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें नक्शी कांथा, लेप कांथा, सुजनी कांथा, बेटन कांथा, ऐसे अलग अलग प्रकार के बहुत सारी शैलियां हैं। ये कला हमारे देश की प्राचीन विरासत का एक अभिन्न अंग है और बंगाल की विशेष पहचान।
0: बिल्कुल सही कहा आपने दीपा। नक्शी कांथा में पुरानी साड़ियों और कपड़ों को एक के ऊपर एक रखकर रंगीन धागों से जटिल कढ़ाई की जाती है, और इस कला में रनिंग स्टिचिंग या कंथा स्टिच का उपयोग करके सुंदर नक्शा यानी कलात्मक पैटर्न बनाया जाता है, और इसका उपयोग अक्सर रजाई, बेडशीट, पर्दे और अन्य घरेलू सामानों के लिए किया जाता है। खास तौर पर इन्हें साड़ियों पर भी उतारा जाता है।
1: बिल्कुल, और तकदीरा बेगम जो है नक्शी कांथा कढ़ाई की माहिर कलाकार है। उनका जन्म 1953 में पश्चिम बंगाल के परगना जिले में का एक छोटा इलाका है, नाम है श्री कृष्णापुर, वहां हुआ था। उनकी माँ घर पर बंगाल की जो पारंपरिक ये जो कांथा कढ़ाई है वो किया करती थी। अपनी माँ को काम करता देख तकदीरा को इस कला के लिए, जैसे एक होता है ना कि घर में एक कोई बड़ा आपका कर रहा है तो आपका भी प्यार उस कला की तरफ हो जाता है, तो स्वाभाविक सा हो गया कि तकदीरा का भी जो आकर्षण है इस कांथा कढ़ाई की ओर गया।
0: यानी ये कितनी अच्छी बात है ना कि जब हम कोई अच्छा काम बच्चों के इर्द गिर्द करते हैं तो बच्चों को भी उसमें अपने आप रुचि उत्पन्न हो जाती
1: है। जी,
0: और तकदीरा बेगम नक्शी कांथा कढ़ाई की माहिर कलाकार है। तो उनका जन्म तो आपने बता ही दिया कि 1953 में हुआ था, और बचपन में तकदीरा अक्सर स्कूल के बाद अपनी माँ के साथ कंथा कढ़ाई करती, और जिसमें वे रंगीन धागों से पारंपरिक डिजाइन बनाती। 12 या 13 साल की उम्र तक कांथा कढ़ाई की रचनात्मक दुनिया में उन्होंने प्रवेश कर लिया। देखिए, 12-13 साल की उम्र कितनी छोटी उम्र होती है ना।
1: बिल्कुल, मतलब उस वक्त तो समझ ही नहीं आता है, लेकिन ये कढ़ाई किया करती थी। और तकदीरा बेगम के पिता मूल रूप से श्री कृष्णपुर के निवासी ही थे, लेकिन बाद में वो जय कृष्णपुर चले गए थे। उन्होंने औस ग्राम के गर्ल्स स्कूल में 10वीं तक की पढ़ाई की थी। सिलाई और कढ़ाई में उनकी रुचि बहुत थी। 5वीं कक्षा से ही उन्होंने ये काम शुरू कर दिया। अपनी माँ की कांथा कढ़ाई से प्रेरित होकर वे पारंपरिक शैक्षणिक विषयों से परे, यानी उनको शायद पढ़ाई में थोड़ा मन कम लगता होगा, अब जाकर के वो सीधे सुई धागे की ये जटिल कला की ओर उनका आकर्षण बढ़ने लगा।
0: पिछले 30 वर्षों से तकदीरा ने अपना जीवन कांथा कढ़ाई की कला को निपुणता प्रदान करने में समर्पित कर दिया है। बचपन के शौक के रूप में शुरू हुआ ये काम धीरे धीरे उनका जुनून और पेशा बन गया। स्कूल के दिनों में उन्होंने जो सिलाई कौशल हासिल किया था, उसी शिल्प ने उन्हें उनके आजीवन सफर की नींव रख दी। यानी कितनी अच्छी बात है कि जो काम उन्होंने शौकिया तौर पर शुरू किया, उस शौक ने ही उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से
1: जी
0: सम्मानित कर दिया गया उन्हें। जी,
1: और पिछले कई सालों से आप महिलाओं को अपनी सामाजिक

0: इंटरव्यूज हुए तो उसमें से एक साक्षात्कार में उन्होंने ये भी किया, ये भी बताया था कि मेरी माँ ने कभी सोचा ही नहीं था कि वो अपनी इस कारीगरी से, इससे बने जो भी उत्पाद थे उससे पैसे कमा पाएंगी। उस समय हमारे परिवार में इसकी इजाजत भी नहीं थी, ये वो इस तरह से बताती हैं, लेकिन वो कढ़ाई में माहिर थी और उन्होंने मुझे कई दुर्लभ और जटिल डिजाइन सिखाए। मैं इस कढ़ाई को एक बड़े मुकाम तक ले जाना चाहती थी, ये मेरा सपना हुआ करता था।
1: और उनका ये मानना था दीपा कि भले ही कई लड़कियां काम करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए उत्सुक भी रहती हैं, लेकिन उनके घर से, उनके पति उन्हें घर से बाहर निकलने ही नहीं देते। पर उनका ये कहना था कि उनके पति ने, तकदीरा बेगम के पति ने उन्हें भरपूर समर्थन किया और अपने दोस्तों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि वे अपनी पत्नियों को काम करने दें और उन्हें आत्मनिर्भरता बनने दें, आत्मनिर्भर होने दें।
0: बिल्कुल, अपनी लगन से तकदीरा बेगम देश की अनगिनत महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन गई हैं। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि दृढ़ संकल्प और कौशल से पारंपरिक कला न केवल जीवित रह सकती है बल्कि पीढ़ियों को सशक्त भी बना सकती है। ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने की उनकी 3 दशकों से अधिक की यात्रा चुनौतियों से तो बहुत भरी रही सोनाली, फिर भी इनके जो परिणाम है बहुत उल्लेखनीय निकले। इतनी सफलता उन्होंने हासिल की है और साथ में अपने सिर्फ खुद सफल नहीं हो रही हैं, खुद आत्मनिर्भर नहीं हुई, उन्होंने अपने साथ कई सारी महिलाओं को ये सफल राह दिखाई है।
1: यानी देखिए ना, उनकी एक कला के कारण कितनी सारी महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनी है, उन्हें उनकी आमदनी हो रही है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि कोई भी कला है जो खुशियां तो देती है, पर ये खुशी उन्होंने अपने खुद तक सीमित नहीं रखी है बल्कि उनके कारण कितने सारे घरों में रोशनी आ रही है।
0: बिल्कुल, और ये जो आर्ट है काथा कढ़ाई, ये भी संरक्षित है आज भी, और ये तो इसमें साड़ियों में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ये इस प्रकार की कढ़ाई।
1: तो श्रोताओं ने भी इस बारे में बहुत सारे कमेंट्स लिखे, हम वो बाद में पढ़ेंगे, पहले अभी क्या करें,
0: गीत सुनेंगे।
1: तो एक गाना सुनते हैं,
0: चलिए।

0: तुमने कह डाला फिर से तो फरमाना।
1: कुछ ऐसा ही होता है ना, जब हम पुरानी एल्बम या पुराना कोई अपनी कोई पुरानी तस्वीर हमारे हाथ लग जाती है घर सफाई के समय, तो लगता है कि वही फिर से वही बात कुछ फरमा दे, वही चीज हो जाए हमारा। हम कई बार ऐसे हमारा मजाक में बोलते हैं वैसा ही हो जाए और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे वापस से उतने छोटे हो जाएं, हाँ। जैसे उस वक्त थे जो हम तस्वीर में देख रहे होते हैं।
2: यानी उस वक्त मैंने थोड़ा कम लाड़ दुलार किया,
1: हाँ।
2: अब ऐसे होते तो मैं और प्यार करती। उस वक्त मैं इतनी उलझनों में थी, इतने कामों में व्यस्त थी कि मैं अपने बच्चों को अच्छी तरह से खिला नहीं पाई, अच्छी तरह से उनका बचपन नहीं देख पाई, तो फिर से वो छोटे हो जाए तो मैं फिर से उन्हें खिला लूं, है ना।
1: और एक दूसरा पक्ष भी हो सकता है कि उस दिन उसने बहुत ज्यादा बदमाशी की थी, तो उसे एक तो थप्पड़ उसे दे ही देना था, तो बाद में वो जिद करता ही नहीं।
2: वैसे दीपा, पुराने एल्बम हमारे जीवन की वो अनमोल धरोहर होते हैं ना, जिनमें केवल तस्वीरें नहीं बल्कि भावनाएं, रिश्ते और बीते समय की खुशबू संजोई रहती है।
1: बिल्कुल। और सोनाली, जब हम किसी पुराने एल्बम को हाथ में लेकर उनके पन्ने पलटते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे समय हमें पीछे ले के जा रहा है और हम अपने ही पुराने दिनों को दोबारा मिल रहे हैं।
2: वैसे दीपा, एल्बम का जो हर पन्ना होता है ना, उसकी एक अलग कहानी होती है। और कहीं बचपन की शरारतें दिखाई देती हैं, तो कहीं माता पिता का स्नेह भरा चेहरा दिखाई देता है, कहीं परिवार के साथ बिताए त्योहारों के पल, कहीं दोस्तों के साथ हंसी मजाक की यादें, तो कहीं स्कूल के पिकनिक के फोटोज होते हैं। तो जो फोटोज, ये अनगिनत यादें होती है ना,
1: और सारी
2: कुछ तस्वीरें तो ऐसी होती है जो हमारे चेहरे पर मुस्कान लेकर आ जाती है और कुछ आंखों को नम कर देती है।
1: ये बात तो बिल्कुल सही कही तुमने कि कभी कभी एकदम ऐसा लगता है हाय वो दिन कहाँ गए, वो दिन फिर से हमारे लौट आए। और पुराने समय की तस्वीरों में एक अलग ही अपनापन होता है। तस्वीरें कम खींचा करते थे उस वक्त, इसलिए हर फोटो खास होती है, और परिवार के सभी लोग एक जगह इकट्ठा होकर फोटो खिंचवाते थे। ये वो जमाना था, है ना, वो इंतजार, वो उत्साह, और फिर एल्बम में तस्वीरें सजाने की खुशी आज के हजारों मोबाइल फोटो से एक अलग ही अनुभव देती है। हमारे मोबाइल में भले ही ढेर सारे फोटो हो, हजारों में होते हैं
2: जी,
1: लेकिन जब हम एल्बम उठा करके बैठते हैं तो घर के भी जो सारे सदस्य होते हैं ना, कि वो कहते हैं अरे क्या देख रहे हो, हमें भी देखना है। और फिर उस पर वापस एक डिस्कशन, एक विचार विमर्श शुरू हो जाता है, और फिर वो बातें पता नहीं कहाँ तक चली जाती।
2: और उस वक्त अगर कोई घटना घटी होती तो उसे भी हम याद करके बहुत हंसते हैं।
1: बिल्कुल,
2: है ना,
1: बिल्कुल सही कहा
2: कि ऐसे हुआ था, ये हुआ था, है ना। एक हमारे सखी ने लिखा है, सच कहा, पहले के फोटो देखना बड़ा ही अच्छा लगता है। सच में पहले के फोटो और उनसे जुड़ी बातें जब याद आती है तो पल मानो उस समय में हमें वापस पहुंचा देते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमने पुराने फोटोज निकाले जिसमें हमारी बेटी बिल्कुल उनकी बेटी की तरह लगी। हमने तुरंत उसकी फोटो खींची और उसके साथ ही उसकी बेटी की भी अभी की फोटो डालकर बेटी को भेजा, तो इतनी खुश हो गई, सही में हम कितने सेम लग रहे थे, यानी कितनी सुंदर यादें, है ना।
1: और एक संदेश और कहता है सोनाली कि एल्बम हमें एहसास कराते हैं कि समय कभी ठहरता नहीं। जिन चेहरों पर कभी युवावस्था की चमक थी, आज उन पर अनुभव की रेखाएं हैं। कुछ लोग अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन तस्वीरों में उनकी मुस्कान आज भी उतनी ही ताजा है। एल्बम के हर पन्ने से रिश्तों की गर्माहट, घर की खुशबू और बीते दिनों की मीठी एहसास है, वो महसूस होते हैं। सच तो है कि पुराने फोटो के एल्बम केवल कागज पर छपी तस्वीरें नहीं बल्कि जीवन की सबसे अनमोल पूंजी है।
2: एक साथी कहते हैं कि सच में पुराने फोटोज देखकर तो दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। मुझे भी जिस दिन मन नहीं लगता उस दिन मैं भी अपने बेटे के पुराने एल्बम निकालकर देखती हूँ। क्योंकि मुझे शुरू से फोटोग्राफी का शौक रहा है, तो मेरे पास अपनी या अपने बेटे के हर क्षण की फोटो है। जब मोबाइल नहीं था तब मेरे पर्स में हमेशा एक कैमरा रहता था, जहां जो अच्छा लगता था मैं फोटो ले लेती थी। यहां तक कि स्कूल में भी, वहां भी बच्चों की फोटो लेती थी, जिसकी वजह से मैं अपने स्कूल में सेल्फी मैम के नाम से जानी जाती हूँ। कितनी सुंदर बात,
1: बहुत सुंदर। और एक संदेश कहता है कि एल्बम के देखने की अनुभूति बेहद खास और भावनात्मक होती है। उस समय में पीछे जाने जैसा होता है, पुरानी यादें, चेहरे और पल आंखों के सामने सजीव हो जाते हैं। खुशी केवल तस्वीरों को देखने तक सीमित नहीं, बल्कि ये बीते हुए सुनहरे पल के एहसास को फिर से जीने का एक प्यारा माध्यम है। एल्बम पलटने से अपनों के साथ बिताए गए खास लम्हे, बचपन, शादी, छुट्टियां, त्योहार, सब यादें ताजा हो जाती हैं।
2: एक साथी कहते हैं कि भाई मेरी तो 10th बोर्ड जो है ना फॉर्म में लगाने वाली पासपोर्ट साइज फोटो है उसे देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो तब बिल्कुल लड़की जैसा दिखता था, अभी मैं यहाँ पर अपलोड नहीं कर सकता वरना मैं आपको वो फोटो जरूर दिखाता।
1: जी कभी मौका लगेगा तो जरूर हम भी देखना चाहेंगे। और अब क्या करना चाहेंगे?
2: अब गाना सुनेंगे।
1: चलिए

0: रिमझिम रिमझिम सावन की बरसात हो रही है, यानी सावन तो नहीं आया है अभी, पर बरसात ऐसी है कि मानो सावन आ गया है,
1: एहसास तो वही करा रहा है।
0: और वो जो है ना सुखद अनुभूति है ना, वो एल्बम देखने जैसी ही है। एक हमारे साथी ने लिखा है कि पुराने एल्बम के पन्ने पलटते ही यादों का कारवा चल पड़ता है, बचपन, परिवार, दोस्त और जीवन के अनमोल पल फिर से आंखों के सामने ताजा हो जाते हैं। और हर तस्वीर की एक कहानी होती है, जब दुनिया में नहीं उनकी यादें संजोए रहते हैं, शादी ब्याह की शरारतें, नाच गाना चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं। सचमुच पुराने एल्बम को देखना बीते हुए खूबसूरत पलों को एक बार जीने जैसा सुखद अनुभव मिलता है। और अब वक्त हो चुका है ब्रेक का, तो लेते हैं एक ब्रेक।
1: चलिए।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है सखी सहेली और हमारे बहुत सारे साथियों ने कमेंट्स लिखे हैं। तो एक हमारी सखी ने लिखा है कि एल्बम देखने की अनुभूति बेहद खास और भावनात्मक होती है, उस समय में पीछे जाने जैसा है जहां पुरानी यादें चेहरे और पल आंखों के सामने सजीव हो जाते हैं। ये खुशी केवल तस्वीरों तक देखने तक सीमित नहीं है बल्कि बीते हुए सुनहरे पल के एहसास को फिर से जीने का एक प्यारा माध्यम है। एल्बम पलटने से अपनों के साथ बिताए गए खास लम्हों, बचपन, शादी, छुट्टियों और त्योहारों की यादें ताज़ा हो जाती है। ये चेहरे पर मुस्कान लाने के साथ साथ आंखों में खुशी के आंसू भी लाते हैं। मैं तो बेटे के बचपन का फोटो पोते को दिखाती हूँ और कभी कभी दोनों का फोटो लगाकर मोबाइल स्टेटस सोशल मीडिया पर लगाती हूँ। पोता फोटो को देखकर खूब खुश हो जाता है और पूछता है, दादी पापा भी मेरी तरह छोटा था। कितना मासूमियत भरा सवाल है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरह से जब हम अपने यादों तक वापस उस गलियारों में जब हम गुजरते हैं
0: जी,
1: तो मन प्रसन्न होता है, कहीं सकारात्मक एक धारा भी प्रवाह हो जाती है हमारे अंदर, एक खुशी की जो लहर अंदर दौड़ पड़ती है, तो सब तरफ हर तरफ हमें अच्छा अच्छा और खुश खुश जैसा माहौल लगने लगता है। और एक माहौल और चल रहा है आजकल कि भाई शादी ब्याह जो है इतना जो नाजुक मसला होने लग गया है, इस पर सहमति तो परिवार की होती ही थी, पहले तो हुआ करती थी, अब बच्चों का सहमत होना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है।
0: यानी पहले बताया जाता था कि सब अच्छा है और बच्चे जो होते थे उन्हें भी पूरा विश्वास होता था कि हमारे माता पिता कभी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे, वो हमारा अच्छा ही चाहेंगे और सब कुछ सोच के घर परिवार देख के पूरा उनके दादा नाना नानी सारे लोग बैठ के पूरा इन्हें पूरा परिवार ही कहते हैं कि कुनबा ही इकट्ठा हो जाया करता था और फिर इस तरह से शादियां तय होती थी। पर अब समाज जो है बदल रहा है, अब बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं, उनकी भी इच्छाओं का हमें ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें किस तरह से, यानी हर किसी की अपेक्षा अलग होती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा होने वाला पति ऐसा होना चाहिए जो मुझे समझे, मेरी भावनाओं की कद्र करे, मैंने जो पढ़ाई की है उसे मुझे आगे बढ़ने का मौका दे, उसे उसमें हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दे। वहीं पर लड़कों को भी अपेक्षाएं होती है कि जो लड़कियां हैं बराबरी से काम में हाथ बटाए और फिर खूब आगे बढ़ने में एक दूसरे का ये मिले,
1: मदद मिले
0: सहयोग मिले
1: कि हाँ एक की वजह से दूसरा आगे बढ़े और जो दूसरा है उसकी वजह से, मतलब पति पत्नी दोनों ही ये चाहते हैं कि हम एक दूसरे का सहयोग भी काम में भी करें, घर में भी करें, ये
0: घर में भी हाथ बटाए।
1: हाँ,
0: पुराने जमाने में ऐसा होता था कि लड़के घर में काम नहीं करते थे,
1: नहीं
0: ऐसा ही काम करते थे,
1: लेकिन अब ये है कि आप अपने जो कार्य क्षेत्र है, ऑफिस है या व्यापार है, जब घर वापस आते हैं तो दोनों मिलकर अब घर रसोई सब कुछ देखते हैं, अपना काम देखते हैं, यहाँ तक कि काम बांट भी दिया जाता है। और इसे कोई गलत या बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अगर वो शहर में नहीं है, अपने माता पिता से दूर है, तो किस तरह से अपने सब चीजों का संयोजन बनाएंगे, बैलेंस कैसे बनाएंगे अपने लाइफ में, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। इसी तरह से देखो बहुत सारे संदेश इस बात को लेकर आए हैं और बहुत अलग अलग विचार सामने आए हैं, तो ये पहला संदेश हम पढ़ रहे हैं। पुराने जमाने में माता पिता जो तय करें उनके साथ शादी हो जाया करती थी, उन दिनों लड़का लड़की एक दूसरे को देखे बिना छोटी उम्र में ही उनकी सगाई भी हो जाया करती थी। आज की तरह सगाई के बाद एक दूसरे से मुलाकातें भी नहीं हो सकती थी, उस वक्त साथ घूमने का तो सवाल ही नहीं होता था। आज लेकिन माहौल बहुत बदल गया है, लड़की के लिए 21 साल, लड़की के लिए 18 साल वैधानिक आयु होनी अनिवार्य हो चुकी है। माता पिता की मर्जी के बिना लड़का लड़की एक दूसरे की पसंद के अनुसार शादी कर सकते हैं। अब माता पिता का तो रोल सिर्फ आशीर्वाद देना ही रह गया है।
0: एक सखी ने लिखा है, विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि दो परिवारों और दो जीवनों का मिलन होता है। माता पिता का अनुभव भी अमूल्य होता है, लेकिन बच्चों की इच्छा, उनकी भावनाएं और उनकी सहमति भी महत्वपूर्ण है। माता पिता बच्चों का मार्गदर्शन करें, उनके लिए योग्य जीवन साथी खोजने में सहायता करें, लेकिन अंतिम निर्णय बच्चों की इच्छा का सम्मान करते हुए ले। समय बदल रहा है, बच्चों की सहमति से होने वाला विवाह न केवल रिश्तों को मजबूत बनाता है बल्कि परिवार में प्रेम, सम्मान और खुशियों को भी स्थायी बनाता है।
1: बिल्कुल। वहीं एक और संदेश ये कहता है कि विवाह जीवन का एक महत्वपूर्ण निर्णय है, इसलिए इसमें बच्चों की सहमति और इच्छा का सम्मान आवश्यक है। माता पिता का अनुभव और मार्गदर्शन अमूल्य होता है, लेकिन जिस व्यक्ति को जीवन भर उस रिश्ते को निभाना है उसकी राय सबसे अधिक मायने रखती है। आपसी समझ, विश्वास, सहमति पर आधारित विवाह अधिक सुखद और सफल होता है। जब परिवार और बच्चों के विचारों का सम्मान करते हुए निर्णय लिया जाता है तो रिश्तों में अपनापन, सम्मान और विश्वास भी बढ़ता है।
0: एक सखी ने लिखा है कि बच्चों की सहमति से शादी, आजकल शादी का रिवाज बदल गया है, बच्चे अपने ही पसंद की शादी करना पसंद करते हैं, माता पिता को बस घर परिवार जिसको पसंद किया है उसको देखना होता है, बस माता पिता की मोहर लग जाती है, अगर माता पिता खुद से बच्चों के लिए जीवन साथी का चयन करते हैं तब भी यही स्थिति होती है, जब तक बच्चे आपस में एक दूसरे को समझ ना ले तब तक बात आगे नहीं बढ़ती, और जब तक बच्चों की सहमति नहीं होती तब तक माता पिता को रुकना होता है। पहले के समय माता पिता खुद ही पसंद करते थे तब बच्चों की सहमति की जरूरत नहीं होती थी, पर आजकल इन बातों का ध्यान रखा जाता है।
1: एक संदेश कहता है कि आजकल जो माहौल हो रहा है और युवा पीढ़ी हाईली एजुकेटेड होने के बावजूद शादी ब्याह के पवित्र रिश्ते में कोई गलत कदम ना उठा ले, इसलिए जरूरी है कि शादी के लायक बच्चों की सहमति लेना बहुत जरूरी है, और सोने पे सुहागा वाली शादी का निर्णय होता है जब घर के बड़ों के माता पिता के तजुर्बों का भी सम्मान होता है, यानी कि सबकी सहमति सर्वश्रेष्ठ होती है।
0: और आप क्या करें,
1: अब हमारी सहमति तो ये है कि आप गीत सुनाएंगे तो हम बिल्कुल खुश भी हो जाएंगे।
0: चलिए सुनते हैं गीत।

0: बात चल रही है कि शादी हो सहमति से, यानी घर परिवार की तो सहमति हो ही, आजकल बच्चों का सहमत होना बहुत जरूरी है। एक्चुअली हमेशा से ही सबका सहमत होना बहुत जरूरी है, लेकिन अब जबकि एकल परिवार होने लगे हैं और बच्चे कई बार शादी के बाद तुरंत ही दूसरे शहर जहाँ पे कि वो काम कर रहे हैं वहां चले जाते हैं, ऐसे में अब उनके पास वो शादी ब्याह वाला अनुभव तो होता नहीं है, कैसे जीवन जिया जाना चाहिए वो अनुभव तो होता नहीं है। पहले घर में बड़े साथ में हुआ करते थे, तो कहीं पे पास में बातों में कहीं थोड़ी भी ऊंच नीच हो गई तो संभाल लिया करते थे, अब वो दोनों अकेले रहते हैं, ऐसे में अगर कोई एक गर्म मिजाज हो और एक कोई ठंडा हो तो बात कभी बन जाती है लेकिन कभी कभी बिगड़ भी जाती है।
1: इसलिए दोनों को शादी से पहले थोड़ी बातचीत करके एक दूसरे के स्वभाव को जान ले कि किस तरह से इन्हें कैसे पसंद है, उन्हें कैसे पसंद है, किस तरह से इन्हें जीवन साथी की जो अपेक्षाएं हैं वे फोन पर बात करके उन्हें पता चल जाता है कि लड़की क्या चाहती है कि कैसा हो उसका पति, और लड़का भी क्या चाहता है कि कैसा हो। तो ये अगर बातें अगर थोड़ी सी सुलझ जाए ना तो जिंदगी बहुत अच्छी सुंदर हो सकती है। एक हमारी सखी ने लिखा है कि आज के आधुनिक जमाने में युवाओं की आपसी सहमति को शादी का सबसे प्रमुख और अनिवार्य आधार माना जाता है। कानून और सामाजिक बदलाव के अनुसार जब दो वयस्क आपस में शादी करना चाहते हैं तो उनकी सहमति सर्वोपरि होती है। भारतीय कानून के अनुसार बालिग हो जाने पर युवाओं को अपना जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार है। यदि दोनों वयस्क अपनी मर्जी से विवाह करते हैं तो उनकी सहमति ही कानूनी रूप से मान्य है। हमारे समाज में विवाह दो व्यक्तियों के साथ साथ दो परिवारों का भी मिलन माना जाता है, इसलिए लोग कहते हैं कि बच्चों को शादी का फैसला अपनी सहमति से जरूर लेना चाहिए, क्योंकि माता पिता के अनुभव और आशीर्वाद से रिश्ता अधिक मजबूत और सुरक्षित बनता है। माता पिता उसे परिवार से भी देख पा रखकर इस तरह शादी का सहमति दे सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, पर दबाव नहीं बच्चों पर। असहमति वाले दबाव वाले शादियों का नतीजा अच्छा नहीं दिख रहा। माता पिता अपने बच्चों का अच्छा ही चाहते पर कभी कभी अपने इंसानी फितरत के चलते अपनी ईगो के चलते कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं और बच्चों पर डालते हैं, जिसका परिणाम किसी एक जो है नहीं दो परिवारों कई परिवारों को भुगतना पड़ सकता है। यानी इस मामले में बहुत सोच समझ कर हमें निर्णय लेना चाहिए।
0: जी अच्छा, एक और संदेश आया है सोनाली, ये कहती है कि मेरी एक सखी है, उनकी बेटी की अभी हाल ही में शादी हुई है और उस शादी में हम सब ने बहुत आनंद लिया था, सब ने बहुत भरपूर आशीर्वाद युगल जोड़े को दिया था, लेकिन अब ये शादी में कहीं कुछ दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि बेटी जो है वो डॉक्टर है और अब जहां वो ससुराल में गई है तो वहां ये उम्मीद लगाई जा रही है कि वो क्लिनिक छोड़कर घर का काम करे। घर शादी और इस रिश्ते को निभाने के लिए वो बच्ची वैसा कर भी रही है, लेकिन फिर भी समझदारी ज्यादा बड़ों में होनी चाहिए ऐसा हमारी सखी को लगता है। वो कहती है कि बच्चों पर भरोसा ही इस रिश्ते को आगे ले जाया जा सकता था। अब जब कारण सुन रहे हैं कि ससुराल वाले खुशी नहीं है, वो डॉक्टर है, घर में काम भी कर रही है, सब कुछ अपना जो करियर है उसको साइड में रखे हुए है, लेकिन मन में उन लोगों के फिर भी असंतोष रहता है, तो ऐसे में उन्हें ये लग रहा है कि थोड़ा सा हमें जान पड़ताल थोड़ी सी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए थी, थोड़ा सा और समझ लेना चाहिए था, उसके बाद ही इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए था।
1: ये तो बात ऐसी होती है ना दीपा जी कि ये सब बातें कहने की है, पर ऐसा होता है कि अभी हमने पढ़ाई लिखाई कर ली है और पढ़ाई लिखाई करने में हमने इतने वर्ष गवाए हैं, इतने सारे वर्ष हमने अपनी जिंदगी की उस पढ़ाई के लिए समर्पित किए हैं और उस पढ़ाई से ही हमारा घर चलने वाला है ना, पैसा मिलने वाला है, तो फिर क्यों ना करें नौकरी। नौकरी करना बहुत अच्छी बात है, और कभी कभी ऐसा होता है कि एक उम्र के बाद यानी 40-45 के बाद में अगर घर के मुखिया इस दुनिया को छोड़ के चले गए यानी जीवन साथी नहीं रहे, तो उस वक्त जो महिला होती है ना उसके ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति आ सकती है कि मेरे पास पढ़ाई है पर अनुभव नहीं है, क्योंकि बिना अनुभव के उस उम्र में कोई नौकरी नहीं देता है।
0: बिल्कुल, और आज के जमाने में जहां इतनी तेज भागती दौड़ती जिंदगी चल रही है और हर जगह कंपटीशन इतना है, दोनों का काम करना बहुत जरूरी आवश्यक हो गया है। आपकी छोटी मोटी खुशियां, आपकी छोटी मोटी इच्छाएं भी, हम महिलाएं जो होती हैं, सारी महिलाओं के बारे में बात हो रही है कि हम आत्मनिर्भर होते हैं अपने पढ़ाई अपने शिक्षा की वजह से, तो हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। जो चाहे वो एक लड़की ले सकती है,
1: अपनी इच्छा पूरी कर सकती है,
0: अपनी इच्छा पूरी कर सकती है, न सिर्फ अपनी वो परिवार की भी इच्छा पूरी कर लेती है, और वो खुशी वो आनंद सिर्फ उस बच्ची को या उस महिला को नहीं होता,
1: पूरे
0: उस
1: परिवार
0: को होता है।
1: तो इसमें क्या होता है, दोनों खुश रहते हैं कि वो बाहर गई काम के लिए तो पति ने भी थोड़ा सा घर के काम में हाथ बटाया, उन्होंने भी बाहर से गए अच्छे से पैसे कमा कर भी आ गए, पूरा घर खुशहाल रहेगा। बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी, थोड़ी सी एक दूसरे की तरफ समझेंगे हम, एक दूसरे से जुड़ेंगे तो ये रिश्ता और भी खूबसूरत होगा।
0: बिल्कुल।
1: और अब गाना सुन ले,
0: तो सफर और खूबसूरत हो जाएगा।
1: सुनते हैं।

0: आसमां तो झूम रहा है अभी, है ना?
1: आसमान भी झूम रहा है और गीत सुन के मन भी प्रसन्न हो रहा है।
0: मन प्रसन्न हो रहा है पर नींद तो नहीं आ रही दीपा।
1: अभी कैसे आ सकती है? अभी तो हमारी सखियां साथ में है भाई।
0: और पर नींद ऐसी है ना कि जब नहीं आना चाहिए तब आती है और जब आना चाहिए तब नहीं आती। बहुत बार ऐसा
1: होता तो है,
0: है ना? हाँ। पर नींद का ना सीधा सीधा संबंध हमारी मानसिक अवस्था पर भी होता है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि रात के समय सोशल मीडिया पे किसी से बहस हो गई कि या किसी से फोन पर बहस हो गई तो हमारी पूरी रात खराब हो जाती है।
1: उसके
0: तो
1: बारे में
0: सोचते रहते हैं कि यार ऐसा क्यों बोल दिया, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा, मैंने तो ये कभी नहीं चाहता हूँ, फिर ये क्यों बोल दिया, इस तरह से होता है बहुत बार।
1: इसीलिए सोनाली, एक मानसिक स्वास्थ्य और हमारे अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी और गहरी नींद बहुत आवश्यक है। और फिर अगर आप रात को चैन की नींद ना सोएंगे तो अगला दिन आपके जो है आपके काम में उसका असर दिखेगा, आप जो भोजन बना रही हैं उसमें भी असर दिखेगा, या फिर आप चिड़चिड़े होंगे या आप बिना किसी कारण के घर में नाराजगी आपकी दिखाई देगी।
0: और ऐसा है ना, जो चेहरा होता है ना वो हमारा हमारे स्वास्थ्य का दर्पण होता है कि हमारी नींद नहीं हुई तो हम सामने वाला बराबर पहचान लेगा कि आपकी आंखों में सूजन दिखाई दे रही है, आप ठीक से नींद नहीं ली है, आप हमेशा की तरह फ्रेश नहीं दिख रही है, आप थोड़ी चिड़चिड़ी नजर आ रही है, तो शायद आपकी नींद नहीं हुई है। और पूरा गुस्सा फिर वो बच्चों पर निकल सकता है, पतिदेव पर निकल सकता है, पतिदेव का गुस्सा पत्नियों पर निकल सकता है।
1: ऐसा अक्सर हो ही जाता है ना, जब बहुत काम में प्रेशर में होते हैं हम, काम का दबाव बहुत ज्यादा होता है, या कुछ ऐसा घर में कोई त्योहार या शादी ब्याह का माहौल भी आता है ना, बहुत सारे काम होते हैं घर में और हम बिना छोटी सी बात पे ही, बात छोटी सी होती है और एकदम से हम नाराज हो जाते हैं या बोल पड़ते हैं कि क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हो। वो इसलिए क्योंकि रात को, रोज रात को देर तक काम कर रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, इस तरह के कभी 2-3 दिन तक भी अगर इस तरह की रूटीन हो जाती है तो देखिए आपके व्यक्तित्व में बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव दिखने लग जाता है।
0: एक हमारे साथी ने लिखा है कि अच्छी नींद किसी दवा से नहीं बल्कि अच्छी दिनचर्या और शांत मन से आती है। ध्यान साधना, नियमित समय पर सोना, संतुलित भोजन, हल्का व्यायाम और तनाव कम रखने की आदतें नींद को गहरी और सुकून भरी बताती है। वही बहुत सारे साथियों ने कहा है कि स्क्रीन जो है, ये हमारा मोबाइल फोन है, इसको सोने से 1-2 घंटे पहले दूर रख दीजिए।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें से जो निकलने वाली ब्लू लाइट है वो हमारे दिमाग में मेलाटोनिन जो वो हार्मोन जो कि नींद लाने वाला होता है उसकी ये जिम्मेदारी होती है, तो इसका स्तर कम हो जाता है और उसी की वजह से नींद आने में दिक्कत होने लगती है और हमारा दिमाग एकदम अलर्ट रहता है, एकदम सतर्क हो जाता है। तब तक वो जो सोने की अवस्था आनी चाहिए वो पूरी अच्छे से आ नहीं पाती।
0: एक हमारे साथी ने लिखा है कि नींद पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि कभी नींद से जागकर सुबह मजाक में सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी से ये गाकर सुनाता हूँ, सारी सारी रात तेरी याद सताए, नींद ना आए मुझे चैन ना आए। और धर्म पत्नी तुरंत कहती है, अजी छोड़ी, आप तो घोड़े बेचकर सोए थे, कोई उठाकर ले जाता आपको मालूम नहीं पड़ता। दोनों इस बात पर हंस लेते हैं। ये कितनी अच्छी बात है कि दोनों इस बात पर हंसते हैं, क्योंकि नहीं तो क्या होता ना, एक उम्र के बाद में लोग हंसना, मुस्कुराना, खिलखिलाना ही भूल जाते हैं।
1: बिल्कुल, और अगर आपकी ये हंसी बनी रहे और नींद अच्छे से आए, ये भी जरूरी है कि उसके लिए आप अपने खान पान की आदतों का भी ध्यान रखें, जैसे कि कैफीन से बचना बहुत जरूरी है। दोपहर के बाद या शाम को, देर शाम को, कभी घर हम देर से आते हैं तो कहते हैं ना थोड़ी सी पहले चाय पी लेते हैं, वो चाय तो आप पी सकते हैं, कॉफी चाय जो भी आपको पसंद है वो पी सकते हैं, लेकिन उसका असर शरीर में कई घंटों तक रहता है। और बहुत जरूरी है कि हम हल्का डिनर खाएं रात के समय। रात का खाना बहुत भारी नहीं होना चाहिए, बहुत मसालेदार नहीं होना चाहिए, और उससे ज्यादा जरूरी सोने और खाने के बीच में कम से कम 2-3 घंटे का अंतर जरूर होना चाहिए।
0: एक साथी ने लिखा है, अच्छी नींद के लिए मेडिटेशन करो, रात को जल्दी और हल्का खाना खाओ और मोबाइल दूर रखो, कमरे में अंधेरा हो, शांति हो, ठंडक हो, बेड आरामदायक हो तो नींद बढ़िया आती है। और जब गर्मियों का मौसम है ना, जैसे बहुत चिलचिलाती गर्मी थी तब है ना, एक नहा ले सोने से पहले, नहा के ढीले ढाले सूती कपड़े पहने, और जब हम जिस चादर पे सोते हैं बिस्तर में, वो चादर एकदम सूती नर्म मुलायम चादर हो, ऐसे डार्क कलर के पर्दे हो, तो नींद जल्दी से आ जाती है।
1: और आपने जो करें ना कि चादर नरम मुलायम हो, इसी तरह से आपका बिस्तर भी जो गादी होती है वो और तकिया आरामदायक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें कहीं पे अगर रुई की है तो वो कहीं कहीं उसकी गठाने पड़ जाती हैं, उस तरह की नहीं होना चाहिए। वो बिल्कुल इस तरह हो कि शरीर को पूरी तरह से
0: आराम
1: सपोर्ट दे और आराम दे।
0: और अब गाना सुन ले,
1: चलिए।

0: हमारी एक सखी ये कहती है कि एक और जरूरी बात है कि सोने का एक समय बना लेना चाहिए। तो मैं भी समय पर अपने सारे काम निपटा लेती हूँ और बिस्तर पर आ जाती हूँ, उसके बाद कोई टीवी नहीं, कोई फोन नहीं, शांत होकर के आंखें बंद कर लेती हूँ। वो ये सलाह दे रही है कि आप भी इस नियम को 21 दिन करके देखिए और फिर देखिए कितनी अच्छी बढ़िया नींद आपको भी आएगी।
1: तो श्रोताओं के आज इतने सारे हमने सुंदर सुंदर कमेंट्स पढ़े, सारे श्रोताओं को दिल से धन्यवाद। आज सखियों के साथ, श्रोताओं के साथ बहुत आनंद आया और अब इजाजत लेने का वक्त आ चुका है। तो आप सभी को सोनाली पाठक
0: और दीपा माहेश्वरी का
1: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आप सुन रहे हैं
1: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। 4 बजे है, आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
2: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज अपने आवासीय कार्यालय में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत स्वयं एन्यूमरेशन प्रपत्र भरा। इस अवसर पर विधायक कल्पना सोरेन ने भी अपना प्रपत्र जमा किया। मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी पात्र मतदाताओं से समय पर इस प्रक्रिया को पूरा करने और लोकतंत्र को मजबूत बनाने की अपील की है। जमशेदपुर शहर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं, हिमांशु सिंह हत्याकांड और अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ भाजपा समेत एनडीए दलों ने कल जमशेदपुर बंद का आह्वान किया है। बंद की पूर्व संध्या पर आज पूरे शहर में मशाल जुलूस निकाला जाएगा। भाजपा प्रवक्ता अभय सिंह और विधायक पूर्णिमा साहू ने जनता से बंद का समर्थन करने की अपील की है। सारंडा जंगल में नक्सलियों की धमक खत्म होने के बाद झारखंड पुलिस ने वहां तैनात जवानों के रोटेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आईजी अभियान नरेंद्र सिंह ने बताया कि मॉनसून के दौरान जवानों को बरसाती बीमारियों और ब्रेन मलेरिया से बचाने के लिए ये कदम उठाया गया है। पलामू में आज से प्रखंड स्तरीय ड्राइविंग लाइसेंस कैंप की शुरुआत की गई है। पहले दिन लेस्लीगंज पंचायत सचिवालय में आयोजित कैंप का उद्घाटन उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने किया। उपायुक्त ने मौके पर 10 लाभुकों के बीच ऑन स्पॉट लर्निंग लाइसेंस का वितरण किया। राज्य में 10 जुलाई तक अच्छी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार कल बंगाल खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले 10 दिनों तक अच्छी वर्षा होगी, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। गुमला में जिला स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। संत इग्नेशियस उच्च विद्यालय के जुबली स्टेडियम में आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि उप विकास आयुक्त अनिमेश रंजन ने किया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: गाना सुनना चाहते हैं आप?
4: इसमें सर मेरे खास एक परम मित्र परम दोस्त है पन्नालाल सेन जी, वहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ सर अपना फरमाइश अपने भाई पन्नालाल सेन तक।
3: कहाँ रहते हैं पन्नालाल जी?
4: बाग बहरा भदरसी रहता है सर, छत्तीसगढ़ के अंदर घर आता है, अपने गंडई से कम 200 किलोमीटर आगे है सर उसका घर, और हमारा परम मित्र है सर वो।
3: अच्छा, इनका भी ये गाना पसंदीदा है?
4: बिल्कुल सर, उसी के अनुरूप तो मैं फरमाइश कर रहा हूँ सर आज।
3: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। पवन कुमार जी, ये रहा आपकी पसंद का भरोसा फिल्म का गीत।
5: Thank you.

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ, मैं राजस्थान जोधपुर से महबूब खान बोल रहा हूँ।
0: बोलिए महबूब खान साहब, कैसे हैं?
1: आज आपकी दुआ है कि सर, जयंत पासवेकर से बोल रहे हो आप?
0: जी जी जी,
1: आपकी आवाज़ सुनता हूँ। आप सब तो बहुत पुराना सुनता हूँ, मैं तो 50 साल से रेडियो स्टेशन सुन रहा हूँ।
0: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए कौन कौन से प्रोग्राम सुनते रहे हैं पिछले 50 सालों में?
1: हाँ, मैं सुनता हूँ ज्यादा, और आपकी फरमाइश, आलो फरमाइश।
0: जी जी,
1: और काफी प्रोग्राम सुनता रहता हूँ।
0: और आपके पसंद के गाने कौन से होते हैं? पुराने गाने ज्यादा पसंद करते हैं आप?
1: पुराने गाने का शौकीन हूँ सर, मैं बहुत पुराने गाने की शौकीन हूँ सर। मैं मेरे दोस्तों के नाम ले सकता हूँ?
0: हाँ बिल्कुल,
1: ताज मोहम्मद जी, बरकत खां और अकबर खां, और दिनेश भाई, कृष्ण राम जी, दारू भाई मेघवाल, हमारे दोस्त रेडियो श्रोता है, नियमित श्रोता है ये।
0: जी जी जी जी, तो महबूब भाई, इन सारे दोस्तों को भी वही गाना पसंद है जो आप आज बताने वाले हैं?
1: हाँ जी है, हमारे बहुत दिल के करीब है ये गाना।
0: कौन सा गाना?
1: ये तुम्ही मेरी मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो,
0: खानदान फिल्म का। अच्छा जी
1: जी सर, नूतन सुनिधि फरमा है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए महबूब खान साहब। ये रहा आपके और आपके दोस्तों की पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ नमस्ते बंधुवर।
0: नमस्ते नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं गुलम मंडी छत्रपति संभाजीनगर से जगन्नाथ बसे बंधु बोल रहा हूँ। साहेब जी
0: बोलिए, बंधु साहब कैसे हैं?
1: बस पात्रीकर जी, बस देखो हम यहाँ है और आप मुंबई के स्थित जगहों पर है
0: जी।
1: हम गुलम मंडी से बात कर रहे हैं, आप मुंबई से बात कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है बहुत दिनों के बाद आपके ऐसे वार्तालाप हो रहा है।
0: बस ये जी एक बात बताइए, आपके संभाजीनगर में अभी मौसम कैसा है? बारिश वारिश हो रही कि नहीं?
1: बहुत सुहाना है और वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका है।
0: क्या बात है,
1: कुछ गर्मी से राहत महसूस हो रही है। मौसम ठंडा ठंडा है, हरियाला सावन छाया है, झाड़ तो ऐसे हल रहे कि मानो कि एसी की और पंखे की आवश्यकता ही नहीं है
0: जी। बिल्कुल, तो मुझे लगता है आज का आपका जो फरमाइशी गाना होगा वो भी ऐसा ही होगा।
1: अरे साहब मौसम की बात ऐसा है, मैं बता रहा हूँ मौसम के हिसाब से है। ऐसा गीत मैं सुनना चाह रहा हूँ 1943 में एक फिल्म बनी तानसेन, इसमें स्वयं कुंदन लाल सहगल साहब और खुर्शीद ये कलाकार भी थे और गायक भी
0: सहगल साहब।
1: अब तो बहुत कठिन है ऐसा कार्यक्रम होना, तो साहब फिल्म इतनी चली थी और इसके अंदर के गीत है खुर्शीद जी ने गाया है और के एल सहगल साहब ने गाया है और दृश्य इतना सुंदर है बंधु जी, मैं क्या बताऊं। ये फिल्म जितने बार भी देखे होंगे आपने या ना देखे होंगे तो देखना जरूर
0: जी।
1: क्या सुंदर अभिनय है कुंदन लाल सहगल साहब का और खुर्शीद का, स्वयं अभिनेत्री
0: जरूर
1: बोल है। घटा घन घोर घोर मोर मचाए शोर
0: मोरे सज्जन आ
1: जाना, क्या गीत है जितने बार सुनो ऐसा लगता आग बंद करो और बैठ जाओ तो सब नयन में दृश्य हम बैठ के निसर्ग की सृष्टि में देख रहे हैं सुन रहे हैं। तो ये गीत सुनना हम पसंद करेंगे साहेब जी, और इसके जो है संगीतकार खेमचंद प्रकाश और गीतकार दीनानाथ मधुक।
0: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सुनवा रहे हैं तानसेन फिल्म से ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार जयंत जी।
0: नमस्कार
1: जी, आप ठीक हो?
0: बिल्कुल, हम ठीक हैं, आप कैसे हैं?
1: बस मैं भी आपकी दुआ से ठीक हूँ और यही ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि विविध भारती की टीम जहाँ रहे खुश रहे सलामत रहे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बताइए, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: और हमारे लिए ऐसे ही प्रोग्राम सजा कर लाते रहिए जैसे आप सजा कर लाते हो।
0: जी जी जी जी, आपका नाम तो बताइए।
1: जी, मैं श्रीनगर से बात कर रहा हूँ, साहिल।
0: और साहिल कैसे हैं?
1: बस बढ़िया हूँ सर। श्रीनगर का मौसम तो बहुत ही अच्छा है, आजकल टूरिस्टों का भी रश लगा हुआ है और अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो चुकी है।
0: जी जी जी, और बताइए, विविध भारती से कब से है आपका जुड़ाव?
1: विविध भारती से जुड़ाव है 2005 से सर।
0: अच्छा जी, 21 साल हो गए।
1: जी बिल्कुल।
0: तो उससे पहले क्या सुनते थे?
1: जब से होश संभाला है सर, विविध भारती सुना है तब से।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, सबसे ज्यादा आप क्या सुनते हैं, सिर्फ फिल्म के गाने या इसके अलावा भी कुछ?
1: मैं सबसे ज्यादा प्रोग्राम सुनता हूँ जो 4 बजे आता है पिटारा।
0: ओके।
1: उसमें हर दिन एक नया प्रोग्राम होता है सर। कभी सेलुलॉइड के सितारे, कभी डॉक्टर होता है, कभी कभार आप किसी सेलिब्रिटीज को लाते हो तो उनकी जो जिंदगी में उन्होंने किया होता है तो उनके बारे में हमें पता चलता है सर।
0: जी जी, और फिर हफ्ते में एक दिन हेलो फरमाइश भी आता है जिसके लिए आपने कॉल किया है। बताइए क्या सुनना चाहते हैं?
1: बिल्कुल, और आपने एक प्रोग्राम फिर से चालू किया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मंच चाहे गीत।
0: तो आपने खत भेजे कि नहीं मंच चाहे गीत के लिए?
1: जी सर, मैंने खत भेजा है सर।
0: चलिए बताइए, आज के लिए कौन सा गीत आपने सेलेक्ट किया?
1: फिल्म का नाम है डोली, आशा जी की आवाज में। आज मैं देखूं जिधर जिधर, ना जाने क्यों उधर उधर, मुझे दो दो चार नजर आए मेहताब दर मेहताब।
0: बढ़िया गाना है, आपको सुनवा रहे हैं डोली फिल्म का गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार
1: जी, मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: बोलिए राकेश जी।
1: मेरी बात में कॉल लग गया, मेरा बहुत बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं आपके सभी प्रोग्राम को सुनता हूँ और आप जितने भी मेरी बात के प्रोग्राम आते हैं हेलो फरमाइश तो सुनते हैं और मन चाहे गीत भी आपने शुरू किया वो भी अच्छा लगता है। सभी प्रोग्राम जो है हम मेरी बात के सुनते रहते हैं।
0: बहुत अच्छा लगा जान करके। और राकेश जी ये बताइए शिमला में क्या करते हैं आप?
1: शिमला में तो अभी हम तो घर पे रहते हैं और सेब की जो है बागवानी वो अच्छा, करते हैं। और अभी हमारे जो सेब के जो बाग है छोटे छोटे हैं, छोटे तो क्या है अभी तो सैंपल आ गए हैं, छोटे छोटे फूल आना शुरू हो गए हैं सेब के। और अब जो है जुलाई तक जो है हमारे सेब जो है पूरे भारत में तोड़ने के लिए आ जाएंगे।
0: अच्छा अच्छा, साल में एक बार आते हैं पेड़ों को?
1: साल में एक बार आते हैं। और कहना चाहता हूँ कि जो आप तक जो सेब मिलते हैं और स्टोरेज की सेब जो है मिल जाते हैं तो तब जाके ये पूरे भारत में पहुँच जाते हैं। कई सेब जो होते हैं जो स्टोरेज की हो जाते हैं।
0: अच्छा अच्छा, आपके बाग के सेब जो है वो कहाँ कहाँ तक जाते हैं?
1: हमारे सेब जो है हमारे स्थानीय मंडी में भी जाते हैं, अगर स्थानीय मंडी में ज्यादा होते तो फिर विदेश भी भेज देते हैं और बम्बई में भी इसकी जो है डिमांड ज्यादा रहती है, महाराष्ट्र और बम्बई में।
0: अच्छा अच्छा, तो हम जो अब सेब खा रहे हैं उसमें हो सकता है कोई एक सेब आपके बाग से भी आया हुआ होगा?
1: बिल्कुल, क्योंकि सेब तो पहचान कैसी होती है, क्योंकि सेब तो कश्मीर से भी आते हैं और हिमाचल से जाते हैं, लेकिन ये है कि कश्मीर से लेट आते हैं, हमारे हिमाचल के जो सेब होते हैं वो जल्दी आ जाते हैं।
0: जल्दी आ जाते हैं।
1: मैं कहना चाहता हूँ कि शिमला जो है एक पर्यटक केंद्र भी है और हमारा कोटखाई क्षेत्र भी बहुत अच्छा है। और मैं कहना चाहता हूँ मैं छोटे से एक गांव में रहता हूँ, मेरे गांव का नाम है गुंडा और तहसील कोटखाई और बहुत अच्छा मतलब क्षेत्र है, मैं 400 लोग हमारे गांव में रहते हैं।
0: अच्छा जी, बताइए आज के प्रोग्राम के लिए आपने कौन सा गीत चुना है?
1: आज मुझे मोहब्बत मूवी का गाना सुना है और आई ना बता कैसे ये गाना सुनना है।
0: राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए। और आपको सुनवा रहे हैं मोहब्बत फिल्म का आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो, फरमाइश।
1: जी नमस्ते सर।
0: नमस्ते
1: जी सर, मैं सारी कराची से बात कर रही हूँ, बिजौरा से।
0: बिजौरा, ये गांव कहाँ पर है आपका?
1: सर सागर के पास में पड़ता है, सागर मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
0: और सागर मध्य प्रदेश में सारिका राजपूत क्या करती हैं?
1: सर अभी तो कुछ नहीं करती, बस हाउस वाइफ हूँ, बच्चों को संभालती हूँ।
0: बहुत बड़ा काम है ये भी, और इसके साथ साथ घर का सारा कामकाज करते हुए आप रेडियो सुनती है ना?
1: जी सर, विविध भारती।
2: श्रोता भी सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम FM 102.1 MHz पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए पेश है हमारा NCERT का आज का ये कार्यक्रम।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं विमलेश उमंग कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं।
0: और मैं अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, मित्रता एवं रिश्तेदारी परस्पर सम्मान पर टिकी होती है।
0: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवनी प्रियांशी रियांशी ओजस अनाया गुरदीप और बेबी किरत अवाना ने लिखा है,
0: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। कार्यक्रम उमंग के तहत 3 जून 2026 को प्रस्तुत गोबी शीत मरुस्थल की भौगोलिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक जानकारी हमारे लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक रही। साथ ही प्रेरणादायी कहानी दोस्त की पहचान ने सच्ची मित्रता के गुणों को समझने की महत्वपूर्ण सीख हमें दी। ऐसे रोचक शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कार्यक्रमों की भविष्य में भी आपसे अपेक्षा है। आपके उत्कृष्ट प्रयास के लिए हृदय से धन्यवाद।
2: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी लिखते हैं,
0: आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। समावेशी शिक्षा पर प्रोफेसर भारती जी द्वारा दी गई ज्ञानवर्धक जानकारी महत्वपूर्ण थी। साथ ही गुजरे सप्ताह शीत मरुस्थल पर बेहद शानदार जानकारी दी गई। ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी को हमारे बच्चों ने छुट्टियों में बड़े ध्यान और लगन से सुना और वे इस पर अमल भी कर रहे हैं, इसलिए हम उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम का हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं।
2: हम भी आपका हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं संदेश भेजने के लिए।
0: अगला संदेश हमें मिला है नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा ऋषभ कनक और भावना वर्मा जी का।
2: ग्राम बंगला माटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे।
0: आप सभी श्रोताओं को हमारी ओर से आभार खूबसूरत संदेशों को भेजने के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी बहुमूल्य खनिज सोने के बारे में
2: और अब चलते हैं आगे और चर्चा करते हैं एक और खनिज के बारे में। तो अजीत जी, जरा उस खनिज का नाम तो बताइए।
0: जी विमलेश जी, वो तो बताऊंगा लेकिन इस बार कुछ हिंट के साथ।
2: तो दीजिए हिंट।
0: हिंट है, ये खनिज सोने से भी अधिक मूल्यवान माना जाता है। इसकी चमक अत्यंत आकर्षक है
2: जी।
0: इसे तराशा जाता है और हाँ, ये कांच काटने के काम भी आता है।
2: जी अजीत जी, मैं समझ गई, ये कहीं हीरा तो नहीं?
0: बिल्कुल सही जवाब। जी हाँ श्रोताओ, ये हीरा है। ये खनिज पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी प्राकृतिक पदार्थ से अधिक कठोर है। हीरे के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि कितने लोग ये जानते हैं कि ये बनता कैसे है। तो आइए देते हैं इस रोचक चर्चा को विस्तार।
2: श्रोताओ, हीरे का निर्माण होता है पृथ्वी की गहराइयों में। अगर आप पूछें कि कितनी गहराइयों में, तो हम आपको बता दें कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर नीचे पृथ्वी की परत मेंटल में बनता है।
0: आपको हम ये भी बता दें कि कोयला और हीरा दोनों ही मुख्य रूप से कार्बन से बने होते हैं
2: जी।
0: लेकिन हीरा बनने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है।
2: श्रोताओ, जैसा कि अभी हमने सुना था कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर से भी अधिक गहराई में बनता है, आइए जानते हैं क्या होता है उन गहराइयों में।
0: श्रोताओ, पृथ्वी की गहराइयों में लगभग तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है और वहाँ का दबाव वायुमंडलीय दबाव से हजारों गुना अधिक होता है।
2: इन अत्यधिक दबाव वाली परिस्थितियों में कार्बन के परमाणु एक विशेष क्रिस्टलीय संरचना में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण हीरा बनता है। इस प्रक्रिया में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। लेकिन अजीत जी, श्रोताओं की ओर से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अभी हमने जाना कि हीरे पृथ्वी की सतह से 150 से भी अधिक गहराई में बनते हैं। इतनी गहराई तक उत्खनन तो असंभव है, तो फिर हीरे तक हम कैसे पहुँचे?
0: सचमुच ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है विमलेश जी। यदि हीरे इतनी गहराई में ही बने रहते तो हम उन्हें कभी देख ही नहीं पाते। होता ये है कि ज्वालामुखीय विस्फोटों के कारण मैग्मा यानी धरती के अंदर की पिघली चट्टानें तीव्र गति से ऊपर उठती हैं और वे साथ साथ हीरों को भी पृथ्वी की सतह के बहुत करीब ले आती हैं
2: और फिर हम उन्हें उत्खनन द्वारा निकाल लेते हैं। श्रोताओ, वैज्ञानिक दृष्टि से हीरा शुद्ध कार्बन है। आपको बता दें कि हीरा और आपके घर में पाई जाने वाली पेंसिल की नोक ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन से बने हैं। अंतर केवल परमाणुओं की व्यवस्था का है।
0: पता है श्रोताओ, हीरे को यदि अत्यधिक ताप पर ऑक्सीजन में जलाया जाए तो अंत में कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वो बदल सकता है। श्रोताओ, एक बात और आपको बता दें, आजकल आभूषणों और उद्योग में इस्तेमाल होने वाले हीरे प्रयोगशालाओं में ही बनाए जाते हैं।
2: लेकिन एक खास बात यह है कि कृत्रिम रूप में हीरों को बनाने के लिए छोटा प्राकृतिक हीरा इस्तेमाल किया जाता है, जिसे डायमंड सीड कहा जाता है। इस सीड के द्वारा प्राकृतिक प्रक्रिया की नकल करके हीरा बनाया जाता है। एक बात जरूर है कि प्राकृतिक रूप से हीरा बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, लेकिन कृत्रिम रूप में इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है।
0: लेकिन इसे बनाने की विधा या फॉर्मूला हमें प्रकृति

0: धरती से ही मिलता है। तो हम याद रख सकते हैं कि पृथ्वी की गहराइयों में अत्यधिक ताप और दबाव के कारण जो कार्बन के क्रिस्टल बनते हैं उन्हें हम हीरा कहते हैं।
1: तो श्रोताओ, आप कह सकते हैं कि आपके हाथ में चमकता हुआ हीरा वास्तव में पृथ्वी की गहराइयों में लाखों करोड़ों वर्ष पहले बना हुआ एक अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार है।
0: जी, तो श्रोताओ ये थी जानकारी हीरे की। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से प्रश्न है, डायमंड सीड किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: डायमंड सीड किसे कहते हैं?
0: आप हमारे प्रश्नों के उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला शैक्षिक कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है जिसके द्वारा पशु पक्षियों के प्रति दया और प्रेम भाव रखने का संदेश दिया गया है।
2: चलो मित्र सिद्धार्थ, उद्यान की ओर चलते हैं, सरोवर के पास। कैसी शांति है, पक्षी नीड़ों की ओर लौट रहे हैं। वहां देखो उस पेड़ पर कैसे वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है, अति सुंदर। और तनिक उधर देखो उद्यान के बाहर कैसे एक बछड़ा अपनी माँ की ओर दौड़ा चला जा रहा है और गाय अपने बछड़े को लाड़ कर रही है।
3: साथियों, ये वार्तालाप हो रहा था युवराज सिद्धार्थ और उनके मित्र वसु के बीच। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था जो कपिलवस्तु नगर का एक ग्राम उद्यान था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे जो शाक्य गणराज के राजा थे जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। युवराज सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। प्रारंभ में उनका जीवन राजसी सुख सुविधाओं से भरपूर था। आइए एक बार फिर से चलते हैं उस उद्यान की ओर जहां दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे हैं।
2: युवराज, तनिक ऊपर देखो कितने सुंदर पक्षी हैं।
4: ये राजहंस हैं। ऐसा लगता है मानो हवा में तैर रहे हैं और इतनी ही सुंदरता से वे पानी में भी तैर सकते हैं।
2: ओह, देखो एक राजहंस नीचे की ओर गिर रहा है। हाँ, लगता है उसे तीर लगा है।
4: प्यारे पक्षी, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। मैं हूं ना, न जाने किस निर्दयी ने इसे घायल कर दिया, भला इसका क्या दोष है?
5: दोष ये है कि ये सुंदर है, प्यारा है, सबको पसंद आता है।
4: क्या सुंदर होना और सबका प्यारा होना कोई दोष है? प्यारे हंस, मैं तुम्हारा ये तीर निकाल देता हूं, फिक्र मत करो। ये निकाल दिया, अब तुम मेरी गोद में थोड़ी देर विश्राम कर लो। मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है इन निर्दोष पक्षियों को मार ही नहीं सकता। तुम जरा दौड़कर राज वैद्य से इसके लिए कोई औषधि तो ले आओ।
2: हाँ मित्र, अभी जाता हूँ।
3: युवराज सिद्धार्थ ने हंस को विश्राम करने के लिए पास के ही एक कुंज में लिटा दिया और वसु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में उनके चचेरे भाई देवदत्त आ पहुंचे। वे इधर उधर देख रहे थे मानो कुछ खोज रहे हों।
6: कुमार सिद्धार्थ, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा था, वो इधर ही कहीं आया है। तीर धनुष पर मेरा लक्ष्य अब भली भांति सद गया है। ये बात मैं कल गुरुजी को बताऊंगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे।

0: तुम गुरुजी के सामने मेरी गवाही दोगे ना?
1: अवश्य दूंगा देवदत्त, और वो भी प्रमाण के साथ, क्योंकि इसका प्रमाण वो हंस है जिसे तुमने मारा है।
2: तो हंस तुम्हारे पास है, लाओ उसे मुझे दे दो।
1: क्यों दे दो?
2: क्यों दे दो? ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है भाई। इसलिए दे दो क्योंकि मैंने उसे मारा है।
1: लेकिन मैंने इसे बचाया है।
2: तुम राजकुमार हो इसलिए मुझे धमकी देना चाहते हो? मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। इसका निर्णय तो अब राज दरबार में ही होगा।
3: तो साथियों, दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था।
4: महाराज की जय हो,
5: महाराज की जय हो,
6: महाराज की जय हो।
3: प्रतिहारी ने सभी प्रकरणों की जानकारी दी और बताया कि आज कुमार देवदत्त भी एक प्रकरण न्याय के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ भी उपस्थित थे।
7: कुमार देवदत्त को प्रस्तुत किया जाए।
0: महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, मेरा कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है जिसे मैंने मारा था। वो मुझे मेरा हंस नहीं दे रहे, मुझे न्याय चाहिए।
7: राजकुमार सिद्धार्थ, क्या ये वही हंस है जो आपकी गोद में है?
1: महाराज को प्रणाम करता हूँ। जी महाराज, ये वही हंस है। मेरा कहना है कि कुमार देवदत्त ने इस हंस को मारा है, लेकिन मैंने इसे बचाया है। अतएव मैं ये हंस इन्हें नहीं दे सकता।
7: लेकिन सिद्धार्थ, देवदत्त ने इस हंस का आखेट किया है। नियम के अनुसार आखेट वीर का अधिकार है। वीर आखेट को छोड़ नहीं सकता।
1: जी महाराज, लेकिन नियम तो ये भी कहता है कि वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। हमारी शाक्य राजवंश की परंपरा और शास्त्रों का नियम तो ये भी कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
0: पर महाराज, मैंने पहले इस हंस को मारा है, इसलिए ये मेरा है।
1: जी, पहले मारा था, तभी तो वो मेरी शरण में आया है। बिना मारे वो मेरी शरण में कैसे आता?
7: महामंत्री, समस्या जटिल हो गई है। क्या आप कोई मार्ग सुझा सकते हैं?
8: जी महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूँ। अब तो निर्णय ये हंस ही करेगा।
7: निर्णय ये हंस ही करेगा? भला वो कैसे आज्ञा है?
8: महाराज, मेरा आग्रह है कि हंस को यहाँ इस आसन पर बैठाया जाए।
3: हंस को आसन पर बैठा दिया गया। हंस भयभीत था, लेकिन सिद्धार्थ उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा स्तंभित थी, सभी फुसफुसा रहे थे।
9: पता नहीं ये हंस कैसे बताएगा?
10: घड़ी पे बैठ कर सिद्धार्थ को मिलना जिसके पास जा रहा
9: है।
8: कुमार देवदत्त, आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। आसन के पास आइए और हंस को अपने पास बुलाइए।
0: ओ प्रिय हंस, मेरे पास आओ, आ जाओ, आओ मेरे पास, आ जाओ।
3: देवदत्त जितनी बार हंस को बुलाते, वो उतनी ही बार भय के मारे आसन से चिपक जाता। देवदत्त ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी।
8: अब मैं राजकुमार सिद्धार्थ को सामने बुलाना चाहूंगा और कहूंगा कि वे भी हंस को अपने पास बुलाएं।
1: प्यारे राजहंस, मेरे प्रिय मित्र, डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पास आ जाओ, अपने मित्र के पास आ जाओ, आ जाओ।

0: घबराओ मत।
1: फिर क्या था, पलक भी नहीं झपकी थी। हंस ने अपने पंख फैलाए और उड़ता हुआ सिद्धार्थ की गोद में ऐसे आ चिपका जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है।
2: स्वयं इस पक्षी ने अपना निर्णय बता दिया है। हमने सुना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आज साक्षात देख भी लिया। मैं हर्ष के साथ घोषित करता हूँ कि ये हंस युवराज सिद्धार्थ का ही है।
3: महाराज की जय हो।
4: महाराज की जय हो।
5: महाराज की जय हो।
6: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम न्याय। साथियों, इस कार्यक्रम में आपने दो शब्द सुने। पहला शब्द था नीड और दूसरा शब्द था आखेट। तो इसका अर्थ आपको बता देते हैं। नीड शब्द का अर्थ है घोंसला और आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को, पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और इसकी सूची बनाइए। अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय।
7: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ। अलड़ू मैं, चल चलू मैं, जल्दी सीख भी जाती।

0: तो सुनिए अपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्ता पूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्ता पूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है हमारा आदित्य।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य

0: पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है जिसमें भारत के सौर मिशन की विस्तार से जानकारी दी गई है।
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0
2: दिन था 2 सितंबर 2023, स्थान इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, समय भारतीय समय अनुसार ठीक 11:50, जब अंतरिक्ष यान आदित्य L1 की गगनभेदी गर्जना से आकाश गूंज उठा। लाखों करोड़ों लोगों ने सारी दुनिया में इस दृश्य को टेलीविजन पर देखा।
3: श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 इसरो के पहले सूर्य मिशन को लॉन्च कर दिया गया है।
2: रेडियो पर समाचार प्रसारित हुए और दूसरे दिन के सभी अखबारों ने इसे अपने मुख पृष्ठ पर प्रमुखता से छापा। शीर्षक था आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत विश्व की चौथी महाशक्ति बना। आज कक्षा में बड़े उत्साह का वातावरण है क्योंकि विद्यालय के विशेष निमंत्रण पर आज जाने माने स्पेस जर्नलिस्ट श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं, जो सौर यान आदित्य के बारे में बातचीत करेंगे।
4: क्या तुम्हें पता है कि श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं?
5: क्या वो चंद्रयान के बारे में बात करेंगे?
4: मुझे लगता है वो आदित्य यान के बारे में बात करेंगे।
5: चलो देखते हैं वो किस यान के बारे में बात करेंगे।
6: हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब?
7: हम अच्छे हैं।
6: तो बच्चों शुरू करते हैं बातचीत, आप तैयार हैं?
7: जी हम तैयार हैं।
6: तो आज हम बातचीत करने जा रहे हैं भारत के सौर यान आदित्य L1 के बारे में।
7: आदित्य L1 के बारे में?
8: बच्चों शांत हो जाओ, आप बारी बारी सर से सवाल पूछ सकते हैं।
5: सर इसका नाम आदित्य क्यों पड़ा?
6: बहुत अच्छा सवाल। देखो आदित्य एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है सूरज यानी सूर्य। अच्छा चलो बताओ सूर्य के लिए और कौन कौन से शब्द हैं?
4: सर टीचर ने बताया था कि सूर्य को रवि और भास्कर भी कहते हैं।
6: बहुत अच्छे, चलो अब मेरी ओर से एक खास सवाल। अच्छा तो अब ये बताओ कि क्या तुमने किसी वैज्ञानिक का नाम सुना है जिनके नाम में भास्कर शब्द जुड़ा है?
5: जी सर, उनका नाम है भास्कर आचार्य।
6: अरे वाह, तुम्हारा क्या नाम है बेटी?
5: जी मेरा नाम श्रुति है।
6: शाबाश श्रुति, तुम्हें बता दूं कि भास्कर आचार्य प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। हाँ तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की। क्या आप जानते हैं कि सूर्य क्या है? मेरा मतलब है कि सूर्य ग्रह है या तारा है?
9: सूर्य ग्रह है या तारा?
6: अरे सोचो सोचो, जो जवाब देगा या प्रश्न पूछेगा वो सबसे पहले अपना नाम बताएगा।
5: सर मेरा नाम सुमित है, सूर्य एक ग्रह है।
6: सुमित तुमसे जरा सी भूल हो गई, सूर्य असल में एक तारा है।
7: अच्छा सर।
4: सर मेरा नाम सोहम है, मेरा प्रश्न यह है कि सूर्य इतनी गर्मी कैसे देता है? क्या वहाँ आग जलती है?
5: और अगर जलती है तो वहाँ आग किसने लगाई होगी?
6: बच्चों दरअसल सूर्य में गर्मी आग जलने से नहीं होती, सूर्य ऐसी गैसों से बना है जो बहुत गर्म होती हैं, जैसे हीलियम और हाइड्रोजन।
4: हीलियम और हाइड्रोजन सर?
6: हाँ सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम नाम की गैसों का एक विशाल गोला है।
4: विशाल गैसों का गोला? अब समझ आया कि सूर्य इतना गर्म कैसे होता है।
6: शाबाश, समझ गए ना?
7: जी सर।
5: सर जिस तरह से चंद्रमा पर जाया जा सकता है, क्या उसी प्रकार सूर्य पर भी जाया जा सकता है?
6: बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखो सूर्य का तापमान इतना अधिक है कि वहाँ चंद्रमा की तरह नहीं जाया जा सकता। हाँ

0: एक निश्चित दूरी से सूर्य का अध्ययन किया जा सकता है। इसलिए तो हमारे देश ने सूर्य के बारे में अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 को अंतरिक्ष में भेजा।
1: सर, आदित्य अंतरिक्ष यान के बारे में हमें विस्तार से बताइए ना।
0: जरूर बच्चों, देखो आदित्य L1 चंद्रयान की तरह ही एक यान है जिसका कार्य है सूर्य के बारे में जानकारी जुटाना।
2: जी सर।
0: जैसे ये किस समय कैसा होता है, इसका तापमान स्थिर रहता है या घटता बढ़ता है, और इसका क्या प्रभाव हमारी पृथ्वी या सौर मंडल के अन्य ग्रहों पर पड़ता है।
3: सर, हमने आपके लेख में ही पढ़ा है कि आदित्य यान ने सूर्य के कई फोटोज पृथ्वी पर भेजे हैं।
0: हाँ, सही कहा। आदित्य यान का मुख्य उद्देश्य सूर्य की बाहरी परतों का अध्ययन करना है। इन तस्वीरों से हमें तूफानों और अंतरिक्ष के मौसम की बेहतर जानकारी मिलेगी, जिससे भविष्य में संचार और उपग्रह सेवाओं को सुरक्षित रखने में हमें बड़ी मदद मिलेगी।
1: सर, मेरा नाम दिवाकर है।
0: भाई वाह, दिवाकर का मतलब भी तो सूर्य ही होता है ना।
2: जी सर।
0: जी दिवाकर, आपका प्रश्न क्या है?
1: सर, मेरा प्रश्न है, यदि सूर्य इतना गर्म है तो आदित्य यान उसके पास जाकर तस्वीरें कैसे भेज रहा है? क्या वो जल नहीं जाएगा?
4: अरे भला जलेगा कैसे, आदित्य यान सूर्य से एक सुरक्षित दूरी पर है, करोड़ों किलोमीटर दूर, समझे?
3: जी सर। सर, आदित्य यान का पूरा नाम आदित्य L1 क्यों है? L1 का क्या मतलब है?
0: देखो बेटी, L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट। ये बिंदु अंतरिक्ष का एक विशिष्ट स्थान होता है जो सूर्य और पृथ्वी के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा पर होता है। इस स्थान से सूर्य को लगातार बिना किसी रुकावट के देखा जा सकता है, और ये देखा गया है कि अंतरिक्ष यान लगभग स्थिर रहता है। लैग्रेंज बिंदु 1 से 5 तक होते हैं।
1: सर, एक बार जब सूर्य ग्रहण लगा था तो हमें विशेष प्रकार की किट दी गई थी और कहा गया था कि इसी किट के द्वारा सूर्य को देखें। ऐसा क्यों?
0: बेटा सोहम, सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय ही नहीं, सूर्य को कभी भी प्रत्यक्ष आंखों से देखना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन आदित्य यान ने जो तस्वीरें हमें भेजी हैं, उन्हें देखकर हमें पता चलता है कि सचमुच कितना अद्भुत है हमारा सूर्य।
3: सर, आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी बड़े होकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनूंगी, चंद्रमा और दूर दूर के तारों के बारे में पढ़ूंगी और अंतरिक्ष यान भी भेजूंगी।
0: शाबाश बच्चों, शाबाश। खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, और देश का नाम हमेशा रोशन करो।
5: तो साथियों, अभी आपने सुनी जानकारी L1 यानी आदित्य यान के बारे में। कैसी लगी जरूर बताइएगा, और ये भी पता लगाइए कि और कौन कौन से यान अंतरिक्ष में भारत द्वारा भेजे गए हैं।
6: हमारा आदित्य, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
7: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
6: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।

0: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने तथा गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। झारखंड हाई कोर्ट ने हजारीबाग ओपन जेल की सुविधाओं और प्रबंधन से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई की है। अदालत ने राज्य सरकार को आगामी 20 जुलाई तक विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आज विभाग की ओर से प्रखंड विकास पदाधिकारियों को 25 नए वाहन सौंपे हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बीडीओ को नए वाहन मिलने से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाओं की निगरानी और क्रियान्वयन में तेजी आएगी। राज्य के विभिन्न जिलों में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान जारी है। गुमला में उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी दिलेश्वर महतो ने आज सदर क्षेत्र के कई मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बीएलओ को पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ काम करने के निर्देश दिए। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों को खेल, विज्ञान, कला, संस्कृति और बहादुरी जैसे क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। इच्छुक व्यक्ति राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हजारीबाग जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के करीब 600 अनुबंध कर्मियों को पिछले 5 महीनों से वेतन नहीं मिला है। पीड़ित चिकित्सकों, नर्सों और लैब असिस्टेंट ने जिला प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि ट्रेजरी में पैसा होने के बावजूद वे फाइलों के चक्कर काट रहे हैं। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: एक मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए पेश है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित हमारा कार्यक्रम किसान वाणी।

0: कार्यक्रम किसान वाले सोलह सभी किसान भाई बहन के जोहार प्रणाम नमस्कार। और देखा आज हमारे संगे फिर से आ रहा थी संतोष भाई, तो संतोष भाई कार्यक्रम किसान वाणी में तोहरो स्वागत है, जोहार प्रणाम।
1: तोरो स्वागत करो, जोहार प्रणाम करो या, और देखा कि सभी किसान भाई बहन के भी संतोष के देने से जोहार प्रणाम। और देखा कि एक बार फिर
2: हम तो बहुत सारा जानकारी लेके लिए, तो देखा कि आज ये जानकारी हम बतेबे, तो बता दे क्या आज हमने का बतेबे से।
0: देखा जानकारी जी आज लेके आ लिया हमें संतोष भाई। देखा कि सबसे पहले हम बात करबे कि अभी के समय में जो है से बहुत बढ़िया है कि कद्दू वर्गीय सब्जी में जे लगे वाला प्रमुख कीट है ओकर बारे में हम बात करबे, और एकर से हम नियंत्रण कैसे पाइबे एकर से एकर बारे में बात करबे। ओकर बाद कुछ जरूरी संदेश भी है ओकरा हम सुनबे और किसान भाई बहन सबके सुनेबे। और फिर देखा ओकर बाद बात करबे हम कि कृषि वानिकी और मेड़ पर जो वृक्षारोपण हुआ ओकर लाभ के बारे में बात करबे। और फिर देखा बात करबे वो हमें जानकारी भी लेकर आ लिए हम अपन किसान भाई बहन सब खातिर ले कि गाय के जो है उचित देखभाल हम कैसे करबे जब गाभिन हो जाए, और फिर गाभिन जब जो बच्चिया नया हो रहा ओकरा भी हम कैसे देखभाल करबे ओकर बारे में भी हम जानकारी करबे। फिर कुछ गीत है, फिर माने कि अंत में फिर हम बाजार भाव और मौसम के जानकारी के साथ हम अपन प्रोग्राम के समाप्त करबे।
2: बिल्कुल, तो देखा कि हम के साथ पूरा जुड़ल रहती और अपन पास पेन कॉपी जरूर रखती है, जो भी बात हमें बताओ ये जरूर नोट करते हैं। देखा कि समय समय पर केंद्र सरकार द्वारा या तो राज्य सरकार द्वारा बहुत सारा जानकारी दिया जाए और योजना निकालो है, तो हम कोशिश रहे कि एक कार्यक्रम के माध्यम से अपन किसान भाई बहन के हर प्रकार के जानकारी दिए ताकि लाभ ले सकते।
0: तो देखा हमें जैसे बात कर लिया कि अभी जैसे बात करबे संतोष भाई की हमें आज कद्दू वर्गीय सब्जी में जो है से कीट लगवा और से हमें कैसे जो है से निदान पेबे। तो में देखा कि कीट जो लगे वाला है वो सबसे पहला है कि लाल भिरिंग एगो कीट हुआ है, बहुत ही मैंने कहा कि हमें के फसल के बर्बाद करो है। तो एकर पहचान हमें जो है से कीट के लाल रंग से चमकीला होवे के बाद जो हमें जगह पहचान कर सको है। और ये का करो है पौधा में सबसे ज्यादा खराबी का करो है कि पत्ते में जो है से छेद कर दो है, जेकर से हुए का कि हम इनके फसल जो है से बर्बाद हो जाए और कहा कि मरे के कगार पर भी आ जाए अगर हमें देख रेख न करो ये तो। और एक नियंत्रण करे के देखा कि हमें के शुरू के समय में ही जैसे कहा कि घर में जो हम इनके गोबर के जो राख हो गए थे जो गोठा जला हुआ ओकर राख हो गलो चाहे लकड़ी के राख हो गलो हमें शुरू में ही एक जैसे छिड़काव कर देवे के चाहिए इनके किसान भाई बहन सबके।
2: और एक में देखा कि नीम के तेल भी 5 मिलीलीटर पानी अगर छिड़काव करो है तो बचावल जा सको। और देखा कि सुबह के समय जब कीट सुस्त रहो थी तो उस समय हाथ से भी पकड़ के रखना तो नष्ट कर सको।
0: फिर देखा एक वो बीमारी है फल मक्खी, ये जो है से कहा कि सबसे पहले जो है से विनाशकारी कीट तो यही है। एकर काम है कि मादा मक्खी जो है वो फल के अंदर घुस के जो है से अपन अंडा छोड़ दो है, जेकर से फल जो है से सड़ो लगो है और खराब हो लगो है। तो एक नियंत्रण देखा सबसे बढ़िया का है कि जे फल में देखा कि सड़ो लगला हो कर अंदर जैसे अंडा जगला जो छोड़ दल का है वो फल के पहले सबसे पहले हमें वहां से नोच के और फेंक दिए। और फिर देखा एक में और क्या करेगा जब देखा कि जब ज्यादा लग गया है तो एक दवा है फेरोमोन ट्रैप है, एक उपयोग हम इनके जो है से अपन खेत में करे के चाहिए ताकि एकर से हमें निदान पाइए।
2: एक और दवा का नाम बता दिया चाहो ये कि एक है मेलाथिपोन, अगर 2 मिली प्रति लीटर पानी के साथ मिला के अगर छिड़काव करो थी तो फल मक्खी जो रोग है ओकरा तुरंत दूर कर जा सको है।
0: और फिर देखा कि माहू चेप्पा एगो कीट है, ये भी देखा कि एकर से कहा हुआ है कि एकर पहचान हम कैसे करो ये कि कीट जो हुआ है से एक रंग जो है से हरा हुआ है और करिया हुआ दोनों हुआ है। और तो एक काम है कि पौधा के पत्ते जो है संतोष भाई ओकर कोमल तना जरूर है ओकर से जो है से रस जो है से चूस ले वो है, जेकर कारण से पौधा के पत्ते जो है से पीला हो जाए और पौधा जो है से कमजोर भी हो जाए। और एक नियंत्रण की अगर बात करो ये हमें तो एक से बचे खातिर हम इनके जो है से नीम के तेल जैसे 2 से 3 मिलीलीटर मात्रा जो है से प्रति लीटर पानी में मिला के जो है से छिड़काव हम इनके करे के चाहिए।
2: बिल्कुल। और एक देखा एक और है जैसे सफेद मक्खी या तो रस चूसे वाला कीट हुआ है, ये कहो कि ये पतिया के निचली सतह के कहो रस चूसो है, आप चिपचिपा पदार्थ छोड़ो है, ये पीला मोजेक वायरस भी फैला हुआ है जगह से पतिया पीला हो जाए सिकुड़ जाए, अकरा निवारण करे खातिर ले जे प्रभावित जे जे पत्ती सड़ गए है या पीला हो गए तोड़ के जला दिए चाहिए, और सफेद मक्खी के नियंत्रण करे खातिर ले इमीडाक्लोपीड या तो डायमेथोएट दवा के नाम है के अगर एक मिली प्रति लीटर के दर से अगर छिड़काव करो थे तो सफेद मक्खी या तो रस चूसे वाला कीट के तो नियंत्रण कर सको।
0: फिर देखा कि एक बीमारी है कटवर्म कीट है, ये तो ये कीट जो है वो है से कहा काला रंग की है वो है और एक इल्ली जो है वो है और ये जो है से रात में जो है से तना के जमीन के सतह से काटो, देखे थे कोई कोई फल अगर तू लगा रहा पौधा लगा रहा तो देखा कि ऊपर से देखे में ठीक लगता है लेकिन कहवा मर का हिल गले, तो वही है कटवर्म कीट है ये का करो कि तना के नीचे से जब जड़ के जस्ट ऊपर तना में अगर काट दे वो है जगह चलते हमें कि जो पौधा जो है से वो मर जाए और मुरझा जाए।
2: ओकरे में देखे और है बीमारी अगर कीट की बात करिए तो मृदो रोमिन फफूंद कीट के नाम है, अगर पहचान का है कि पतिया जो होकर निचली सतह जैसे के ऊपर जो सतह रो ना हल्का हल्का पीला धब्बा जैसा बना दे और ऊपर से कहा कि हमने के फसल बर्बाद करे में बहुत बड़ा हाथ हुआ करो, तो अगर निवारण हमने कर सको ये कि मैन कोजेब एक दवा का नाम है, अगर 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल कर अगर छिड़काव करो थी तो मृदु रोमिन फफूंद जो है ठीक करल जा सको है।
0: और फिर देखा है लीफ माइलर एगो कीट है, ये बीमारी में का हुआ है कि पत्ते के अंदर में जो है से सफेद रंग के जो है से टेढ़ा मेला लाइन बन जाए जो और फिर अक्रम का हुआ कि पत्ते में सुरंग भी जो है से कर दो है, तो एक से कहा हुआ कि पत्ते में बीमारी पड़ जाता है कि पौधा जो उतना बढ़िया ना मैंने कि फल फूल पाओ है, तो एक नियंत्रण के लिए हमें जो है से का करे का जाए का चाहिए कि बीमारी से जब ग्रसित हो जाए तो ओकरा कर ओकरा जो पत्ते जो है ओकरा तोड़ के जो है से हमें के कहीं दूसरा जगह पर जैसे फेंक देवे चाहिए गढ़ा में डाल देवे के चाहिए। तो संतोष भाई देखा हमें अभी बात कर लिए कि कद्दू वर्गीय सब्जी में लगे वाला प्रमुख कीट के बारे में निवारण के बारे में, तो देखा आगे हम और भी बात करवे किसान भाई बहन सबके को है कि अपन कार्यक्रम में बनल रहतीन कहीं ना जेथिन, बस ओकर पहले हमें सुने कुछ जरूरी संदेश और एगो लोकगीत।
2: बिल्कुल
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: हाँ तो देखा संतोष भाई, हमें जो है से जरूरी संदेश भी सुन लिए और बढ़िया एगो लोकगीत भी सुन लिए। अब देखा हमें के पास एगो जानकारी बढ़िया है संतोष भाई, जगह पर हमें अभी चर्चा करबे कि कृषि वानिकी और मेड़ पर वृक्षारोपण से हमें के का फायदा है और एक से का लाभ हम इनके हो है। देखा बड़ी बढ़िया है और किसान भाई बहन सबके जो है से अगर कृषि वानिकी और मेड़ पर जो है से वृक्षारोपण अगर सुनो थी ना, अगर एक बारे में थोड़ा लाभ उठावे कोशिश करो थी, देखा बहुत ही बढ़िया चीज़ है जगह बारे में अभी चर्चा करबे। तो देखा एक से का फायदा हुआ है कि अतिरिक्त आय के साधन भी किसान भाई बहन सबके बन जाए। तो कैसी आय बनो है कि देखा कि कीमती लकड़ी भी तू जो है से मेड़ पर लगा सको और फलदार वृक्ष भी जो है से अपन मेड़ पर लगा सको है, जेकर से देखा कि किसान भाई बहन सबके खेती बाड़ी के अलावा जो है से एक अतिरिक्त आय के भी जो है से स्रोत बन जाए।
1: एकदम सही बताइला। और अकर में जोखिम भी कम हुआ है, तो फसल अकर में देखा फसल फसल खराब हुए के किसानों का आर्थिक सुरक्षा प्रदान करो। और एक बात आ रहा है कि अकर में मिट्टी की उर्वरकता में सुधार करो है, तो होगा का कि पेड़ के पत्तियां जब भूमि पर गिरो है तो प्राकृतिक खाद बनाओ है। अकर साथ ही कुछ पेड़ जैसे हो गलो बबूल के, सुबबूल हो गलो, ये सब वायुमंडलीय नाइट्रोजन के मिट्टी में स्थिर करो है और रासायनिक खादों पर निर्भरता कम हो है।
0: कम हुआ है और फिर देखा कि मिट्टी कटाव के भी जो है से रोको है हम इनके एक से काय देखा कि तेज हवा जब चलू है तो ओकरा जो है से कहा कि इनके जो पेड़ लगाओ ये वो हवा के रफ्तार के जो है से कम कर दो है और
1: बिल्कुल
0: बारिश के पानी भी जो है ओकरा जो है से कहा कि ऊपर से जो है से पूरा तेजी से वो नहीं गिरल दे है और एकर कहा कि उपजाऊ मिट्टी जो है बहे से रुक जाए, मान
1: बिल्कुल
0: बारिश के कारण भी जो है से जो मिट्टी कटा हुआ है ओकरा भी बचाओ है और उपजाऊ मिट्टी जो है से हमें के जब कटा हुआ है कहा कि तेज हवा से चाहे बारिश के पानी से ओकर से बचाव हो जाए।
1: बिल्कुल। और देखा कि अगर मैं लकड़ी और चारे के भी अगर सेमरिंग के फायदा मिल जाए, तो देखा अगर किसान भाई बहन ये चीज अपनाओ थीं तो बहुत फायदेमंद है। लकड़ी में देखा कि दैनिक जरूरत में हम के जलाओ जो लकड़ी है, हमने के खाना बनाओ ये सब के हमने के तुरंत मिल जाता है। साथ ही पशुओं के लिए जो चारा हुआ दाना हुआ है ये सब भी हम के प्राप्त हो जाते हैं। तो देखा कितना बढ़िया चीज है, अगर किसान भाई बहन कर रहे थे तो एक चीज से कितना फायदा
0: कितना
1: हुआ।
0: फायदा हुआ। फिर देखा कि पर्यावरण और जलवायु में भी एक नियंत्रण हुआ है संतोष भाई, जैसे कि हवा के रफ्तार के जो है से कम करो है और फिर कहा कि वाष्पीकरण के जो दर है ओकरो भी कम करो है और खेत के तापमान के नियंत्रण बना के रखो है
1: बिल्कुल
0: और फसल के गर्मी के तनाव से भी राहत मिलो है। तो हमें के देखा कि जैसे खेती बाड़ी के साथ साथ जो है से वृक्षारोपण पर भी हमें के ध्यान देवे के चाहिए।
1: बिल्कुल। और देखा कि हमने खेती बाड़ी के साथ साथ हमने के किसान भाई और भी व्यवसाय करो थे, से मुर्गी पालन हो गलो, बत्तख पालन हो गलो, गाय पालन हो गलो, और हमने के जे किसान भाई बहन पशु पालन करो थीं, तो कर में भी बहुत सारा जानकारी हमने के रखे चाहिए। जानकारी में जैसे कि जैसे कोई गाय गाभिन हो गलो कर ऐसे उचित देखभाल करे चाहिए, अकर पर बहुत अच्छा जानकारी हमने आज ले लिया है। तो आज ये जानकारी बता दिए का है।
0: तो देखा जानकारी है कि हमें के गाभिन गाय के कैसे देख रेख करिए, चाहे जो जे बाछी जो है से गाभिन नहीं हो रहा तो ओकरा पर हमें कैसे ध्यान दिए कि समय से वो गाभिन हो जाए और फिर जब गाय बच्चा दे दू है तो ओकर बच्चा हमें कैसे देख रेख करिए ओकर बारे में जानकारी है और वो जानकारी देवे थे महादेव प्रसाद वर्मा
1: और हमें देने से जो बातचीत कर रहे है वह थी श्याम सुंदर रजक। तो देखा कि बड़ी बेस्ट जानकारी है और जरूर सुनतीन और जो भी बात है जरूर अपन कॉपी में लिख भी लेतीन।
0: हाँ तब चला सुनो जानकारी भरल बातचीत।
2: किसान भाई एवं बहनों, आज हम आए हुए हैं चौपारण प्रखंड के एक वाइफ केंद्र और यहाँ पे जानेंगे हम लोग कि अभी जैसे कि गाय को हम लोग गर्भधारण कैसे करें, इसका सही समय क्या होना चाहिए और गाय जब हीट में नहीं आ रही है तो

0: उसका हम लोग क्या उपाय करें, तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन है तो हम लोग जानेंगे। और तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएं और अपना जो काम कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा परिचय दें।
1: सबसे पहले मेरा नाम महादेव प्रसाद वर्मा है और चौपारण प्रखंड के झापा पंचायत में 12 गांव में हम रहते हैं और केंद्र प्रभारी हैं और यहां पर हम सेवा देते हैं।
0: तो जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि अभी हमारे किसान भाई बंधु सब देख रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा पैमाने पर गाय गुरु रख रहे हैं, और गाय देखिए किसान को रखना भी चाहिए क्योंकि जो ऐसे खेती बाड़ी से रिलेटिव है और एक दूसरे के पूरक भी है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि गर्भधारण का सही समय मैंने क्या होना चाहिए।
1: जैसे गाय जो है अधिकतर गाय जो है ना सो वो 12 बजे रात ही गर्म होती है, जबकि किसान लोग कॉल करके बताता है कि गाय जो है सुबह से गर्म हो गई है।
0: जी जी,
1: तो उसका हम समय अगर सुबह से अगर गर्म गाय हो जाती है तो उसको शाम को देना चाहिए, मतलब नियम के अनुसार 18 घंटा के बाद ही उसको सीमेन दिलाना चाहिए।
0: मैंने हीट में आने के बाद जो है 18 घंटा के बाद ही जो है सो सीमेन उसमें देना चाहिए।
1: तो हम समय देते हैं, जैसे सुबह किसान बोलता है तो सुबह नहीं होती है, 12 बजे रात ही गर्म होती है।
0: जी,
1: तो 12 बजे के बाद ही देना चाहिए। क्रॉस वाली गाय है तो फिर 18 से 24 घंटा के अंतर्गत पड़ जाना चाहिए।
0: अच्छा देखते हैं, जैसे आप बताएं कि रात में गर्म होती है, बहुत गाय ऐसे है कि सुबह में गर्म हो जाती है।
1: तो सुबह में नहीं गर्म होती, वो रात में गर्म होती है, आ तो 12 बजे दिन आ तो 12 बजे रात, यही है उसका मेन फोकस। हाँ, अपवाद में 10-20% गाय जो इधर उधर गर्म होती है, 80% जो गाय होती है
0: जी जी।
1: वो 12 बजे दिन गर्म हो आज 12 बजे रात ही होती है।
0: अच्छा, अगर 12 बजे दिन में गर्म होती है
1: हाँ, तो उसको सुबह पड़ता है।
0: सुबह पड़ता है, मैंने कि मन के कहिए तो 12 घंटा 13 घंटा के बाद जो है उसमें
1: तभी देना चाहिए, तो सक्सेसफुल है। जैसे पूरा हीट में अगर दे दीजिएगा तो कब सेंसर रेट नहीं है, मतलब रखने में परेशानी होती है।
0: अच्छा, बहुत किसान भाई बंधु जो है एक चीज का समस्या थोड़ा उनके पास ज्यादा आता है कि अगर गाय हीट हो जाती है तो पकड़ नहीं पाते हैं कि गाय बहुत
1: गाय बहुत तरह के लक्षण होती है। कोई गाय साइलेंट होते हीट होती है, वो जैसे अपना बच्चा है तो बच्चा पर चढ़ जाएगी, किसान उसके यहाँ अगर खाना वाना लगाने जा रहे तो उसी पर चढ़ जाएगी, तो ये सब लक्षण है। पीछे आपका जो ओनी दबाव होती है वो सूजन हो जाता है
0: जी जी।
1: फिर लैक्टिंग भी पतला करती है
0: जी जी।
1: चिल्लाने का जो लक्षण होता है, कोई गाय चिल्लाती है, कुछ भी खाना दीजिए वो चुप नहीं लगाएगी, चिल्लाते रहेगी
0: जी जी।
1: ठीक है, ये सब इसका मतलब मुख्य लक्षण है।
0: अच्छा, बहुत गाय है ना कि देखते हैं कि आवाज भी नहीं करती है और फिर चिल्लाती भी नहीं है, और मतलब
1: उसी को बताए ना कि वो चढ़ जाएगा, किसान पर चढ़ जाएगा, चाहे कोई गाय होगा चाहे बैल होगा अगर बगल में, तो उस पर वो वार करेगी, चढ़ जाएगी, तो समझिए कि मेरी गाय गर्म हुई है। उसके पीछे वो नींदवार से श्राव टाइप का मतलब डिस्चार्ज बोलते हैं हम लोग
0: जी जी,
1: गांव देहात में उसको लाघा लोग बोलता है, को बहुत तरह से बोलता है
0: जी। तो अच्छा एक चीज है और समस्या है सर कि देखिए गर्भधारण के बाद हमारे किसान भाई बंधु सब जो है सो ध्यान रखें, थोड़ा बहुत कोताही करते हैं, उनको उतना पता भी नहीं रहता है।
1: देखिए सबसे पहले जब आप सीमेन और पाल दिला रहे हैं
0: जी जी,
1: तो पहला प्रावधान है कि डॉक्टर जो बताते हैं उस पर विशेष ध्यान देना है
0: जी जी।
1: जब वो आते हैं तो सबसे पहले तो सीमेन डालने के बाद वो बताते हैं कि जैसे कोई ऐसा पदार्थ है जो खिलाने से उसको नुकसान करता है
0: जी जी।
1: जैसे घर में जो धोवन वोवन होता है, चावल वावल होता है, ये सब बहुत लोग जूठा उठा बहुत
0: जी जी।
1: देना नहीं चाहिए गाय को
0: जी जी।
1: लेकिन लोग दे देता है। तो इसका कम से कम 8 दिन नहीं देना चाहिए, और क्योंकि उसका प्रक्रिया जो है 8 दिन के अंदर जो होना था वो हो जाता है
0: जी।
1: ठीक है, तो इसके उस पर विशेष ध्यान देना है, जैसे उसको 2-3 घंटा मतलब बैठने नहीं देना है, ये सब सावधानी उस पर।
0: खाना में क्या देना चाहिए सर?
1: खाना में उस समय अगर दूध दे रही है देते रहना है, लेकिन मात्रा कुछ कम कर देना
0: जी।
1: अगर वो दूध नहीं दे रही है
0: जी,
1: तो उस परिस्थिति में आप खाना मतलब हीटेड चीज जो होता है वो सब चीज नहीं देना चाहिए। जैसे हो गया आपका गेहूं का कटुआ हो गया, चोकर का मात्रा हो गया, ये सब मात्रा मतलब कम मात्रा में देना चाहिए जो कि उसको नुकसान ना करे।
0: और देना क्या चाहिए?
1: देना जैसे कुट्टी चोकर दे सकते हैं, ऐसा बात नहीं है,
0: मतलब हल्का मात्रा में चोकर
1: हाँ, थोड़ा कम मात्रा में
0: सूखा करके आप दे सकते हैं।
1: अच्छा
0: एक समस्या और है हमारे किसान भाई बंधु पास की, बछिया की जो बहुत किसान भाई बंधु के पास होता है तो हीट होने में जो है उसका समय लग जाता है।
1: सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, देखिए बछिया में सबसे टेक्निकल इशू है कि बछिया को जब बच्चा देती है
0: जी जी,
1: तो छोटा में जो लोग ध्यान नहीं दे पाता
0: जी जी,
1: छोटा में विशेष ध्यान देना चाहिए, उसको डिवर्मिंग कराना चाहिए समय समय पर, उसको विटामिन्स का मिनरल होता है।

0: विटामिन्स का दवा आता है बहुत सारा, उसको देना चाहिए। लोग करता क्या है, उस सोचता है कि दूध पी रही है बच्चिया पी रही है
1: जी जी,
0: और उसी के कारण जो है सो भविष्य में उसको मतलब आगे चल के उसको नुकसान करता है,
1: नुकसान करता
0: हाँ, इसलिए उस पर विशेष ध्यान दे और डॉक्टर जो सलाह दे उस पर आश्रित रहे तो वो समय पर गर्म हो जाएगी। ये क्रॉस की बच्चिया जो होती है
1: जी जी,
0: उसका नियम है 17-18 महीना में पाल खा लेना चाहिए उसको,
1: 17
0: अगर हाँ, अगर बढ़िया से आप ध्यान दे दिए तो। अगर लेट हो रहा है तो समझिए कि ढेर सारा नुकसान हो रहा है
1: आपको, मैंने कि ये सारी बातों पर आपको जो है ध्यान देना होगा तभी हाँ,
0: और फिर अगर देहाती नस्ल का जैसे है सहीवाल आता है, गिर आता है, थरपारकर, ये सब उसका लिमिट होता है 2.5 से 3 साल। 2.5 से 3 साल के अंदर अगर नहीं गर्म हो रही है तो समझिए कि उसके अंदर कोई न कोई प्रॉब्लम है
1: जी,
0: तो तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क करें और उसका जो उचित जो दवा हो डॉक्टर साहब जो सलाह देंगे
1: जी,
0: उसके अनुसार आपको चलना है, फिर वो कामयाब हो जाएगी
1: जी। मैंने
0: अपवाद में जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि सब कुछ दिलाने के बाद भी
1: जी जी
0: सक्सेस नहीं होता, वो 1-2% है जो जन्मजात बांझपन होता है, उसमें कोई उपाय नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता।
1: अच्छा एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहते हैं सर कि जैसे कि बहुत जैसे गाय जिसमें इशू होती है जिस बचा देती है जिसमें, तो उस समय नवजात शिशु जो है उस पर हम लोग कैसे ध्यान रखेंगे?
0: देखिए सबसे पहले जैसे बच्चा दी
1: जी जी,
0: जैसे लग रहा है कि अब हम गाय बच्चा दे देगी
1: जी जी,
0: तो बच्चा देने के बाद तुरंत पीयूष पिलाना चाहिए। बहुत लोग कहता है कि नहीं ओल नहीं पिलाना है, ऐसे करना है वैसे करना, ये नहीं
1: जी जी,
0: तुरंत उसको पिलाना चाहिए। फिर उसको तुरंत गर्म पानी करके शैम्पू या साबुन से उसको साफ कर दीजिए, धो दीजिए। इससे क्या होगा भविष्य में आपको नाना प्रकार का बीमारी होता है, चर्म रोग होता है, ये सब नहीं होगा ठीक है
1: जी।
0: इसी के कारण ये सब समस्या होता है तो करना चाहिए। फिर गाय को भी ये दोनों को गर्म पानी से ही नहलवाएं, चाहे गर्मी का दिन रहे आ तो ठंडा के दिन रहे आ तो बरसात रहे
1: जी,
0: लेकिन हमेशा उस गर्म पानी करना है नवजात शिशु और उसकी माँ को। उसके बाद फिर खाना आ जाता है, खाना में उसको नॉर्मल खाना देना है, मतलब एकदम बगम ऐसा कुछ खाना नहीं देना जो उसको प्रसव जो होती है उस समय बहुत तरह के समस्या होता है, पाचन शक्ति का मात्रा कम हो जाता है, तो सुपोषक भोजन देना चाहिए, मतलब जो कम समय में पच जाए
1: जी,
0: कम मात्रा में देना चाहिए। अगर आप दे रहे हैं तो हल्का हल्का दीजिए, सूखा चारा दीजिए, सादा पानी दीजिए, मतलब ये नमक उमक ये सब प्रोसेस नहीं करना चाहिए,
1: नहीं करना चाहिए
0: जिससे नुकसान होता है।
1: अच्छा बच्चिया को खीस हमारे किसान भाई बंधु देखते हैं कि जो इसे फेनूस जिसे बोलते हैं खीस जिसे बोलते हैं वो बहुत मने कि पिलाने से डरते हैं, तो कितना दिन तक आप कितना मात्रा में लमसम पिलाना
0: चाहिए? पिलाने का जितना जिस हिसाब से बच्चा होता है ना
1: जी जी,
0: उस हिसाब से उसको देना चाहिए। अगर ज्यादा दे रहे हैं तो लेटिंग करने के लिए चालू कर दे तो उसको समझ जाइए कि पचा नहीं पा रहा है
1: जी हाँ,
0: चाह पा रही है
1: जी,
0: तो उस परिस्थिति में आप कम कर दीजिए, वो आपको अपने पता चल जाएगा कि कितना का हो रहा है,
1: कितना मैंने देना है
0: हाँ, कितना
1: लैट्रिन अगर जब
0: पतला करने लगे समझिए ये पचा नहीं पा रहा, इसका मतलब कि ये दूध जो पीयूष है तो ज्यादा मात्रा में पी रहा है
1: जी हाँ। तो चलिए सर आप बहुत ही अच्छी जानकारी दिए और अपना बहुमूल्य समय हम लोगों को दिए और हमारे किसान भाई बंधु को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो देखिए कितना बेस्ट जानकारी सुनेगी और जानकारी है लेकिन गाभिन गाय के उचित देखभाल कैसे कर सको ये और अकर जो जानकारी दिए थी महादेव प्रसाद वर्मा और हमीन देने से जो बातचीत कर देते हैं श्याम सुंदर रजक, तो कितना बेस्ट जानकारी है कि अगर हमने गाय पालन करो ये तो किस प्रकार से हमने देखभाल कर सको, खास करके गाभिन गाय की कैसे हमने उचित देखभाल करी अकबर विशेष जानकारी दिए गए। तो देखा कि इस प्रकार से हमने आज के जो कार्यक्रम में हमने सारा चीज बतेली और उम्मीद है कि ये कार्यक्रम सुन के हमने के किसान भाई बहन जरूर लाभ लेतीन। तो अब हमने घड़ी के देने देखो ये तो कार्यक्रम किसान वाणी से हमने के जाय के बेरा हो गए, तो अपन भाई संतोष के
3: और हमरा श्याम के
2: अनुमति देतीन जोहार।

मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित हमारा कार्यक्रम किसान वाणी एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए पेश है ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम खेती बारी।

0: कार्यक्रम खेती बाड़ी सुनेलन सब किसान भाई बहन सबके जोहार प्रणाम नमस्कार और देखा फिर से हमारे साथे बनल हथिन कार्यक्रम में संतोष भाई। तो संतोष भाई तोरो कार्यक्रम खेती बाड़ी में स्वागत करो जोहार प्रणाम नमस्कार।
1: तोरो जोहार प्रणाम श्याम है और साथे साथ खेती बाड़ी सुनने वाले सभी किसान भाई बहन के एक बार फिर से संतोष के देने से जोहार प्रणाम नमस्कार करो ये और उम्मीद करो कि कार्यक्रम पूरा बनथिन और अपन पास पेन कॉपी जरूर रखथिन और जे भी जरूरी बात हमने बतेबे ओकर नोट जरूर
0: करथिन और उम्मीद करो ये कि अपन सेहत पर भी ध्यान देवित होथिन अपन खेत बाड़ी पर भी ध्यान देवित होथिन अपन और स्वस्थ होथिन और मस्त भी होथिन। तो देखा हमें अपन कार्यक्रम के दने बढ़ो ये संतोष भाई तो देखा कि सबसे पहले आज हम बात करबे कि जैविक खेती और प्राकृतिक खेती से हमें के का लाभ हो है। देखा बड़ी बढ़िया सवाल है संतोष भाई और हम के जो है से एकरा पर ध्यान भी देवे के चाहिए कि जैविक खेती का है। जैसे कि देखा कि एक समय हले संतोष भाई आज से कम कहा कि 25-30 साल पीछे अगर हम जाइए तो कहा कि उस समय जेल से इतना रासायनिक खाद के प्रयोग ना हो बोले जैसे हम इनके इलाके में और जगह जहाँ जागरूक किसान भाई सब बोलते वहाँ तो हो बोले लेकिन हम इनके इलाके में बता रहे तो उस समय उतना ना होला। मान के चल अगर 50-60 साल अगर पीछे जे बात उस समय तो रासायनिक खाद के कहा के उपयोग ना हो बोले तो हम इन उस समय का बोले कि कहा कि बढ़िया बीज नहीं है लेकिन पैदा जो है से बड़े भी बीज है और पैदा बढ़िया हो बोले और वो अनाज खाए से कहा कि स्वस्थ भी रोले आदमी मस्त भी रोले और घर के जो गुरु डांगर वो भी खा ले तो बढ़िया रोले। लेकिन अभी का देखा कि जो रासायनिक खेती हो गया है देखा कि यूरिया खाद के धड़ले से प्रयोग हो रहा है फिर DAP खाद के जो है से पूरा प्रयोग हो रहा है और हम इनके किसान भाई बहन सब भी जेथिन से कहा कि थोड़ा सा मेहनत ना करे खोजोथिन थोड़ा आसानी खोजोथिन दुकान जाथिन दुकान से यूरिया खाद DAP खाद लेकर आओथिन कोई भी फसल में जो है से धड़ले से बूंद होती और यूरिया DAP का है कि जैसे तू दफा तैसे तुरंत तुरंत जो है उसे 8-10 घंटा बाद तुरंत तुरंत जो है सो कर दिखा लगता होकर प्रभाव जो हुआ ऐसे तो देखा कि तुरंत तो दिखाओ प्रभाव लेकिन तुरंत कहा कि ओकर प्रभाव खत्म भी हो जाए। लेकिन जब हम जैविक खेती की बात करो ये संतोष भाई जैविक खेती जैसे हो गलो गोबर खाद हो गलो केचुआ खाद हो गलो हरित खाद हो गलो कंपोस्ट खाद हो गलो तो ये सब खाद जो है से कहा कि माटी के भी जो है से तंदुरुस्त रखो और मजबूत रखो है और ओकर साथ साथ जो में फल लगो है जो फसल लगो है ओकरा खाए वाला भी जो है से तंदुरुस्त रहो है और मस्त रहो है।
1: बिल्कुल देखा कि जैविक खेती से अगर लाभ देखिए तो बहुत सारा लाभ है। पहला देखे कि जैसे तू बतेला ओकर बाद देखा कि अगर मृदा स्वास्थ्य भी हुआ है अगर जैविक खाद से कहा हुआ फसल चक्र हरी खाद का उपयोग करल जाए जगह से मिट्टी उर्वरक और जल के धारण के क्षमता बढ़ जाए। दूसरा बात है कि प्रमाणित उपज हुआ एक मानकीकृत प्रक्रिया है जगह में किसान अपन उपज के बाजार में बेहतर और प्रीमियम दाम से अच्छा दाम से बेचे होती
0: हाँ।
1: और तीसरा बात अगर देखो जैविक खेती में तो पर्यावरण संरक्षण हुए अगर से देखा कि भूजल के दूषित होवे से बचाव होती और जैव विविधता के अच्छा से बढ़ाव होती ताकि किसी प्रकार से पर्यावरण में किसी तरह का दूषित ना हो और देखा कि स्वास्थ्य सुरक्षा भी हुआ अगर में सिंथेटिक कीटनाशक के उपयोग न करल जाए जेकर से खाए पिए में विषैले अवशेष न रहे तो जेकर से जैविक खाद करे से जैसे तू बतेले खाए से आदमी स्वस्थ रहो या कोई गोरी डांगर खाते सब स्वस्थ रहती तो कोशिश करे के चाहिए किसान भाई की जैविक खेती करती और एक समय है अच्छा रहता है और अच्छा उत्पादन

0: तो सबसे बड़ी बात है कि मिट्टी हमेशा स्वस्थ रहता है,
1: स्वस्थ रहता है और मिट्टी हमें के तंदुरुस्त भी रहता है। देखा कि कोई भी फसल अभी जैसे हमें लगाओ ये संतोष भाई, तो देखा बहुत ही हमें के जैसा आते दिक्कत हो जाए, जैसे तू देखा होगा कि घर के जो बारी हो तुहर गांव देहात में देखा होगा, चाहे तुहर अपने भी हो तो वो भी देखा होगा कि मान के चल जे किसान भाई बहन छोट किसान आते हैं, एक गाय दो गाय रखलते ना, तू का करो थे गोबर जो है से जब सुबह चाहे शाम के जो उठाओ थे अपन गोहाल से तो का करो नजदीके खेत में फेंक दो थे कुदी बहु कोई जो होशियार किसान भाई बहन सब रोथन का करो थे कि कुदा कर ले जल जाते हैं और खाद बना चलते, लेकिन बहुत किसान भाई बहन सब का करते कुदा उठा फेंके चलते कुदा ना करो थे और नजदीकी खेत जे बारी झारी और हम डालते चल जाते हैं, तो उ बारे में देखो उपज की तू ओकरा में लगाओ थे लहसुन लगेलथुन चाहे आलू लगेलथुन चाहे हरा सब्जी लगेलथुन, तो कोई भी चीज फसल लगाओ थे तो बढ़िया हुआ है ओकर ओकर पौधा भी हरा भरा रहो है, ओकर में जो फल लगो वो भी बहुत बढ़िया रहो है, तो एक कारण का है कि ओकरा में हमें बराबर जो है से गोबर फेंक रही है, घर के बाढ़न सोहन ओकरा में बराबर फेंक रही है, तो एकरा से हमें समझ जाके चाहिए कि हम गोबर में का शक्ति है, जैविक खेती में का शक्ति है, एक समझ जाके चाहिए ताकि हम इनके मिट्टी जो है से कभी भी अगर हम इन कहीं भी लगाइबे अगर गोबर दे करके तो कहीं भी हम इनके कोई भी फसल जो है से खराब ना होते।
0: बिल्कुल एकदम सही बोला, और अगर हमने प्राकृतिक खेती की बात करिए तो बहुत बड़ा फायदा हुआ, सबसे पहली बात वो शून्य लागत मतलब कम जीरो बजट में हम ऋण अगर काम कर सको ये, दूसरी बात फायदा ये हो कि पानी की कम खपत हुआ है, और देखिए तीसरा बात अगर देखो ये तो सूखे के प्रति जो सहनशीलता हुआ वो भी लाभ पहुँचा हुआ, और सूक्ष्म जीवों का विकास ये सब भी हमके प्राकृतिक खेती से लाभ पहुँचा, तो इस प्रकार से देखा कि जैविक खाद और प्राकृतिक की जो खेती है वो हमने के बहुत लाभ पहुंचावे, और कोशिश करे चाहिए किसान भाई बहन के जैविक खाद के जैविक खेती जरूर करती है और प्राकृतिक खेती भी दोनों तरह से करो थी तो अपने के बेहतर से बेहतर फसल के उत्पादन होते हैं।
1: तो देखा संतोष भाई हम इन आगे और भी चर्चा करबे कार्यक्रम खेती बाड़ी में, तो अब देखा इनके पास से कुछ जरूरी संदेश है और एक बढ़िया गीत है,
0: गीत तो हमने भी सुन बे लेकिन हमने सोचो ये कि पहले हमने एक जोरी संदेश सुना लिए ओकर बाद एक भेंटवार्ता ले लिए है, तो भेंटवार्ता देखा कि घर की बाड़ी सेहत और बचत की क्यारी, और अगर मैं बतावल जेते किचन गार्डनिंग की खेती से कैसे फायदा हमने के किसान भाई बहन हुआ है और किस प्रकार से करो थी, और अगर जो जानकारी दिए थे थी जे डॉक्टर साहेब पाले थीन और हमीन दन से जे बातचीत कर रहे थे
1: वो थे संतोष कुमार दास,
0: तो पहले हमने एक जरूरी संदेश सुन लिए और बाद हमने भेंटवार्ता के सुनबे।
1: हाँ
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर, हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर, नया भारत नया आकाशवाणी।
0: श्रोताओं आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है सब्जी विज्ञान के वैज्ञानिक डॉक्टर साहेब पाल, जो कि वर्तमान में IARI गोरियाकर्मा में कार्यरत हैं। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपको हमारे स्टूडियो में स्वागत है, साथ ही हमारा नमस्कार।
3: नमस्कार।
0: तो डॉक्टर साहब आज का जो सवाल है बहुत ही खास है और हमारे जो किसान भाई बहन के लिए बहुत अच्छा सवाल है, और उसके बारे में आज जो जानकारी मिलेगी बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। तो आज का जो टॉपिक है हमारा कि घर की बाड़ी और सेहत और बचत की क्यारी, मतलब कि आज के दौर में वैज्ञानिक किचन गार्डनिंग का जो किस प्रकार से जो लोग करते हैं अब जो होती है उसके बारे में आज खास चर्चा होगी। तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि वैज्ञानिक किचन गार्डनिंग हमारे लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, किस प्रकार से हमारे लिए सेहत के लिए उपयुक्त है।
3: बिल्कुल, देखिए किचन गार्डनिंग हम लोग पारंपरिक रूप से बहुत दिन से करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसको अभी देखना चाहिए। तो इसमें आने से पहले मैं बोलना चाहूंगा मेरे श्रोता भाई बहनों को कि हमें सब्जियों का क्या महत्व है हमारे शरीर में, हमारे सेहत के लिए। तो यहाँ पे सब्जियां हम लोग खाते हैं, जैसे हमारा जो आहार है, आहार में सब्जियों का महत्वपूर्ण भूमिका है। खनिज लवण का ये एक अच्छा सोर्स है, स्रोत है। और इसके अलावा हम लोग प्रोटीन के सोर्स के रूप में, जैसे हम लोगों के दलहनीय फसलें हैं, जैसे मटर हो गया, बरबट्टी हो गया, फरास बीन हो गया, तो इसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। और हमारे ऐसे बोला जाता है कि हमारा जो वजन है शरीर का, उतना ग्राम हमें, अगर मेरा वजन 60 केजी है तो मुझे हर दिन 60 ग्राम प्रोटीन का आहार लेना चाहिए। कहीं ना कहीं हम लोगों का जो खाद्याभ्यास है वो प्रोटीन का उसमें कमी रह जाता है। तो ऐसे फसलें हमें ज्यादा खाने चाहिए। एक और हो गया विटामिन ए, जैसे जो भी सब्जी फसलों में हम अलग अलग रंग देखते हैं, जैसे कद्दू हो गया, गाजर हो गया, तो उसमें विटामिन ए का मात्रा ज्यादा पाया जाता है। फिर हम लोग देखते हैं लाल साग, चुलाई जो साग है, पालक है, उसमें विटामिन ए का मात्रा बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो ऐसे सब्जियों को खाने से हम लोगों के शरीर में बहुत अच्छा रहता है, हमारे आंखों के लिए, हमारे आईसाइट के लिए बहुत अच्छा रहता है।
0: बहुत ही अच्छा बात बताएं कि अगर किचन गार्डनिंग करते हैं तो हमारे सेहत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी, और उसके लिए हमें हर तरह का जानना होगा। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि उनका जो किचन गार्डनिंग के लिए सही जगह का चुनाव हम कैसे करेंगे और इसका तैयारी किस प्रकार से करेंगे, इसके बारे में बताएं।
3: बिल्कुल, देखिए हमारे घर के आसपास में जो जगह है उस जगह पे हमें ऐसा जगह चुनना चाहिए, चयन करना चाहिए जहां पे सुबह के धूप 6 से 8 घंटे के लिए आना चाहिए। जैसे कुछ जगह हमारा होता है दोपहर के बाद धूप आता हो तो वो जगह हमें चयन नहीं करना चाहिए। और दूसरा एक चीज हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोगों का जो जगह है वहां पे जलभराव का स्थिति ना हो, मतलब वो जगह थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर सब्जियां जलभराव के कारण खराब हो सकता है। और जगह चुनने के बाद हम लोग बोलते हैं कि एक परिवार में अगर 5 लोग हैं तो हमें 250 अगर मीटर स्क्वायर जगह है तो हम लोगों का जो सब्जी का जरूरत है हर दिन का तो वो पूरा हो सकता है। अभी हम अक्सर हमारे किसान या भाई बहन गलती करते हैं कि 250 मीटर स्क्वायर को हमें कैसे इस्तेमाल करना है, उसको छोटे छोटे प्लॉट बना करके बांट लेना है, तो वो नहीं करते। तो हम लोग इसीलिए रिकमेंड करते हैं कि 2 मीटर बाई 2 मीटर का छोटे छोटे प्लॉट बनाने से, और दोनों प्लॉट के बीच में अगर 1 फीट की जगह हम लोग छोड़ देंगे तो वो चलने के लिए भी हमारा फायदा होगा और उस जगह का मिट्टी दबेगा नहीं। और हम लोग बोलते हैं इसको कॉम्पैक्शन, मिट्टी बहुत ज्यादा अगर दब जाती है तो उसमें सब्जी फसलों का पैदावार बहुत कम हो जाता है। और एक और चीज हम लोग सुझाव देते हैं कि हम लोग अक्सर हमारे जो घर की बाड़ी है उसमें हम लोग फेंसिंग करते हैं, कोई कांटे वाला तार लगा देते हैं, कोई अलग अलग चीजों से फेंसिंग करते हैं, कोई दीवार बना देते हैं। तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे अगर हम लोग करोंदा या फिर सहजन का जो पेड़ है उसको अगर जो हम लगाएंगे तो वो एज अ फेंसिंग का भी तो काम करेगा, लेकिन वहां से हम लोगों को सहजन, कड़ी पत्ता या करोंदा से हमारे खाने के लिए सब्जियां भी मिल जाएगी, करोंदा से फल मिल जाएंगे। जो और करोंदा में इसीलिए बोल रहा हूं बार बार क्योंकि इसमें विटामिन सी का जो मात्रा है, विटामिन सी का मात्रा बहुत अधिक मात्रा में होता है, तो ये हमारे सेहत के लिए भी फायदेमंद होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब देखिए कि बहुत से हमारे जो किसान भाई बहन होते हैं कि पौधे लगाते हैं और पौधे तो लग जाता है फल, लेकिन फल नहीं आते हैं। इसका सबसे बड़ा जो मिट्टी में कमी है, क्या कौन सी कमी आती है और मिट्टी को कैसे हम लोग दमदार रूप से बना सकते हैं, पोषक तत्व तो कैसे उसमें उपजाऊ मिट्टी को कैसे हम कर सकते हैं, उसके बारे में बताएं।
3: बिल्कुल, देखिए वाड़ी की मिट्टी हमेशा उपजाऊ होना चाहिए, लेकिन कई बार होता है मिट्टी उपजाऊ होने के बाद भी कई बार हमारे फसल में, सब्जियों में फली नहीं लगती है। उसका कारण कई बार होता है अधिक तापमान, जैसे अभी देखेंगे अभी जून का महीना चल रहा है तो टमाटर का अगर पैदावार देखेंगे, पैदावार अभी कम हो जाता है। एक जगह पे अगर जो 8 से 9 फूल लग रहे हैं वहां पे 1 से 2 टमाटर लगेंगे, क्योंकि वो अधिक तापमान के कारण उसके फूल या फिर छोटे फल उसके झड़ जाते हैं, तो तापमान भी एक कारण हो सकता है। और एक और चीज हमें ध्यान रखना चाहिए, हमारे पौधों के लिए कुल 17 तरह के पोषक तत्व है। कुछ पोषक तत्व ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है, कुछ पोषक तत्व कम मात्रा में चाहिए होता है। अगर 17 पोषक तत्वों में से अगर बोरॉन नाम से जो पोषक तत्व है और पोटाशियम है, तो इनका अगर जो मात्रा मिट्टी में कम हो जाता है तो उस समय भी हम लोग देखते हैं पैदावार, खासकर जो फलीदार फसलें हैं उसका पैदावार कम हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग पहले ही बोलते हैं जब हम मिट्टी को तैयार कर रहे हैं तो उसमें हमें ज्यादा से ज्यादा गोबर की खाद अच्छे से सरी हुई गोबर की खाद डालना चाहिए। अगर गोबर की खाद उपलब्ध नहीं है तो हम लोग केंचुआ खाद उसमें डाल सकते हैं, और हम लोग इसको जैविक खाद बोलते हैं। गोबर खाद, केंचुआ खाद हो गया जैविक खाद। जैविक खाद का ये फायदा होता है रासायनिक खाद के हिसाब से कंपेरिजन में, यहाँ पे जो 17 तरह के पोषक तत्व है जैविक खाद में, लगभग लगभग 17 तरह के अलग अलग मात्रा में मिलता है। तो जैविक खाद हमें सबसे ज्यादा मात्रा में डालना चाहिए, और जरूरत जब पड़ेगा, अगर जो हमें लग रहा है कि इसमें फली कम लग रहे हैं, तो वहां पे हम लोग पोटाशियम, जैसे म्यूरेट ऑफ पोटाश, और बोरॉन के स्रोत के रूप में हम लोग बोरेक्स डाल सकते हैं, ताकि पैदावार ज्यादा हो।
0: जी, जी।
3: और

0: एक और चीज हमें मिट्टी को दमदार बनाने के लिए या तैयार करने के लिए हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे हम लोग देखते हैं हमारे बाग में चींटियों का और दीमक का सबसे ज्यादा दिक्कत होता
1: जी,
0: है
1: जी।
0: तो इसको अगर जो हमें जड़ से खत्म करना है तो हम लोग जब बीज बुआई करेंगे उससे पहले खेत जब जोत रहे हैं तैयार कर रहे हैं उसमें प्रति वर्ग मीटर में कम से कम 250 ग्राम नीम की खली अगर डालेंगे तो चींटी और दीमक का जो समस्या है उसको हम दूर कर सकते हैं।
1: जी जी, तो इस प्रकार से हम मिट्टी को दमदार बना सकते हैं और जो कमी होती है वो हम दूर करके अच्छा उपजाऊ बना सकते हैं और किचन गार्डनिंग करके अपना जो लाभ है वो ले सकते हैं। आगे डॉक्टर साहब ये जानना चाहेंगे कि सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि अगर हम फसल लगाते हैं तो सबसे पहले कि फसलों का चुनाव किस प्रकार से करना चाहिए और फसल चक्र अपनाने से क्या क्या फायदेमंद साबित होती है।
0: जी बिल्कुल, देखिए फसल का चुनाव हम लोग इस तरह से बोलते हैं, जैसे फसल के अलग अलग परिवार हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर देखेंगे कि टमाटर, मिर्ची, बैंगन और आलू एक ही परिवार के होते हैं, तो कुल मिला के देखा जाए तो इनके जो रोग है, इनके जो कीड़े मकोड़ों का समस्या है एक ही परिवार के अलग अलग फसलों में वो अधिक होता है। तो हम लोग जब फसल चक्र अपनाएंगे हमें दो चीजों का मूलत ध्यान रखना चाहिए ताकि फसलें हमारे एक ही परिवार के ना हो, और दूसरा चीज अगर जो जिस फसल में हम लोग उसका जड़ खा रहे हैं जैसे मूली हो गया, गाजर हो गया, चकुंदर हो गया, तो वैसे फसल लगाने के बाद हम लोग ऐसा फसल चुनेंगे जिसका हम फल खा रहे हैं। तो जड़ खाने वाले जो फसल है मतलब हम लोग खा रहे हैं वैसे फसल को बार बार और फलीदार फसल को भी बार बार एक ही हमारे जो छोटे छोटे हम प्लॉट बनाने का कह रहे हैं तो उसमें लगाना नहीं चाहिए। तो ये दोनों चीज को हमें ध्यान में रख के हमें फसल चक्र अपनाना चाहिए। और अगर देखा जाए हम लोग अगर महीनों के हिसाब से या हमारे जो मौसम है मौसम के हिसाब से अगर जो हम फसल देखेंगे तो जून जुलाई अभी का जो बरसाती मौसम आने वाला है तो अभी लगने के लिए भिंडी, लौकी, करेला, तुरई, कद्दू, बरबटी, मिर्च, टमाटर, बैंगन आदि फसलें बहुत अच्छे साबित होंगे।
1: जी जी,
0: और एक चीज का हमें ऐसे सीजन में ध्यान रखने का जरूरत है जैसे अभी जलभराव की स्थिति का संभावना है तो हमें फसल को हमेशा मेड बनाकर, मेड अर्थात जो रिज है, रिज बनाकर ही हमें बुआई करना चाहिए।
1: जी जी।
0: इसके बाद जो आएगी रबी मरसूम सर्दी के मौसम में सितंबर अक्टूबर में लगने वाली फसलों में से फूलगोभी, पत्ता गोभी जैसे ब्रोकली, मटर, आलू, मूली, गाजर, पालक, धनिया, मेथी, प्याज और लहसुन, ऐसी फसलें हम लोग उस समय लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि रबी या फिर सर्दी के मौसम में लगाने के लिए हम लोग यहाँ पे फसल को पहले पौधशाला में डालेंगे, पौधशाला में बीज डालने के बाद उसका पौधा तैयार कर लेंगे, पौधा को हम लोग डायरेक्टली हमारे जो प्लॉट है उस प्लॉट में रोपेंगे। और खरीफ के या फिर बरसाती मौसम में अभी के समय में हम लोग जैसे बड़े बीज वाले सब्जियां हैं भिंडी, लौकी, करेला आदि, इनको हम बीज को डायरेक्टली बुआई कर देंगे। और अगर जो गर्मी का सीजन देखा जाए जैसे हमारा फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये तीन महीने में हम लोग खीरा, तरबूज, खरबूजा, भिंडी और लाल साग की खेती बहुत आसानी से कर सकते हैं।
1: जी जी, तो ये हो गया कि फसलों को चुनाव और फसल चक्र से किस प्रकार से हमें जो सावधानी बरतनी है और कैसे करनी चाहिए, सभी बातों पर विशेष जानकारी दी। आगे आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो बुआई हम लोग करेंगे या हमारे किसान भाई बहन करेंगे तो पौधशाला बनाने का सही तरीका किस प्रकार से है और कैसे करना चाहिए।
0: देखिए हमारे किसान भाई कई बार करते हैं, हम लोग डायरेक्ट बीज की बुआई करते हैं लेकिन हम लोग बोलते हैं सीधी पंक्तियों में बुआई।
1: जी जी।
0: पंक्तियों में बुआई करने पर बहुत अच्छा फायदा होता है जिसको हम लाइन सोइंग बोलते हैं। हम लोग पहले क्या करते थे, हम लोग बीज को ऐसे ही खेत में तैयार किए गए खेत में छींट देते थे तो उससे क्या होता है, उससे पैदावार कुछ जगह पे बीज बहुत ज्यादा गिर जाता है तो घने पौधे निकलते हैं, कुछ जगह पे कम बीज गिरता है वहां पे पौधे तंदुरुस्त होते हैं तो, और जहां पे घने बीज गिरे हैं वहां पे पौधे कमजोर हो जाते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं पैदावार उसमें कम हो जाता है। तो हम लोगों को सबसे पहले तो जैसे भिंडी, फराज बीन, लौकी ऐसे बड़े बीज वाले सब्जियों को हमें हमेशा लाइन में या कैरियों में बुआई करना चाहिए, सीधी बुआई। और दूसरा चीज हम लोग कर सकते हैं जो छोटे बीज वाले सब्जियां हैं जैसे टमाटर हो गया, बैंगन हो गया, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली आदि, तो इनको हम लोग क्या करेंगे, इनको नर्सरी में पौधशाला बनाएंगे। अभी नर्सरी कैसे बनाएंगे, हम लोग दो तरह से नर्सरी बना सकते हैं। एक हो गया मिट्टी वाले नर्सरी जहां पे हम लोग 15 सेंटीमीटर या फिर 6 इंच ऊंची एक मिट्टी का बेड बनाएंगे, उस बेड पे 5 से 7.5 सेंटीमीटर के दूरी पर लाइन्स बनाएंगे और उसी लाइन में हम बीज की बुआई करेंगे। लेकिन इसमें क्या दिक्कत होता है, इसमें जब हम लोग पौधा 4 से 6 इंच का हो जाता है और उसमें

0: दो से तीन पत्तियां आ जाती हैं, उसको हम निकाल करके प्रतिरोपण करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं हमारे मूल खेत में या किचन गार्डन में, तो इसमें जड़ में क्षति पहुंचता है। यहाँ पे डैमेज होने के वजह से जो उत्तरजीविता है, लगाने के बाद हम लोग 100 पौधे लगाए, हम देखते हैं कि 80 पौधे ही जिंदा है, 70 जिंदा है, तो उत्तरजीविता कहीं ना कहीं कम हो जाता है। तो हम लोग इसको रोकने के लिए बोलते हैं एक प्लग ट्रे का कंसेप्ट है। प्लग ट्रे मतलब होता है जैसे घर पे हम अंडे के ट्रे इस्तेमाल करते हैं, ठीक वैसे ही प्लास्टिक का ट्रे मिलता है जिसमें छोटे छोटे कप्स लगे होते हैं, उसमें हम लोग मिट्टी और उसके आधा मात्रा में गोबर की खाद और उसके आधा मात्रा में अगर बालू हम मिक्स करके एक मिक्सचर तैयार करेंगे और वैसे प्रो ट्रे को भरेंगे और हर एक प्रो ट्रे के कप में एक एक बीज डालेंगे। तो इससे क्या होता है, बीज का जो अंकुरण का दर है वो बहुत अच्छा हो जाता है और जो एक समान उसमें मिट्टी मिलने के वजह से या मीडिया मिलने के वजह से जो उसका ग्रोथ है, उसका जो बढ़वार है वो बहुत अच्छा हो जाता है। हर एक पौधा एक समान वृद्धि होती है पौधों की।
1: डॉक्टर साहब, आपने वैज्ञानिक किचन गार्डनिंग के बारे में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी है और हमें उम्मीद है कि हमारे जो किसान भाई बहन है वैज्ञानिक किचन गार्डनिंग लगाएंगे और जो होने वाली जो फायदा उससे लाभ लेंगे। लेकिन आपसे ये कहना चाहेंगे, हमारे जो किसान भाई बहन है किचन गार्डनिंग के लिए अब क्या संदेश देना चाहेंगे, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसमें फायदे हैं कि नहीं, इसके बारे में क्या करना
0: जी? बिल्कुल, हमें किचन गार्डन करना चाहिए क्योंकि हमारा जो अभी जो भोजन है हम लोग कहीं ना कहीं फास्ट फूड की तरफ ज्यादा झुक जा रहे हैं, हमारे चाउमीन पे ज्यादा फोकस करते हैं, हम लोग मैगी ज्यादा खाते हैं, कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट हमारे शरीर में देखने को मिल रहा है। तो किचन गार्डन हम लगाएंगे, यहाँ पे हम लोगों का जो बिना कीटनाशक के हम लोग सब्जी उगाएंगे जहाँ पे कोई पेस्टिसाइड नहीं है, तो वो हमारे सेहत के लिए ज्यादा लाभकारी होगा। और दूसरा चीज, एक और किचन गार्डन में हम अक्सर गलती करते हैं कि हम लोगों के पास कुछ पौधे हैं जो लंबा चलता है, बहुवर्षजीवी पौधे हैं, जैसे सहजन हो गया, कड़ी पत्ता हो गया, तो ऐसे पौधों को हम लोग लगाएंगे किस तरफ? जैसे किचन गार्डन में 250 मीटर स्क्वायर का जगह है अपने पास, तो हम लोगों को हमेशा उत्तर या तो उत्तर पश्चिम दिशा में इसको लगाना चाहिए ताकि इसका जो छाव है ये छाव दूसरे पौधों को नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि पौधे का भोजन बनने के लिए धूप सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये चीज करना चाहिए। और किचन गार्डन में हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमें जो जैविक तौर तरीके है कीड़े मकोड़ों के रोकने के लिए, तो हमें उसको अपनाना चाहिए क्योंकि ये हम खुद घर पे इस्तेमाल के लिए, खाने के लिए उगा रहे हैं, तो हमें कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
1: तो डॉक्टर साहब जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और वैज्ञानिक किचन गार्डनिंग के बारे में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी और अपना बेशकीमती समय दिए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, नमस्कार, जोहार।
2: हाँ, तो देखा संतोष भाई, अभी हमें सुना लिया कि किचन गार्डनिंग के खेती से हम कैसे लाभ उठा सको ये, और एक बारे में जानकारी देवे थलथिन वो हलथिन
1: साहेब पाल और हमीन से बातचीत कर रहे थे
2: वो हलथिन संतोष कुमार दास। तब देखा कि अब इनके कार्यक्रम के अगर घड़ी देने देखो ये हमीन तो कार्यक्रम जैसे हमीन के अंत होने वाला है, तो कहे ना अंत में हमीन जो है से एक प्यारा सा गीत सुनो ये।
1: बिल्कुल।

0: हाँ तो देखा संतोष भाई, हमें जैसे कार्यक्रम के कहा कि आखिरी में एगो हम बढ़िया गीत भी सुन लिए, और देखा कि एक गीत के साथ हम ये कार्यक्रम जो है से खेती बाड़ी से जाके भी बेरा हो रहा है। तो जाते जाते किसान भाई बहन सबसे एक बात जरूर कहबे संतोष भाई कि अपन खेती बाड़ी पर भी ध्यान दथिन, और अपन घर में जो पशु है ओकरो पर भी ध्यान दथिन, और अपने आप पर भी ध्यान दथिन।
1: और देखा बरसात भी अब अच्छा हो चुके है और अपन खेती बाड़ी में लग चुके थे किसान भाई बहन, तो अपन सेहत के साथ साथ खेती बाड़ी पर भी ध्यान देते हैं, अपनी आमदनी अच्छा खासा होते। तो देखा कि अब घड़ी देने देखो ये तो कार्यक्रम खेती बाड़ी से हमने के विदा लिए एक समय आ चुके है। तो कार्यक्रम खेती बाड़ी से अपन भाई संतोष के
0: और हमरा श्याम के
1: अनुमति देथिन।
0: नमस्कार।

श्रोता भी सुन रहे थे ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम खेती बारी FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे अगले कार्यक्रम के लिए कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। दुमका सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश को स्पीड पोस्ट से बंगला भाषा में ये धमकी भरी चिट्ठी भेजी गई थी। पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खिरवार ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार ये पत्र पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्धमान से भेजा गया है। हजारीबाग पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बरही थाना क्षेत्र के रसोई धमना गांव से 47 बोरा डोडा बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर हुई इस छापेमारी में एक बंद कमरे से कुल 697 किलोग्राम डोडा जब्त किया गया है। धनबाद रेलवे स्टेशन परिसर में पार्किंग शुल्क के नाम पर अवैध वसूली और दुर्व्यवहार के विरोध में झारखंड ई रिक्शा संघ ने आज डीआरएम कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। टोटो चालकों ने सांकेतिक चक्का जाम कर रेलवे प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। देवघर में राजकीय श्रावणी मेला के दौरान मेला क्षेत्र में घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया की अध्यक्षता में आज हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी होटलों, ढाबों और दुकानों में केवल 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर का ही इस्तेमाल होगा। हालांकि श्रद्धालु निजी उपयोग के लिए 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर रख सकेंगे। लोहरदगा जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा आज सदर प्रखंड कार्यालय और बैंक ऑफ इंडिया परिसर में वरिष्ठ जन सहायता एवं सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया गया। 90 दिवसीय विशेष कानूनी जागरूकता अभियान के तहत शुरू हुए इस केंद्र के माध्यम से बुजुर्गों को पेंशन, जमीन और बैंक संबंधी कार्यों में मदद दी गई। हजारीबाग के केबी विमेंस कॉलेज परिसर स्थित कल्याण विभाग के आदिवासी छात्रावास में 200 से अधिक छात्राएं पेयजल और सुरक्षा की घोर किल्लत से जूझ रही हैं। छात्राओं का आरोप है कि चापानल से दूषित पानी आ रहा है और चार दीवारी छोटी होने से वे असुरक्षित महसूस कर रही हैं। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, जी पे इसे युवा साथियों को संबोधित हमारा कार्यक्रम युववाणी

युवा साथियों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम युवा वाणी में। मैं हूं सूरज, कीजिए अभिवादन स्वीकार, नमस्कार। युवा साथियों, कहते हैं ना कि खुद पर किसी भी चीज को कभी हावी नहीं होने देना चाहिए, ध्यान देने वाली बात है और गंभीरता से सुनने और समझने की चीज है। हमें किसी भी चीज को अपने ऊपर कभी भी हावी नहीं होने देना चाहिए, न जीत को न हार को। अगर जीवन में जीत हावी हो जाए तो लोग रास्ते गलत चल पड़ते हैं, और हार हावी हो जाए तो जीवन अंधेरे की ओर बढ़ने लगती है, जिंदगी अंधेरे की ओर बढ़ने लगती है। तो हमें अपने ऊपर किसी भी चीज को हावी नहीं होने देना चाहिए। थोड़ा स्मृतियों की ओर लौटते हैं और याद करते हैं कि हमारी अपनी जिंदगी में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम पर हावी रही और उसका कितना फायदा या कितना नुकसान हमें हुआ है। तो आप देखेंगे, चाहे वो सफलता हावी हो जाए, चाहे वो असफलता हावी हो जाए, चाहे संघर्ष हावी हो जाए, जीवन की कोई भी परिस्थिति अगर हमारे ऊपर हावी हो जाती है तो उसका हम नुकसान ही उठाते हैं, और बाद में पता चलता है कि ये चीजें हमारे ऊपर हावी थी। सफलता अगर हावी हो जाती है तो भी कई चीजें बिगड़ने लगती हैं, रिश्तों की बनावट, बुनावट, आपसी संबंध, बहुत सारी चीजें इससे प्रभावित हो जाती है। तो कभी भी किसी भी चीज को हावी नहीं होने देना चाहिए। कोशिश हमारी यही होनी चाहिए, चीजें तुरंत एकदम से नहीं बदलती है, धीरे धीरे जो चीजें अभ्यास में है वो धीरे धीरे बदलती है, और बदलते बदलते ही बदलती है। पहले थोड़ी बदलती है, फिर थोड़ी और बदलती है, और इस तरह ये चीजें बदलती चली जाती हैं। और अगर हमारा संकल्प सही है, मजबूत है, तो ये सारी चीजें बदलती भी हैं। युवा साथियों, लोग कहते भी हैं कि हमें उस तरह से रहना चाहिए जिस तरह से तलवार म्यान में रहती है, दोनों एक साथ रहती है और सुरक्षित भी रहती है। एक का कार्य है दूसरे का पूरक बनकर रहना। जो व्यक्ति परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है, वास्तव में वही विजेता है। सफलता असफलता इसका उतना मायने नहीं है जितना ये सारी चीजें हमारे ऊपर हावी हो जाती है। मान लेते हैं आज की सफलता, आज की असफलता भविष्य की असफलता भी बन सकती है, आज की असफलता भविष्य की सफलता भी बन सकती है। अब देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं, लोग कई बार अपने जो प्रयास है उसमें हार जाते हैं, वो तो धीरे धीरे फिर वो अपना मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं और फिर वो सफल भी हो जाते हैं। तो आज की हार का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कल हम जीत

नहीं सकते हैं और लोग जीतते भी हैं। तो इन संकल्पों को हमें मजबूत करना है कि परिस्थितियों को कभी भी हम अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। डिप्रेशन का एक कारण परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी होने देना भी है। धीरे धीरे यह विकराल रूप धारण करने लगता है और एक ऐसा वक्त आता है, ऐसा लगता है कि ये जीवन व्यर्थ है और लोग गलत रास्ते को चुन लेते हैं। बहुत सारे लोगों की कहानियां सुने होंगे जो वो अपने जीवन को ही समाप्त कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या, तो इन आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्तियों को भी समझने की जरूरत है। बहुत सारी चीजों की जरूरत है। हम तुलनात्मक रूप से किसी से कम हो सकते हैं, आज कम है, कल तुलनात्मक रूप से आगे भी हो सकते हैं। तो आज के परिस्थितियों का आकलन हम पूरे जीवन से नहीं कर सकते हैं, पूरी जिंदगी से नहीं कर सकते हैं। आज की परिस्थितियां वो और परिस्थितियां, सबसे बड़ी बात यह है कि जो संयोग आज हमारे साथ आकर जुटा है वो संयोग अस्थाई है ऐसा नहीं है। ये संयोग बदलते हैं, संयोग का स्वभाव ही बदलने वाला होता है। तो हमें जो चीजें बदल जानी है उसे इतना ऊपर हावी क्यों होने दें, इस बात को हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। ऐसे भी दुनिया में ऐसी अनेक कहानियां हैं जब इंसान भागते भागते पूरा जीवन खत्म कर देता है, उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। ऐसी कई कहानियां आपने सुनी होगी, लोक कथाओं में सुनी होगी, जिंदगी से लाई गई साहित्यिक कहानियों में आपने सारी चीजें देखी होंगी कि लोग भागते भागते जीवन को व्यर्थ गंवा देते हैं। तो उसे कुछ भी हासिल नहीं होता है जो भागता रहता है, और जीवन एक पीड़ादायक अंत में बदल जाता है। फिर ये प्रश्न उठता है कि हम जीवन जिए कैसे। जीवन जीने के लिए सबसे जरूरी चीज है, वो है स्थिरता। मन की स्थिरता, बुद्धि की स्थिरता, इन दोनों चीजों का बहुत ही महत्व है। अगर मन स्थिर है, बुद्धि हमारी सम्यक है, मतलब कहने का अर्थ है सुलटी बुद्धि है, उल्टी बुद्धि नहीं है, सुलटी बुद्धि है, तो हम बहुत सी चीजों को ग्रहण कर सकते हैं। बहुत सारे मित्रों की कहानियां आप देखते होंगे कि बड़े प्रतिभावान हैं, लेकिन वो भीतर से वो स्थिर नहीं है, जिसके कारण वो अपनी प्रतिभा का, अपनी योग्यता का, अपनी काबिलियत का सही समय पर सही उपयोग नहीं कर पाते हैं, और जिसके कारण उन्हें असफलता हाथ लगती है। तो कभी भी हमें यह ध्यान रखना है कि मन का ध्यान रखना है, अपनी बुद्धि का ध्यान रखना है। हम दूसरों का ध्यान रखते हैं, दूसरों को बहुत देखते हैं, दूसरे पर टिप्पणी भी बहुत सारी करते हैं, लेकिन हमें खुद के मन की देखभाल करने की जरूरत है, बुद्धि की देखभाल करने की जरूरत है। अब इसके लिए जरूरी है कि हम कोई एक सदमार्ग चुने, क्योंकि एक बात तय है कि जो सदमार्ग होता है वही रास्ता मंजिल तक जाता है, बाकी शेष रास्ते कहीं ना कहीं बंद हो जाते हैं। तो हमें एक सदमार्ग चुनना चाहिए, ऐसा मार्ग बिल्कुल नहीं चुने जो आगे चलकर बंद हो जाता है। सबसे पहले तो अपने जीवन में एक लक्ष्य तय कीजिए और उस लक्ष्य से भटके नहीं। लक्ष्य तय कीजिए, उस लक्ष्य से भटके नहीं। जीवन में ईमानदारी का प्रयास कीजिए। देखिए, कोई हम एक लक्ष्य अगर हम तय करते हैं तो उस लक्ष्य को हम कई छोटे छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं। इसका एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है। जैसे मान लीजिए, इसको इस उदाहरण से हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम कोई कार्य हम चाहते हैं कि वो करें और वो कार्य पूरा नहीं हो पाता है, तो कई बार ये कार्य बहुत बड़ा होता है तो मन उसके लिए तैयार नहीं होता है, बुद्धि उसके लिए बहुत सकारात्मक टिप्पणी नहीं देती है। तो हमें उस कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना चाहिए। एक व्यक्ति की कहानी है, वो योग और ये एक्सरसाइज वगैरह में उसका मन तो होता था लेकिन वो कर नहीं पाता था। फिर लगता था कि इतनी सारी चीजें होना आसान नहीं। फिर उसने तय किया कि हर एक आसन वो 30 या 40 सेकंड का करेगा। अब 30 या 40 सेकंड करना है तो मन उसके लिए तुरंत तैयार हो जाता है। ऐसे करते करते उसके जीवन में योग और एक्सरसाइज जो है, वो जो व्यायाम है, वो उसके जीवन का हिस्सा बन गया। जब चीजें छोटी होती है तो मन उसके लिए तैयार हो जाता है। तो अपने लक्ष्य को, लक्ष्य बड़ा जरूर रखें लेकिन उसे छोटे छोटे हिस्सों में जरूर बांटें, और उसके बाद इससे भटके नहीं। जीवन में ईमानदार प्रयास कीजिए, संघर्ष की क्षमता बढ़ाइए, अच्छी चीजें पढ़िए। जमाना अच्छे लोगों का नहीं है, इस वाक्य को जीवन से निकाल दीजिए। जमाना अच्छा ही है और हर किसी को जीवन में अच्छाई ही चाहिए, इसलिए इस वाक्य को अपने जीवन से निकाल देना चाहिए कि जमाना
अच्छे लोगों का नहीं है, ये अच्छे लोगों का ही जमाना है। हर किसी को अच्छे व्यक्ति की जरूरत होती है, हर किसी व्यक्ति को अच्छी परिस्थितियों की जरूरत होती है, अच्छा

दवाइयों की जरूरत आज पहले से ज्यादा है। इसलिए इस संकल्प को अपने भीतर बड़ी मजबूती से बिठा लेना चाहिए कि आज अच्छाई का ही जमाना है और अच्छे लोगों का, अच्छे रास्तों का हमें अवलंबन ही लेना है, जो रास्ते कभी बंद ना हो। बहरहाल देखिए युवा साथी, बातचीत थोड़ी लंबी हो गई। अब आज के इस प्रोग्राम में थोड़ी बातचीत हम डिजिटल इंडिया का भी करना चाहते हैं। जैसा देख रहे हैं हम सभी कि भारत ने डिजिटल दुनिया को जो अपनाया है उससे कई तरह के बदलाव आज देश में हुए हैं और जीवन पहले से ज़्यादा सुगम हुआ है। डिजिटल होने का असर क्या हुआ है कि हर एक चीज में उसके स्वरूप में बदलाव आया है। जैसे आज हम बाज़ार जाते हैं तो बाज़ार में हमारे पॉकेट में जो हमारा स्मार्टफोन है उससे हम पेमेंट करते हैं। और कई बार ऐसा होता था रुपया गिनकर हम लेकर जाते थे, कभी खुला ना हो तो उसकी परेशानी होती थी। तो बहुत सारी चीज़ों में बदलाव है, बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई हैं। किसी को ढूंढना है, कुछ तथ्य इकट्ठा करना, आप याद रखते होंगे बहुत सारे लोग डिक्शनरी रखते थे शब्दों का अर्थ जानने और समझने के लिए, हिंदी के लिए, अंग्रेजी के लिए, दूसरी भाषाओं का। अब सब कुछ आपके भीतर एक स्मार्टफोन के भीतर है और आसानी से चीज़ें पहुंच रही हैं। उसके बाद बहुत सारी चीज़ों में, जैसे हम कहीं का टिकट कटाना हो तो हम पहले रेलवे स्टेशन जाते थे या जहां हमें टिकट मिलता है वहां जाते थे, तो अब हम अपने घर पर बैठे वो कर सकते हैं। कहीं हम ऑनलाइन फॉर्म भरना होता था तो उसके लिए हमें पूरा समय देना होता था, आज हम अपने घर में बैठ कर सकते हैं। बहुत सारी जानकारियाँ हैं रिजल्ट देखने के लिए, आपको याद होगा बहुत सारे लोग जो पुरानी पीढ़ी के हैं वो अखबारों का इंतजार करते थे कि रिजल्ट आएगा, तो अखबारों में वो रिजल्ट छपा होता था तो सारी चीज़ें देखेंगे। समाचार पत्रों में विज्ञापन निकलता था या विज्ञापन के लिए विज्ञापन समाचार प्रकाशित होते थे, तो उन सब चीज़ों का एक लंबे समय तक लोग इंतजार करते थे। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे डिजिटल हुई और जीवन पहले से ज़्यादा सुगम हुआ, तो और इसका एक बड़ा फायदा समाज को मिल भी रहा है। तो इस चीज़ की भी चर्चा हम सब करना चाह रहे थे कि डिजिटल जो दुनिया है उसका कितना प्रभाव समाज पर पड़ा, समाज की प्रगति में इसका कितना प्रभाव पड़ा, तो वो ढेर सारा प्रभाव इसका समाज की प्रगति पर पड़ा है। तो इस बातचीत को श्रोताओं थोड़ी देर के लिए देते हैं, फिर हम एक खूबसूरत गीत सुनते हैं, उसके बाद इस प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: पुलिस से?
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
3: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
1: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: और युवा साथियों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। एक भेंट वार्ता आज आपके लिए लेकर आए हैं कि व्यक्तित्व का भी निर्माण करता है संगीत, और इस विषय पर जानकारी दे रही हैं संयुक्ता कुमारी, और इनसे बातचीत की है रानी सहाय ने।
4: मुलाकात करवाने जा रहे हैं सरस्वती शिशु विद्या मंदिर की शिक्षिका संयुक्ता कुमारी जी से, जो हमें जानकारी देंगी व्यक्तित्व का भी निर्माण करता है संगीत। तो सबसे पहले संयुक्ता जी, आपका इस कार्यक्रम में हम करते हैं बहुत बहुत स्वागत और कहते हैं नमस्कार।
5: नमस्कार
4: संयुक्ता जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप रहने वाली कहाँ की हैं?
5: मैं बिहार के सारण जिले की रहने वाली हूँ।
4: आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई?
5: मेरी प्रारंभिक शिक्षा सारण जिले से में ही हुई है। मैंने वहीं से अपना पूरा पढ़ाई कंप्लीट किया है। मैंने स्नातक राजनीति शास्त्र में किया है, साथ ही मैंने संगीत की दो विधाओं में शिक्षा प्राप्त की है। पहला, मैंने गायन में भास्कर तक की शिक्षा प्राप्त की है, यानी मैंने स्नातक उत्तर किया हुआ है गायन में, और साथ ही मैंने शास्त्रीय नृत्य कथक में प्रभाकर किया हुआ है, यानी स्नातक तक की शिक्षा प्राप्त की है मैंने कथक नृत्य से।
4: अच्छा, तो आपकी रुचि कब से हुई संगीत के क्षेत्र में?
5: रुचि तो बचपन से ही थी। माँ बताती है कि जब मैं कुछ धुन सुनती थी तो थिरकती थी। तो जब मैं 5 क्लास में गई तो मेरे पिताजी ने मुझे संगीत विद्यालय में डाल दिया। मेरा दाखिला एक संगीत संस्थान में कराया गया। तो लगभग मेरी उम्र 10 साल या 11 साल की हुई होगी, तब से मैं संगीत की शिक्षा प्राप्त कर रही हूँ।
4: ये बहुत अच्छी

0: थे कि आप बचपन से ही सीख रही हैं संगीत। आपको अभी कैसा अनुभव होता है संयुक्ता जी संगीत सिखाते समय?
1: बहुत अच्छी अनुभूति होती है, एक अच्छा एहसास होता है। ऐसा लगता है कि नहीं, संगीत जो है सिखाने के बाद बहुत मन को शांति मिलती है। आज के समय में आत्मा हृदय को जो शांति देने का जो सबसे सरल और सामान्य साधन है वो संगीत ही है। जितना आनंद सीखने में आता था उतना ही आनंद आज हमको सिखाने में भी आता है।
0: चलिए, ये भी बहुत ही अच्छी बात है कि आपको बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है बच्चों को सिखाने में, बहुत बड़ी बात है। आप सुनीता जी ये हमें बताइए कि भाव संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों में अंतर क्या है?
1: शास्त्रीय संगीत का एक नियमित शास्त्र होता है तथा शास्त्र के अनुसार गायन अथवा वादन होता है। आसान भाषा में शास्त्रीय संगीत उसे कहते हैं जिसमें नियमित शास्त्र होता है, जिनके नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। यदि हम नियमों का पालन नहीं करते हैं तो राग हानि होती है। अब हम भाव संगीत की बात करें, भाव संगीत भी शास्त्रीय संगीत का ही अंग है, लेकिन इस यहाँ पे रागों की तरह कठोर अनुशासन नहीं होता है। इसको लाइट म्यूजिक भी कहते हैं। इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य होता है सुंदर संगीत बने, कानों को प्रिय लगे।
0: आप संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, तो ये हमें बताइए कि जो भी संगीत सीखना चाहते हैं, इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो वो विद्यार्थी अपना कितना समय दे इसमें?
1: जो व्यक्ति संगीत में अपना कैरियर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, उनमें संगीत के प्रति सच्चा प्रेम
0: जी,
1: संगीत का बोध अर्थात लय और ताल की पहचान होनी चाहिए।
0: जी।
1: संगीत तो अनादि है, नाद से उत्पन्न है, ये ब्रह्मनाद है। तो हमारे अंदर क्या एक आत्मविश्वास होना चाहिए तथा सृजनात्मक योग्यता भी हमारे अंदर जरूरी है। संगीत के क्षेत्र में कभी कभी हमें आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ता है, तो उन आलोचनाओं को सही भावना में स्वीकार करने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। वैसे तो संगीत की शिक्षा बाल्यकाल से प्रारंभ कर देनी चाहिए, लेकिन इसका जो बुनियादी है वो प्लस टू के बाद ही है। प्लस टू के बाद स्नातक में हम संगीत विषय चुनकर फिर स्नातकोत्तर कर सकते हैं, फिर उसके आगे हम उसमें बढ़ते चले जाएंगे। उसके अलावा प्रभाकर होता है, भास्कर होता है, अलग अलग संस्थान के अलग अलग कोर्सेज होते हैं, तो उनके द्वारा भी हम संगीत में अपना कैरियर बना सकते हैं।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात कही आपने। संगीत को अगर परिभाषित करने के लिए कहा जाए तो आप संगीत को संक्षिप्त रूप में कैसे परिभाषित करेंगी संयुक्ता जी?
1: गीतम वाद्यम तथा नृत्यम, त्रय संगीत्य मुच्यते, अर्थात गायन वादन एवं नृत्य, इन तीनों कलाओं के समावेश को ही संगीत कहते हैं। यह स्वर ताल लय उत्तम शब्द उच्चारण हाव भाव और मुद्रा सहित होना चाहिए। संगीत वह उत्कृष्ट कला है, ललित कला है, इसको कला नहीं हम ललित कला कहेंगे, जिसका आधार नाद अथवा आवाज है, जिससे हम अपने भावों को स्वर और लय के माध्यम से प्रकट करते हैं। ऐसे तो संगीत को परिभाषित करने बैठे तो हमारा शब्द कोश कम पड़ जाए, ये सूर्य को दिया दिखाने के समान है। लेकिन साधना है, संगीत क्या है? एक साधना है, ये हमारे हृदय के भावों को प्रकट करता है, सबके सामने लाता है, इसलिए संगीत को हम हृदय की भाषा भी कहते हैं।
0: संयुक्ता जी, कौन से ईयर में कौन कौन सा राग सीखना जरूरी होता है, इसके बारे में आप कुछ बताएंगी?
1: जी बिल्कुल, पहले तो संगीत एक ललित कला है जिसका अपना एक निश्चित शास्त्र है
0: जी।
1: वह मौखिक एवं प्रदर्शनात्मक होती हुई भी एक विद्या की तरह प्राचीन समय से अध्ययन और अध्यापन का विषय रहा है, सीखने और सिखाने का क्रम चल रहा है, ये प्राचीन समय से है। तो लेकिन इसका एक शास्त्र है, तो इसके अनुसार हम प्रवेशिका में सबसे पहले बच्चों का प्रवेश लेते हैं। प्रवेशिका में सबसे पहले उसको हम अलंकार सिखाते हैं
0: जी।
1: वो अलंकार सीखता है, सरल अलंकार से शुरू करते हैं, हम सरल अलंकार सिखाते हैं, अर्ध जटिल अलंकार, उसके बाद जटिल अलंकार, इस तरह से उसको बढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर में जब बच्चे आते हैं तो उनको संपूर्ण जाति के रागों को सिखाया जाता है। तो हम बिलावल से शुरू करते हैं, बेसिकली मैं तो बिलावल से ही शुरू करती हूँ
0: जी।
1: उसके बाद बिलावल हुआ, यमन, काफी, विहाग, भैरव, ये फर्स्ट ईयर में कुछ बेसिक रागों को सिखाया जाता है। और उसके बाद सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर में लगभग मिलते जुलते राग है। सेकेंड ईयर में हम

0: बागेश्वरी, दुर्गा, असावड़ी ये सब रागों को सिखाते हैं तथा तबले के साथ संगत करने की भी शुरुआत हम लोग यहीं से कर देते हैं। बच्चे गीत के साथ ताल दें, हाथों से ताली दें और ताल को समझें, बिल्कुल बहुत जरूरी है। और थर्ड ईयर में आते जब बच्चे आते हैं तो राग देश बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा राग है। राग देश पे कई भजन, बहुत सारे गीत गाए जाते हैं। तो राग देश, राग केदार, राग मालकोस ये सब रागों को सिखाया जाता है। और इस यहाँ से थाट पे बेसिस जो रागे हैं उनको हम लोग बहुत सिखाते हैं। फोर्थ ईयर में आने के बाद राग बहार, ये मेरी पसंदीदा राग है, मुझे बहुत पसंद है राग बहार, मारवा, शंकरा, देशकार। फिर फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर में हम राग पुड़िया, विभास राग, तोरी राग, राग छायानट, बसंत, ये फिफ्थ ईयर सिक्स्थ ईयर के राग हैं। देसी मालगुंजी संगीत तो अनंत अथाह है, ये तो इसमें आदमी जितना डूबे डूबते जाए इसका तो अभी तक अंत ही नहीं कि हम ऐसा कोई कहे कि हमने पूर्ण संगीत सीख लिया
1: जी,
0: नहीं
1: जी।
0: हम जितना सीखे ऐसा लगता है कि अभी कम ही है
1: जी। चलिए आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। एक क्वेश्चन और भी हम आपसे करना चाहेंगे संयुक्ता जी।
2: संयुक्ता जी, संगीत में करियर बनाने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए?
0: न्यूनतम योग्यता हमारा मतलब स्नातक होना जरूरी है। संगीत से स्नातक है तो हम संगीत में शिक्षक बन सकते हैं। तो स्नातक करने के लिए प्लस टू के बाद हम अपने तीन विषय में, एक विषय ऐच्छिक विषय में संगीत को रख सकते हैं। तो हम केंद्रीय विद्यालय, निजी विद्यालयों में संगीत के शिक्षक बन सकते हैं। उसके अलावा इसमें स्नातक, ये स्नातकोत्तर, ये सारे कोर्सेज उपलब्ध हैं, बहुत सारे कोर्सेज उपलब्ध हैं जिनको हम करके संगीत शिक्षक बन सकते हैं।
2: संगीत के क्षेत्र में क्या शोध संभव है, इस बारे में भी आप कुछ कहेंगे?
0: जी हाँ, संगीत के क्षेत्र में शोध बिल्कुल संभव है। प्राचीन समय से ही संगीत में शोध होते चला आ रहा है। और प्राचीन काल में बात करें तो पंडित अहोबल जी ने वीणा के सात तार पे सात शुद्ध और पांच विकृत स्वरों का स्थापना की, यही उनका शोध का ही परिणाम था। म्यूजिक थेरेपी, जिससे में म्यूजिक के द्वारा, संगीत के द्वारा उपचार किया जाता है, चिकित्सा किया जाता है। इसमें जैसे बीमारी है उसके आधार पर रागों को सुनाकर उसका उपचार किया जा रहा है, ये भी एक शोध का ही विषय है। निरंतर लगातार इस पर शोध किए जा रहे हैं और सफल शोध हैं कि मानसिक रोगों का सबसे अच्छा इलाज संगीत है। संगीत से हम मनोचिकित्सक को बहुत अच्छे से उसका ये कर सकते हैं। तो संगीत में शोध बिल्कुल संभव है और शोध हो रहा है, शोध होता।
3: व्यक्तित्व का भी निर्माण करता है संगीत। अभी आप सुन रहे थे संयुक्ता कुमारी से ली गई ये बातचीत, इनसे बातचीत की थी रानी सहाय ने। और इसी के साथ ही श्रोताओं, देखिए कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। तो युवानी कार्यक्रम में इस संकल्प के साथ विदा लेते हैं कि किसी भी परिस्थिति को अपने ऊपर हम हावी नहीं होने देंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सूरज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

श्रोता भी सुन रहे थे युवा साथियों को संबोधित हमारा कार्यक्रम युववाणी एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, कुछ ही पलों में हम सुनेंगे अगला कार्यक्रम फिल्म संगीत। बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए आनंद उठाते हैं फिल्मों से लिए गए कुछ गीतों का। कार्यक्रम है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म है मैंने प्यार किया।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

मैंने प्यार किया फिल्म में आप पहले सुन रहे थे एसपी बाला सुब्रमण्यम को, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम हम बता दें, इसे हमने लिया है दीवाना से, कुमार शानू और साधना सरगम की आवाज़ में।

साजन का घर अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और सुरेश वाडकर की आवाज में। कार्यक्रम का अंतिम गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म का नाम है नागमणि और इस खूबसूरत से गीत को आवाज दी है अनुराधा पौडवाल।

अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर की गाए इसी खूबसूरत से गाने के साथ ही फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। रेडियो के अपने साथी सूरज को दीजिए अनुमति। नमस्कार। श्रोता भी सुन रहे थे फिल्म संगीत FM 102.1 MHz पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, कुछ ही पलों में हम आपको शामिल करेंगे अपने रांची केंद्र के प्रसारण में, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल। बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड कैबिनेट की बैठक में राज्य में विकसित भारत जी रामजी अधिनियम लागू करने को मिली नीतिगत मंजूरी। कुल 27 प्रस्तावों को मिली स्वीकृति। SIR के तहत राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने स्वयं भरा मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रपत्र। राज्य के पात्र मतदाताओं से समय पर सत्यापन कराने की अपील। हजारीबाग ओपन जेल मामले में हाईकोर्ट सख्त। राज्य सरकार को 20 जुलाई तक विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का दिया निर्देश। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ बने PM सूर्य घर योजना के लाभुक। रांची स्थित आवास पर लगवाया सोलर पैनल। नागरिकों से योजना का लाभ उठाने का किया आह्वान। और ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने प्रखंड विकास पदाधिकारियों को सौंपे 25 नए वाहन। सुदूर क्षेत्रों में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में आएगी तेजी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में विकसित भारत जी रामजी अधिनियम

0: 2025 को राज्य में लागू करने की नीतिगत मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट की बैठक में कुल 27 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक के बाद कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने फैसलों की जानकारी दी।
1: प्रस्ताव संख्या 7 है ग्रामीण विकास विभाग से, झारखंड राज्य में वीबीजी रामजी योजना को लागू करने की नीतिगत स्वीकृति दी गई और साथ ही साथ ग्रामीण विकास विभाग को निर्देश दिया गया कि पीवीटीजी समूह के लिए अतिरिक्त रोजगार का प्रावधान करेंगे।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने तथा गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जी राम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे हैं, पहले साल ही विकसित भारत जी राम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
0: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अपने अपने प्रपत्र भरकर जमा किए। लोकभवन में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार की मौजूदगी में राज्यपाल ने, जबकि आवासीय कार्यालय में मुख्यमंत्री और विधायक कल्पना सोरेन ने प्रपत्र भरे। दोनों शीर्ष नेताओं ने राज्य के सभी पात्र नागरिकों से समय पर मतदाता सूची का सत्यापन कराने की अपील की। राज्य में जारी मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों यानी FAQ का दूसरा संस्करण जारी किया है। इसमें प्रवासियों और छात्रों के लिए नियम स्पष्ट किए हैं। राज्य से बाहर रहने वाले प्रवासी मजदूर और छात्र अब वोटर्स पोर्टल पर ऑनलाइन अपना गणना प्रपत्र भर सकेंगे। जमशेदपुर हत्याकांड को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर बड़ा हमला बोला है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने आज रांची में संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर आरोप लगाया कि पुलिस इस मामले की लीपापोती करने के लिए मनगढ़ंत कहानी बना रही है। उन्होंने घटना के वक्त मौजूद पुलिस कर्मियों व असली दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।
3: सरकार के अनुमति के बाद ही वहां पर बाढ़ का संचालन किया जा रहा है। इस प्रकार से फर्जी मुकदमा करके जनता के बीच में जो लफहमी पैदा करना पुलिस प्रशासन की झारखंड मालूम हो गया, दोनों माँ बेटी तनाव भरी जिंदगी जीने का मजबूर हो गई। इसलिए केस को दबाने के लिए मनगढ़ंत आरोप गठित करने का काम न करें, निर्दोष व्यक्ति को सजा देने का काम प्रशासन न करे।
0: आजसू महिला मोर्चा ने आगामी 4 जुलाई को आयोजित होने वाले अखिल झारखंड महिला अधिवेशन को लेकर आज रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये अधिवेशन खेलगांव स्थित इंडोर स्टेडियम में सुबह 10 बजे से आयोजित होगा, जिसमें राज्य भर से हजारों महिलाएं शामिल होंगी। महिला सशक्तिकरण और संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से होने वाले इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुदेश महतो होंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने आज 3 अलग अलग मामलों पर अहम निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने हजारीबाग ओपन जेल मामले में राज्य सरकार को आगामी 20 जुलाई तक स्टेटस रिपोर्ट सौंपने को कहा है। वहीं बोकारो की लापता नाबालिग मामले में त्वरित कार्रवाई के लिए सीबीआई को पक्षकार बनाया गया है। एक अन्य फैसले में कोर्ट ने गढ़वा उपायुक्त को वर्ष 1992 में मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ जल्द से जल्द देने का कड़ा निर्देश दिया है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा YouTube चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।

0: रांची के सांसद और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ आज से प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभुक बन गए हैं। उन्होंने रांची स्थित अपने आवास पर 10 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाया। इस अवसर पर उन्होंने नागरिकों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की।
1: हम जहां एक तरफ बिजली जनरेट करेंगे, दूसरी ओर हम कितने पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए इतना फायदा दे रहे हैं। मैं झारखंड की जनता से, विशेषकर जितने सरकारी राज्य सरकार के कार्यालय, केंद्र सरकार के कार्यालय, जितने और आम लोग, वो लोग हॉस्पिटल हैं, वो सब सोलर पैनल लगवाएं ताकि बिजली की खपत कम हो, पर्यावरण को संरक्षण भी हो और डीजल पेट्रोल और कोयले की बचत।
0: राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आज विभाग की ओर से प्रखंड विकास पदाधिकारियों को 25 नए वाहन सौंपे हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बीडीओ को नए वाहन मिलने से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाओं की निगरानी और क्रियान्वयन में तेजी आएगी।
2: ब्लॉक तक जाने में 45 मिनट, 1 घंटे का समय और जिला मुख्यालय तक जाना 1.5 से 2 घंटे का रास्ता सड़क खराब होने की वजह से स्थिति होती थी। तो मुझे पूरा भरोसा है इस संसाधन को, आप लोगों के काम को, आपके परफॉर्मेंस को सपोर्ट करने के लिए दिया गया है, उसका आप लोग बेहतर इस्तेमाल करेंगे।
0: दुमका सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश को स्पीड पोस्ट से ये धमकी भरी चिट्ठी भेजी गई थी। पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खेरवार ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार ये पत्र पश्चिम बंगाल के पूर्वी वर्धमान से भेजा गया है। पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है। धनबाद में अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस ने आज पहली बार दागी अपराधियों की सामूहिक परेड कराई। पुलिस लाइन में आयोजित इस परेड में सैकड़ों अपराधियों की हाजिरी ली गई और उनके वर्तमान रहन सहन की समीक्षा की गई। एसएसपी प्रभात कुमार ने अपराधियों को सुधरने की आखिरी चेतावनी दी। राज्य में 10 जुलाई तक अच्छी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार कल बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले 10 दिनों तक अच्छी वर्षा होगी, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। हालांकि प्रशांत महासागर में अल नीनो के प्रभाव के कारण पूरे जुलाई महीने में सामान्य से कम बारिश का अनुमान है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ सकती है। गुमला में जिला स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता का आज संत इग्नेशियस उच्च विद्यालय के जुबली स्टेडियम में शुभारंभ हुआ। उप विकास आयुक्त अनिमेश रंजन ने इसका उद्घाटन करते हुए खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। प्रतियोगिता के पहले दिन अंडर 17 बालक वर्ग के मुकाबले खेले गए। इस आयोजन में जिले के सभी 12 प्रखंडों की विजेता टीमें हिस्सा ले रही है, जिसका उद्देश्य राज्य और राष्ट्रीय स्तर के लिए खेल प्रतिभाओं का चयन करना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड कैबिनेट की बैठक में राज्य में विकसित भारत जी रामजी अधिनियम लागू करने को मिली नीतिगत मंजूरी। कुल 27 प्रस्तावों को स्वीकृति। एसआईआर के तहत राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने स्वयं भरा मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रपत्र। राज्य के पात्र मतदाताओं से समय पर सत्यापन कराने की अपील। हजारीबाग ओपन जेल मामले में हाईकोर्ट सख्त। राज्य सरकार के 20 जुलाई तक विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का दिया निर्देश। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ बने पीएम सूर्य घर योजना के लाभुक। रांची स्थित आवास पर लगवाया सोलर पैनल। नागरिकों से योजना का लाभ उठाने का किया आह्वान। और ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने प्रखंड विकास पदाधिकारियों को सौंपे 25 नए वाहन। सुदूर क्षेत्रों में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में आएगी तेजी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन ये सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे रामगढ़ जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे रामगढ़ संवाददाता।
1: रामगढ़ जिले के वेस्ट बोकारो घाटों में हुल दिवस पर आदिवासी समाज द्वारा अमर शहीदों को याद किया गया, साथ ही महिलाओं के लिए तीरंदाजी प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष सह अबुआ दिसोम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद किस्कू एवं टाटा स्टील के महाप्रबंधक ने वीर अमर शहीदों सिद्धू मुर्मू, कान्हू मुर्मू, फूलो मुर्मू, झानू मुर्मू, चांद मुर्मू, भैरव मुर्मू सहित शिवू सोरेन के चित्र पर माल्यार्पण एवं श्रद्धांजलि देकर किया। इस हुल दिवस के अवसर पर विभिन्न आदिवासी संगठन के लोगों ने रामगढ़ के कई जगहों पर सभाओं के माध्यम से इन अमर शहीदों को नमन किया और हुल क्रांति की अमर गाथा को याद किया। मौके पर रामगढ़ जिले के जिलाध्यक्ष अबुआ दिसोम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद किस्कू ने बताया कि अंग्रेजों के द्वारा शोषण के खिलाफ इन चारों भाई बहनों ने एक क्रांति लाया था और यह क्रांति भोगनाडीह से शुरू हुआ, जिसमें काफी लोग शहीद हुए। इन लोगों ने अपने समाज और देश के लिए एक बड़ी क्रांति लाई, जिसको हम लोग आज हुल दिवस के रूप में मनाते रहे हैं।
2: ये चारों भाई बहन ने एक क्रांति लाया और वो क्रांति भोगनाडीह से शुरू हुआ। काफी लोग शहीद हुए अंग्रेजों को भगाने में, पर भी इन लोगों ने अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए इन्होंने एक बहुत बड़ा क्रांति लाया और क्रांति का आज हम लोग हुल दिवस के रूप में मनाते हैं और याद करते हैं कि उनका जो बलिदान रहा, उनका जो संघर्ष रहा इन लोगों का, समाज के माध्यम से हम भूल नहीं सकते हैं, उनको हमेशा याद करेंगे।
1: रामगढ़ के राधा गोविंद विश्वविद्यालय में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की विचारधारा पर आयोजित एक नेशनल सेमिनार में पिछले दिनों भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने शिरकत किया। अपने संबोधन में मंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने यह घोषणा की है कि जल्द ही गांव-गांव और घर घर जाकर जाति आधार पर जनगणना कराई जाएगी। मंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में हो रही बड़ी प्रगति पर जोर दिया और बताया कि आज दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में भारतीय छात्र जा रहे हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की छात्रवृत्ति योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि उनके पास इसके लिए 600 से 650 छात्रों के आवेदन आते हैं। इसके माध्यम से छात्र अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी जैसे कई देशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करते जा रहे हैं।
3: शिक्षा में बहुत बड़ी प्रगति हम कर रहे हैं। दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में अपने अनेक स्टूडेंट जाते हैं। मेरे मंत्रालय का सोशल जस्टिस की स्कीम है, उसमें 600 साढ़े 600 स्टूडेंट से एप्लीकेशन मेरे पास आते हैं। अनेक स्टूडेंट शिक्षा लेने के लिए अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो या जर्मनी हो, अनेक देशों में वो शिक्षा के लिए जा रहे हैं।
1: रामगढ़ जमीन विवाद मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी 7 अपराधियों को 24 घंटे में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक रामगढ़ के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पत्रातू के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसने इस कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाया है। पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मृतक के द्वारा जो 11 डिसमिल जमीन ली गई थी, उसी को लेकर विवाद था और उसी में यह घटना घटी है।
4: घटना का संज्ञान लेते हुए स्थानीय ग्रामीणों की मदद से जो घायल व्यक्ति था उसको अस्पताल भिजवाया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल की टीम को बुलाते हुए घटनास्थल से पुलिस द्वारा अनुसंधान प्रारंभ, वैज्ञानिक तरीके से साक्षी संकलन किया गया और अभी तक की पूछताछ में जमीन की विवाद में हत्या करने की बात सामने आई है।
1: रामगढ़ में आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक के नए तरकीब कारगर सिद्ध हो रहे हैं। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़।
0: अभी आप सुन रहे थे रामगढ़ जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

पलक उछल के गए इसी खूबसूरत से गाने के साथ ही झनकार का हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आपको बता दें कि अब जो ट्यून किया है FM हजारीबाग। हमारे अगले कार्यक्रम के लिए कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं लीजिए पेश है प्रोग्राम ऑल टाइम हिट्स। ऑल टाइम हिट्स का पहला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में।

पत्थर की फिल्म इसमें अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में ये गीत, और कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन रहे थे। अगला गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज में, फिल्म है प्रेम रोग। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

प्यासा सावन फिल्म में अभी आप सुन रहे थे सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर को। और श्रोताओं आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म का नाम है हिना।

अलका याग्निक को अभी आप सुन रहे थे फिल्म राजा हिंदुस्तानी में। इसी के साथ ही आज का ऑल टाइम हिट्स का खूबसूरत सा सफर यहीं समाप्त होता है। एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए, पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का हमारा कार्यक्रम आपकी चाहत।

फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपकी चाहत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सूरज खींची, अभिवादन स्वीकार। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, और इस गीत को हमने लिया है फिल्म मेरे जीवन साथी से, किशोर कुमार की आवाज में। और इस खूबसूरत से गीत के लिए जिन श्रोताओं के पत्र हमें मिले हैं उन सभी के नाम हम आपको बारी बारी से बता दें। डम्बाडी हरली के हमारे श्रोता हैं उमेश चंद्र पांडे, शंभू चंद्र, अनिल चंद्र, साकेत, शुभम, नर्मदा पांडे, अक्षता, प्रियंका, शमी, अपराजिता, अपोर टुकू और इनके परिवार के दूसरे सदस्यों ने भी इसी गीत की फरमाइश की है। खरसावां गांव दलाई किला के हमारे श्रोता हैं लक्ष्मण सोय, अमित सोय, गीता सोय, सरिता सोय, अनु सोय, कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, महेंद्र मोदी, भोलाराम मधुर, नवीन सिंह, ज्योति सिंह, नूतन मिश्रा, शारदा गुप्ता और घनश्याम राही हमारे सभी श्रोता हैं राजानगर के। वासुदेव मालाकार, संगीता देवी, अनुपमा कुमारी, अंजलि कुमारी, ज्योति कुमारी और गंगा कुमारी, ये और मिष्टी रानी, ये हमारे सभी श्रोता हैं बरही के। शंभू ठाकुर, सुयोग ठाकुर, टोटल साव, सुजीत पासवान, महेंद्र राणा, दीपक पासवान, रंधीर पासवान हमारे ये सभी श्रोता हैं शंकरपुर खपरियामा के। शमी महमूद, निखत परवीन, नसीम अहमद, कोहिनूर बानो, खलील अहमद, हसीना खातून, नूर इस्लाम चांद और आरजू परवीन, ये हमारे श्रोता हैं रेलवे स्टेशन के पास से, हजारीबाग से इन्होंने यह पत्र भेजा है। तो अपने इन सभी श्रोताओं की पसंद पर कार्यक्रम का ये पहला गीत हम सब मिलकर सुनते हैं।

श्रोता साथियों, किशोर कुमार के इस खूबसूरत से गाने के बाद कार्यक्रम के अगले गीत की बारी है, जिसे हमने लिया है फिल्म सीता और गीता से। आशा भोसले और किशोर कुमार के से सुमधुर आवाज में इस गीत को सुने। इससे पहले हम आपको उन श्रोताओं के नाम बता दें जिन्होंने इस गीत के लिए हमें फरमाइशी पत्र भेजे हैं। बाबूलाल ठाकुर, सबिया ठाकुर, तिलेश्वरी भरत ठाकुर, मंजू संतोष ठाकुर, विकास कुमार ठाकुर, प्रभात कुमार ठाकुर, जितेश आदर्श, अनुराधा रुक्मणी और प्रियंका देविका, ये सभी हमारे श्रोता हैं छिपा कला बड़का गांव के रामगढ़, रांची रोड रामगढ़ के हमारे श्रोता हैं अर्जुन राम।

इसी गीत के लिए हमें यह पत्र भेजा है पटेल नगर मलूट से डॉक्टर राजेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी गगनदीप और बेबी आरजू जाजोरिया ने। ब्रजलाल सोनी हमारे श्रोता हैं कुम्हार टोली के, इन्होंने भी इसी गीत की फरमाइश की है। मुरादाबाद के श्रोताओं के नाम हम आपको बता दें जिन्होंने इस गीत के लिए पत्र भेजे हैं, जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनेद अब्बासी। शिवाजी से कटनी के हमारे श्रोता हैं अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, संतोष शर्मा, रजन रजक, राजू ताम्रकार, दिलीप वर्मा और प्रकाश, ये हमारे श्रोता हैं। शिवाजी चौक कटनी के बबलू कुमार जागो निवास गली मटवारी हजारीबाग से भी इन्होंने इसी गीत की फरमाइश की है। और शिवाजी चौक कटनी के कुछ और श्रोताओं के नाम हैं, उन्हें भी हम आपके साथ बांटते। ये हमारे श्रोता हैं पवन यादव, सत्तू सोनी, अरुण कनौजिया, संजय सोनू, लालू सोना, मोना हनीया, सौम्या और इनके परिवार के दूसरे सदस्य। और ग्वालटोली चौक हजारीबाग के हमारे श्रोता हैं कैलाश यादव, मनीष कुमार, विराट और परिवार के दूसरे सदस्यों ने भी गीत की फरमाइश की है। शिवाजी चौक राजिम से यह पत्र हमें मिला है अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और किस श्रीवास्तव का। कृष्णा गुप्ता हमारे श्रोता हैं पंच मंदिर हजारीबाग से। अमरपुर पिंडरा के हमारे ये श्रोता है दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लकी का। तो अपने सभी श्रोताओं की पसंद पर आइए हम सब मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

हम आपको बता दें कि अपने ट्यून किया है एफएम हजारीबाग और इस वक्त आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का हमारा कार्यक्रम आपकी चाहत रेडियो के अपने साथी सूरज के साथ। कार्यक्रम का अगला गीत अब हम आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम बता दें, इसे हमने लिया है दो रास्ते से। और इस खूबसूरत से गीत के लिए जिन श्रोताओं के पत्र हमें मिले हैं उनके नाम भी हम आपको बता दें। इंद्रपुरी चौक हजारीबाग के हमारे श्रोता हैं दिलीप ठाकुर और अरविंद ठाकुर। मंडई हजारीबाग से हमें पत्र भेजा है मासूम ने। नारद पांडे ये हमारे श्रोता हैं खिरगांव हजारीबाग के। अरशद जमाल, अमन इफरा, शबनम, सदमान, सायन ये सभी हमारे श्रोता हैं सरदार रोड हजारीबाग के। सौरभ नयन, गौरव नयन, श्रेया नयन, पीहू और आदित्य ये सभी हमारे श्रोता हैं ओकनी बड़ा शिव मंदिर हजारीबाग के। मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता ये हमारे सभी श्रोता हैं पटियाला के। मुबारक हुसैन, तबारक हुसैन, अमानत हुसैन, सराफत हुसैन, बिल्किस फातिमा, कनीज फातिमा और सनाज फातिमा ये हमारे सभी श्रोता हैं जामा मस्जिद रोड हजारीबाग के। मोहम्मद गुलाम अली, सद्दाम अली, पप्पू छोटू और रोवट ये हमारे श्रोता हैं रसूलीगंज के। अफजाल ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निपी सहनी और अफजाल मलिक इन्होंने यह पत्र भी हमें भेजा है बरका काना से। नीरज मालाकार, आशीष मालाकार, विकास मालाकार, रंजना मालाकार, गुड़िया रानी, गोलू भोला और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने इसी गीत की फरमाइश की। और हम आपको बता दें यह पत्र हमें मिला है मेन रोड बड़का गांव से। रूद इचाक से भी एक पत्र आया है, लिखने वाले हमारे श्रोता हैं राहुल और पंचमंदिर रोड हजारीबाग के। हमारे कुछ श्रोताओं ने भी इसी गीत की फरमाइश की है। हमारे श्रोता हैं कलाम अहमद आरजू, नीलोफर परवीन आरजू, हबीबा खातून, कहकशां परवीन, इरफान अहमद, सबाना परवीन, फिरोज अहमद और शमा परवीन आरजू का। तो इतने ढेर सारे श्रोताओं की खूबसूरत सी पसंद आपके साथ हम साझा कर रहे हैं।

0: मोहम्मद रफी के इस खूबसूरत से गाने के बाद श्रोताओं कार्यक्रम का अगला गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। फिल्म का नाम है वक्त और इस खूबसूरत से गीत के लिए आशा भोसले और महेंद्र कपूर ने अपनी आवाज़ दी और ढेर सारे श्रोताओं के पत्र भी मिले हैं, उनके नाम भी हम आपके साथ साझा कर दें। महेंद्र गुप्ता, श्यामलाल साहू, विजय साहू, ये हमारे सभी श्रोता हैं ओकनी मंडप रोड हजारीबाग से। मृत्युंजय गुप्ता, इन्होंने ये पत्र हमें भेजा है चौपारण से। पुनाई के हमारे श्रोता हैं उमेश सिंह, निखिल, निहाल, विक्रांत और इनके परिवार के दूसरे सदस्यों ने। दारू के ही हमारे श्रोता है मनीष कुमार, तिलक रॉय, इंद्रपुरी चौक हजारीबाग से पत्र भेजा है। कैलाश ठाकुर का पत्र हमें मिला है इंद्रपुरी चौक से ही। नवाटोला, भीकनपुर, भागलपुर के हमारे श्रोता है गणेश पासवान, सुधा पासवान, पूजा पासवान, विकास, नितिन और मनोज पासवान का। मेहरनगर, उत्तर उमरखेड़, महाराष्ट्र के हमारे श्रोता है विजीत गवाड़कर, सरिता, सिद्धांत और प्रिंस अकांश गवाड़कर का। और बहादुरपुरा, नागपुर के हमारे श्रोता है शैलेश गवाड़कर, वैशाली गवाड़कर, श्वेता, सुमित, कुमारी, ध्वनि गवाड़कर। सौदागर मोहल्ला, रामगढ़ से भी कुछ श्रोताओं ने हमें पत्र भेजे हैं। महमूद आलम, महबूब आलम, शबनम नूरी, मकसूद आलम, पाकिजा महमूद आलम, शहनाज नूरी, महफूज आलम और शमशाद बेगम, ये सभी श्रोता है हमारे सौदागर मोहल्ला रामगढ़ के। बगबुड़वा पथारिया के हमारे श्रोता है नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, मिलिंद दोवेश नेताम, अंबिका और योगिता नेताम का। महादेव घाट अमलेश्वर से भी हमें ये पत्र मिला है, हमारे श्रोता है डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तानी ठाकुर, सूरज ठाकुर और ज्योति का। यश चौहान, अंश चौहान, संदीप चौहान, माधवी चौहान, ये सभी हमारे श्रोता हैं बनूसा, दरियापुर, अमरावती के। तो आइए सुनते हैं इन सभी श्रोताओं की पसंद पर ये खूबसूरत सा गीत।
1: मैंने

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आइए अब हम आपको सुनवाते हैं पत्थर के सनम फिल्म का गीत। और इस गीत के लिए जिन श्रोताओं के पत्र मिले हैं उनके नाम हम आपको बता दें। ये हमारे श्रोता है जगन्नाथ प्रसाद साहू झुमरे तलिया से, इन्होंने ये पत्र भेजा है। सीताराम अलाकार, इंदु देवी, कैलाश भगत, अनीता देवी, पूनम कुमारी, नूतन कुमारी, कुसुम और आर्यन, इन्होंने ये पत्र भेजा है जीटी रोड बरही से। जमठी वरुण अमरावती महाराष्ट्र के हमारे श्रोता है मुकेश कासलेकर, दिनकर विमल और विशाखा कासलेकर का। बंजारी नगर पूछरा के हमारी श्रोता है महेशराम, सरिता देवी, वर्षा और पिंटू का। भाटापारा दतरंगी से भी हमें पत्र मिला है द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झाविंद्र कुमार वर्मा का। मालोनिया झरपू के हमारी श्रोता है रामचंद्र प्रसाद, अर्जुन महतो, सुनैना देवी, सुनील कुमार और डावर का। पिलावल रहमतनगर के हमारे श्रोता आरिफ, सवा आरिफ, शमा, जूही और अलिफ रजा का। सिंघानी कोर्रा हजारीबाग से पत्र मिला है रूबी देवी, सुमन रानी, श्री प्रसाद और अनुराग राज का। तो आइए अपने इन सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। फिल्म का नाम है पत्थर के सनम।

एक बार फिर से हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी को। फिल्म का नाम है लोफर, और इस गीत के लिए जिन श्रोताओं के पत्र हमें मिले हैं उनके नाम हम आपको बता दें। करुणा चटर्जी, जय चटर्जी, वाणी चटर्जी, हीरा ठाकुर, ये सभी हमारे श्रोता हैं मटवारी हजारीबाग के। इंदिरा विहार रायगढ़ के हमारे श्रोता अकरम नूरजहाँ, डब्ल्यू नूरजहाँ, सईद नूरजहाँ, वसीम और वलीउल्लाह नूरजहाँ का। जेल रोड रायगढ़ से हमारे श्रोता हैं रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी और अलका तिवारी का। दतरंगी के हमारे श्रोता हैं भगवत वर्मा, और लेवई से हमें यह पत्र भेजा है गुलाबदास मानिकपुरी ने। तो आइए अपने श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं लोफर फिल्म का ये गीत।

और श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में पतीदा फिल्म का ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं और इस गीत के लिए जिन श्रोताओं के पत्र मिले हैं उनके नाम हम आपको बता दें। कुमार टोली हजारीबाग से शिवम, सूरज, नरेश और राजेश ने ये पत्र भेजा है। लेपो रोड हजारीबाग के हमारे श्रोता संतोष केसरी, पवन केसरी, राजू और विवेक ने। आर्यनगर हजारीबाग के हमारे श्रोता हैं प्रकाश कुमार।

और प्रशांत कुमार, अर्ण राज, खुशी हमारे श्रोता हैं कुम्हार टोली हजारीबाग के, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा परमा लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी और दतरंगी से भागवत वर्मा ने इसी गीत की फरमाइश की है। तो कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं पतिता फिल्म का ये गीत।

0: तलत महमूद के गए इसी गाने के साथ ही फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत यहीं समाप्त होता है। रेडियो के अपने साथी सूरज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: समझो के सवेरा
0: श्रोता भी सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म गीतों का हमारा कार्यक्रम आपकी चाहत FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो को घड़ी में रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में हम आपको शामिल करेंगे अपने दिल्ली केंद्र के प्रसारण में, जहां से आप सुनेंगे समाचार संध्या, न्यूज एट 9 और स्पॉटलाइट कार्यक्रम। इसके तुरंत बाद 9:30 पर हम आपको शामिल करेंगे अपने विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों में।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देशभर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्पेन और ऑस्ट्रिया होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
3: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
3: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ

0: इट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
0: प्रधानमंत्री ताकाइची, और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
1: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
2: नेताओं ने व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा, सप्लाई चेन की मजबूती, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव पर चर्चा की। साथ ही दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे अलग शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की भूमिका को स्वीकार किया।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है। वे आज एक निजी टेलीविजन चैनल द्वारा आयोजित एशियाई सदी को आकार देने संबंधी विषय पर भारत जापान रणनीतिक संवाद को संबोधित कर रहे थे।
3: ट्रेड ऑल्सो इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस पार्टनरशिप।
4: भारत के कुशल कार्यबल के लिए अवसर खुल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का ध्यान सभी के लिए समान विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है और इससे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
3: ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डायमेंशन।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की तेल शोधन क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित किया। श्री पुरी ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में पेट्रोल की कीमत में केवल 5.58% और डीजल की कीमतों में 6.23% की ही वृद्धि हुई है। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला

0: स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। भारतीय रेलवे ने इस वर्ष जून में पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में माल ढुलाई में 4% की वृद्धि दर्ज की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलवे ने पिछले महीने 142 करोड़ टन से अधिक माल की ढुलाई की। इस वर्ष जून में यात्री आवागमन में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। पंचायती राज मंत्रालय कल नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने कोयला खंड आवंटियों को अधिक वित्तीय सुविधा प्रदान करने और कोयला क्षेत्र में व्यापार को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत किया है। कोयला खंड आवंटन संशोधन नियम 2026 के अंतर्गत मंत्रालय ने कोयला खंड और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 के अंतर्गत आवंटित कोयला खंडों के लिए निष्पादन बैंक गारंटी के स्थान पर बीमा गारंटी बॉन्ड के उपयोग को सक्षम बनाया है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। केरल में शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाने वाले नशीले पदार्थों के गिरोहों पर राज्य पुलिस की कार्रवाई में 30 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध दवाएं जब्त की गई हैं। केरलम पुलिस के अनुसार अधिकारियों ने राज्य में 5,353 मामले दर्ज किए हैं और 5,736 लोगों को गिरफ्तार किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 के अंतर्गत खंडवा नगर निगम ने पॉलीथीन लाओ चाय पाओ नाम की एक पहल शुरू की है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक बनाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र में नुनवान और गांदरबल जिले के बालताल स्थित दोहरे शिविरों में पहुंचा। एक रिपोर्ट।
1: यात्रियों का पहला जत्था आज दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर घाटी पहुंचा। पहले जत्थे में 4,822 यात्री शामिल हैं। इसमें से 2,510 यात्री पहलगाम के रास्ते से यात्रा करेंगे, जबकि 2,312 यात्री बालतल से होते हुए बाबा बर्फानी की गुफा का रुख करेंगे। नुनवन और बालतल कैंप पहुंचते ही प्रशासन ने यात्रियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यात्रा के मद्देनजर दोनों रास्तों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दोनों रास्तों पर पुलिस, अर्धसैनिक बलों और आर्मी जवानों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाएं, मौसम की जानकारी के लिए प्रणाली, अहम जगहों पर क्विक रेस्पॉन्स टीमें, बड़े पैमाने पर सीसीटीवी निगरानी और आरएफआईडी आधारित प्रणाली भी लगाई गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक शाह।
0: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जमीनी आकलन जारी है और इसके पूरा होने पर केंद्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा मोचन बल SDRF और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के मानदंडों के अनुसार राहत सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया।

0: क्या है?
1: विभाग ने अगले 2-3 दिनों में गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। इसी दौरान छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, राजस्थान, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में भी मौसम की ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। हालांकि दिल्ली में अगले 24 घंटों के दौरान आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंग्लवुड के लॉस एंजल्स स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। स्क्वाश में विल्वन सेंथिल कुमार और तन्वी खन्ना ने मुंबई में पीएसए चैलेंजर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेंथिल कुमार ने मिस्र के अब्दुल्ला हाफिज और को जबकि तन्वी ने जापान की जोई फू को हराया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India's speed and Japan's expertise will work as driving force for global growth. Holds talks with Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. India and Japan announce energy partnership to strengthen strategic oil reserves and maritime transport resilience. Government to expand oil refining capacity to 300 million metric tons per annum in next 1 year amid West Asia crisis. Center launches Air Suvidha 2.0 portal for Ebola health screening at entry points of international airports across the country. IMD issues red alert for heavy rainfall in parts of western and central India for next 2 to 3 days. And in FIFA World Cup, Spain to take on Austria in round of 32 match in Los Angeles tonight. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi this evening, Mr. Modi said, when Japan's expertise and investment combined with India's speed and scale, the entire world benefits. He said both sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound. The Prime Minister said India and Japan today reached agreements on several areas such as economic security, AI, defense and health that will make the partnership futuristic and limitless.
3: जो नए साथी इस फोरम के साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें भारत जापान सक्सेस स्टोरी का भाग बनने पर हार्दिक बधाई देता हूं। फ्रेंड्स, भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।
2: In her address, Prime Minister of Japan, Sanae Takaichi, said, among the many areas of cooperation, energy security is one of the most important areas. Ms. Takaichi said, through the Power Asia Initiative, it is working to translate this

0: आज का आपके लिए कार्यक्रम खत्म होता है।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
2: आज के फनकार कार्यक्रम के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

लीजिए पेश है प्रोग्राम आज के फनकार। सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों आज के फनकार हैं जाने माने पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज।

0: दोस्तों, लखन नाम तो फिल्म राम लखन में अभिनेता अनिल कपूर का नाम था, लेकिन इस गाने की मकबूलियत ने पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज को सुनने वालों के दिलों में इस तरह बसा दिया जैसे सीप में मोती और किसी अंगूठी में कोई शानदार नगीना।
1: उंगली में अंगूठी।

0: नगीना,
1: अंगूठी में नगीना,
0: उंगली में अंगूठी में नगीना।
2: 2 जुलाई 1954 को गुमा वेस्ट बंगाल में जन्मे मोहम्मद अजीज का पूरा नाम था सैयद मोहम्मद अजीज उन नबी। शुरुआती कुछ फिल्मी गाने उन्होंने मुन्ना अजीज के नाम से भी गाए, बाद में उनकी पहचान बनी बतौर पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज के नाम से। मोहम्मद अजीज जाने माने पार्श्व गायक मोहम्मद रफी के बड़े प्रशंसक थे।
0: नफनकार तुझसा तेरे बाद आया, नफनकार तुझसा तेरे बाद आया।

0: मोहम्मद अजीज को अपने जीवन में फिल्मी गायन का पहला मौका मिला बंगाली फिल्म ज्योति से। दोस्तों, आपको यहाँ याद दिलाना चाहेंगे कि बंगाली फिल्मों में मोहम्मद अजीज के तमाम गाए गीत बेहद मशहूर हुए। उसके बाद 1984 में हिंदी फिल्म अंबर में भी उन्होंने पार्श्व गायन का सिलसिला जारी रखा, लेकिन हिंदी फिल्म संगीत जगत में उनकी पहचान बनी मर्द फिल्म के इस गाने से।
1: मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, हे मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त है ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त

0: हर क्यों भाई बादल क्यों भाई मोती, मैं सच कहता हूँ मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला तुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त ऊपर वाला, मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला तुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरा दोस्त ऊपर वाला।
1: अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म मर्द का ये सुपरहिट गीत गाकर मोहम्मद अजीज रातों रात पार्श्व गायन की ऊंची पायदान पर जा पहुंचे। इस फिल्म का संगीत दिया अनु मलिक ने और लोगों ने पहले तो ये समझा कि ये गाना शब्बीर कुमार ने गाया, लेकिन जब गौर किया गया तो पता चला मोहम्मद अजीज की आवाज है और बाद में इस आवाज ने धूम मचा दी।

मोहम्मद अजीज का बंगाली और उड़िया फिल्म इंडस्ट्री से भी जो गहरा नाता रहा है उसका जिक्र हम शुरू में ही कर चुके हैं। हिंदी फिल्म जगत की नामी संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ भी मोहम्मद अजीज का जुड़ाव दोस्तों लंबी अवधि तक बना रहा।

मोहम्मद अजीज ने अपने गायन जीवन में अपनी समकालीन दिग्गज गायिकाओं के साथ गीत गाए। लता जी के साथ उनका गाया ये गीत हम कैसे भुला सकते हैं, जो सिंदूर फिल्म का है।

दोस्तों मोहम्मद अजीज ने, जैसे कि हम बता चुके हैं, अपनी समकालीन हिट सुपरहिट गायिकाओं के साथ भी गाने गाए हैं, तो उसमें अलका याग्निक का जिक्र ना हो तो प्रोग्राम थोड़ा अधूरा सा लगेगा। आइए सुनवाते हैं आपको बंजारन फिल्म का ये गाना।

0: इसलिए।
1: दोस्तों यहाँ ये भी जिक्र करना जरूरी होगा कि मोहम्मद अजीज ने हिंदी फिल्म जगत के तमाम बड़े सितारों के लिए पार्श्व गायन किया है, जैसे अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, अनिल कपूर और गोविंदा के साथ साथ और भी कई कलाकार हैं। ऋषि कपूर के लिए मोहम्मद अजीज का गाया फिल्म नगीना का ये गीत बेहद मकबूल रहा है।

बहुमुखी गायन प्रतिभा के मालिक मोहम्मद अजीज ने विभिन्न भारतीय भाषाओं में लगभग 20,000 गीत गाए हैं। संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर डी बर्मन, नौशाद, ओपी नैयर, राजेश रोशन, राम लक्ष्मण और रविंद्र जैन से लेकर उषा खन्ना, आनंद मिलिंद, नदीम श्रवण, जतिन ललित, अनु मलिक, आनंद राज आनंद और आदेश श्रीवास्तव तक तमाम संगीतकारों के निर्देशन में मोहम्मद अजीज ने गीत गाकर सभी को लुभाया है, बहलाया है। अनुराधा पौड़वाल के साथ मोहम्मद अजीज का गाया ये गीत आज भी 90 के दशक के फिल्म संगीत की यादों को ताजा कर देता है।

मोहम्मद अजीज ने हमारे देश के अलावा विदेशों में भी जाकर मंच पर अपने कई प्राइवेट कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। उड़िया और बांग्ला भाषाओं में कई फिल्मी गाने उन्होंने अनुराधा पौडवाल के साथ भी गाए और तमाम कई फीमेल सिंगर के साथ भी उनके गाए गीत मकबूल हुए हैं। और जहां तक भजन का सवाल है तो आपको हम ये बता दें कि उड़िया भाषा में उनके कई भजन मशहूर रहे हैं और कई अवसरों पर गाए जाते हैं।

27 नवंबर 2018 को अचानक हुए हृदयाघात यानी हार्ट अटैक की वजह से मोहम्मद अजीज हमारे बीच नहीं रहे। दोस्तों कहते हैं ना, जिस्मानी तौर पर भले ही कलाकार हमारे बीच ना हो, लेकिन अपनी विधा के बल पर वो अपने चाहने वालों के दिलों में बसा करते हैं। इसी तरह पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज भी अपनी आवाज के जरिए हमेशा हमेशा अपने चाहने वालों के मन में जीवित रहेंगे।

0: तो दोस्तों ये था आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज पर। तकनीकी सहयोग दिया वंदना ठाकुर ने और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। अब दीजिए अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बजे हैं। श्रोताओं, लीजिए पेश है फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है पेइंग गेस्ट, आशा भोसले और किशोर कुमार की सुमधुर आवाजों में।

पेइंग गेस्ट फिल्म में अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और किशोर कुमार को नितिन मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में। अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम हम आपको बता दें, इसे हमने लिया है नूरी से।

किशोर कुमार को आप सुन रहे थे याराना फिल्म में। कार्यक्रम का अगला गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं किशोर कुमार की ही आवाज में। फिल्म का नाम है ब्लैकमेल।

मेरी फिल्म में अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार को साथी फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, तो आइए इस गीत का आनंद उठाते हैं मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज में।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से, जो है आपका ही एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज। आईसीसी वुमेन्स 2020 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत इंग्लैंड बनाम साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे सेमीफाइनल मैच का द ओवल लंदन से अब आंखों देखा हाल आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: 26 के अंतर्गत इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले दूसरे सेमीफाइनल T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनने से पहले आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम फर्स्ट बॉल 20।

0: कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन
2: कौन रहा?

0: तरंग।
1: मैं भवतारिणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होगा।
2: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौता दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
2: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजेन फिलोसॉफी यानी कंटीन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
1: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने देश भर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित

0: ये थी ऋचा शर्मा की आवाज और आइए अब आपको सुनवाते हैं सुलक्षणा पंडित और आरती मुखर्जी का गाया हुआ ये गाना। लिखा है माया गोविंद ने, धुन बनाई है राज कमल ने।
1: धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: रंग तरंग कार्यक्रम में अब सुनवा रहे हैं राजेंद्र मेहता और नीना मेहता की गाई ये गजल।

जुबिन नौटियाल की आवाज में आपने सुना ये गाना। गुरप्रीत सैनी के बोल थे, रोचा कोहली का संगीत था। और आइए अब आपको सुनवाते हैं दिलराज कौर की आवाज, मोहसिन नकवी का कलाम।

ये थी रंगदारंग कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

अभी आपने सुना यादों की बारात फिल्म का गाना किशोर कुमार और मोहम्मद रफी की आवाजों में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे और राहुल देव बर्मन का संगीत। और अब सुनते हैं फिल्म उमर कैद का ये गाना, लता मंगेशकर मुकेश का गाया हुआ, गुलशन बावरा का गीत, सोनिक ओमी का संगीत।

0: फिल्म सावन का ये गाना सुन रहे थे जिसे लिखा था असद भोपाली ने, धुन बनाई थी हंसराज बहल ने, आवाज थी लता मंगेशकर की।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: यादों की महफिल कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में। गीत लिखा है गुलजार ने, धुन बनाई है खयाम ने।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में आप सुन रहे थे वारिस फिल्म का ये गाना। वर्मा मलिक के बोल, उत्तम जगदीश का संगीत था। और आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म सौदागर का ये गाना।

आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफी और सुलक्षणा पंडित की आवाजों में फिल्म फांसी का ये गाना, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

योगेश की शब्द रचना, सचिन देव बर्मन का संगीत, किशोर कुमार की आवाज में आपने सुना फिल्म मिली का ये गाना। और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म राजपूत का गीत, किशोर कुमार और साथियों के स्वरों में। आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन।

जावेद अख्तर के बोल हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत, फिल्म मशाल का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। ये थी आज की यादों के महफिल की अंतिम प्रस्तुति। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

आप सभी को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। सुरीला सफर कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में जो इबारत हमने फेसबुक पर पोस्ट की है वो आपने पढ़ी और बहुत सारे संदेश भेजे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने अभी नहीं पढ़ी है उनके लिए हम एक बार यहाँ पढ़ देते हैं। खिलते नगमों की कलियां चुनने वाली दिलकश बहार का मौसम, 100 सालों से बंधन अनजाना बांध के चलने का मौसम। ये कहता है दिल थाम लोगर, रंग साथ अभी खिल जाएंगे, बन सुगंध सुमन मिल जाओ तो सब एक ताल बंध जाएंगे। रजनी गंधा संग खिलता मन, बांधे अनजाना सा बंधन, ये मौसम धीरे धीरे से जीवन में घुल मिल जाता है, पर जाता है तो बीते लम्हों की कसक छोड़ कर जाता है। तो ये है आज की इबारत, और इस इबारत को लेकर बहुत सारे गानों के बारे में भी आपने कहा है। तो बस ये देखना है कि आज जो गाने प्ले होने वाले हैं उनसे आपकी लिस्ट कितनी मैच कर रही है, हमें जरूर बताइएगा। हो सकता है कि आपने अभी अभी जो गाना सोचा हो वो हमारी इस लिस्ट में हो, तो अगर अभी भी कोई दिमाग में गाना आ रहा हो तो जल्दी से हमें बताएं। बहरहाल आज मौसम को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं और हमारे श्रोताओं ने भी मौसम के बारे में कई संदेश भेजे हैं। एक संदेश में कहा है कि एक हम हैं जो उदास होकर चुपचाप अपने काम कर रहे हैं और आप कितनी प्यारी सी इबारत लेकर आई हैं, जबकि हम जानते हैं कि ऐसा करना ठीक नहीं है। कितना प्यारा मौसम और प्यारा सा विविध भारती का साथ, फिर भी ना जाने क्यों ये दिल बार बार उदास हो जाता है, पर हमने अपने दिल से कह दिया कि हमें मुस्कुराना है और हमें उदासी दूर होती नजर आई और हम हो गए शामिल सुरीला सफर में। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे लिखते हैं कि आपकी इबारत में हमें फूल और कलियां नजर आई तो हमने अपने गमले में एक बात नोटिस की। 3 दिन से एक हिबिस्कस यानी गुड़हल के एक पौधे में 3 दिन से 3-3 फूल खिल रहे हैं। आज 3रा दिन है और कल 4थे दिन के लिए भी उसमें 3 कलियां हैं। इन छोटी छोटी बातों पर हमारा ध्यान नहीं जाता, पर कभी कभी ये सब देखना भी अच्छा होता है क्योंकि इस बहाने हम प्रकृति से जुड़ते हैं और फिर ये पौधे तो कितनी खुशियां देते हैं हमको। बहुत सुंदर बात कही आपने, और संदेशों में बहुत सारी बातों के साथ साथ ये भी कहा गया है कि इस कार्यक्रम में विविध भारती और उसके श्रोता साथ साथ मिलकर चलते हैं तो मौसम के साथ सजन का लुत्फ ही कुछ और है। न जाने कितनी गीत कविताएं इनके सानिध्य में परवान चढ़ी हैं। कवि और गीतकारों की कलम का जादू जब कोरे कागज पर उतरता है तो सावन भादो बरखा पतझड़ हर मौसम के गीत बन जाते हैं। मौसम जीवंत में जीवन में वो सब अनुभूतियां देता है जिसे हम खुशी का नाम दे सकते हैं। शायर बशीर बद्र के माध्यम से कहें तो अजब मौसम है मेरे हर कदम पर फूल रखता है, मोहब्बत में मोहब्बत का फरिश्ता साथ चलता है। बहुत सुंदर। तो मौसम की इतनी बातें हो गई हैं तो क्यों ना उन सभी गीतों पर एक नजर डालते चलें जो कि आपकी पसंद हैं। एक एक कर उनकी एक झलक सुनते जाते हैं। झूमता

दरअसल मौसम को लेके इतने खूबसूरत गीत हैं कि अगर हम उनको थोड़ा थोड़ा भी प्ले करते चले तो आज के कार्यक्रम का वक्त ही पूरा हो जाएगा, इसलिए कुछ गीतों को हमने छाट कर लिया है, चुनकर लिया है। अब जो गीत हमने चुना है वो तो आपको सुनवाएंगे ही, आपसे पूछेंगे फिल्म का नाम और कलाकारों के नाम, लेकिन एक सवाल और है। आज की इबारत में शुरुआत में एक गीत के अंतरे की कुछ पंक्तियां छिपी हुई हैं, आपको वो गीत पहचानना है, फिल्म का नाम बताना है और साथ ही वो अंतरा भी बताना है कि वो अंतरा असल में क्या है, उसमें से कुछ शब्द लिए हैं अंतरे के। तो अब ये गीत और बताइए फिल्म का नाम और मुख्य कलाकारों के नाम।

बहुत बहुत शुक्रिया हमारे श्रोताओं के उन जवाबों के लिए जो उन्होंने तुरंत भेजे हैं। बताया है कि फिल्म ओपेरा हाउस का ये गाना जिसमें प्रमुख कलाकार रहे अजीत और बी सरोजा देवी। और जो दूसरा सवाल हमने पूछा था, मैं पल दो पल का शायर हूँ गीत की ये कुछ पंक्तियां थी, कुछ शब्द असल में चुने थे उसके एक अंतरे से। और बताया है कि कभी कभी कभी फिल्म में अमित जी स्टेज पर गा रहे हैं। हमने ये भी कहा था कि अगर वो अंतरा आपको याद आ रहा हो तो जरूर लिखें, अभी कोई वैसा जवाब दिख नहीं रहा है। वैसे मौसम का जब भी हम जिक्र करते हैं तो खूबसूरती का और तमाम उन चीजों का जो प्रकृति से जोड़ती हैं हमें, उन सब की बातें करते हैं, लेकिन साथ ही साथ मौसम एक चीज और सिखाता है कि आज जो है वो कल नहीं रहेगा और जो कल है वो परसों नहीं रहेगा। यानी निरंतर बदलाव की ओर भी संकेत करता है मौसम, और ये भी बताता है कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले। तो चलिए अब अगले गाने की तरफ बढ़ें, लेकिन उससे पहले ये संदेश है। एक श्रोता ने कहा है कि आज की ये कविता में इबारत जीवन के उस सुखद दौर का उत्सव है जो आते ही चारों तरफ सकारात्मकता बिखेर देता है, लेकिन जाते जाते हमें यादों के साए में छोड़ जाता है। ये पद्य हमें याद दिलाता है कि जीवन में अच्छे दिन या खूबसूरत लम्हे हमेशा नहीं ठहरते। उनका आना जितना सुखद होता है, उनका जाना उतना ही भावुक कर देने वाला होता है। कविता में प्रकृति के मौसम को मानवीय भावनाओं, विशेषकर प्रेम और विरह से बेहद खूबसूरती से जोड़ा गया है। क्या बात है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि मौसम अपने साथ बहुत से परिवर्तन लेकर आता है जो हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा देता है। जब चारों तरफ फूलों की सुगंध और हरियाली बिखरी होती है तब हम भी मन से इसमें घुल मिल जाते हैं, पर प्रकृति हमें समय समय पर अपने नए नए रूप से अवगत कराती रहती है और हमें ये संदेश देती है कि हर मौसम कुछ समय के लिए आता है, इसके बाद फिर परिवर्तन है और इसमें हमें अपने आप को ढालना है। हर मौसम हमें कुछ देकर जाता है, इसकी यादें हमारे मन मस्तिष्क पर छा जाती हैं। बहुत सुंदर बात कही आपने। एक और श्रोता ने कहा है कि प्रकृति का सौंदर्य केवल आंखों को नहीं आत्मा को भी स्पर्श करता है। फूलों की मुस्कान, रजनीगंधा की भीनी सुगंध और सुहाने मौसम का यह सम्मिलित स्पर्श जीवन के उन अनमोल क्षणों का स्मरण कराता है जहां सुख किसी बड़े उत्सव में नहीं बल्कि प्रकृति की सहज छटा में छिपा होता है। जब चारों ओर सृष्टि अपने सौंदर्य का संगीत बिखेरती है तब मन भी अनायास ही भावों के सुर छेड़ देता है और जीवन एक मधुर गीत सा प्रतीत होने लगता है। बहुत सुंदर बात कही। तो चलिए इसी बात पर एक सुंदर सा गीत आपको बताना है कि फिल्म का संगीत किन्होंने दिया था और प्रमुख भूमिकाएं किन्होंने निभाई थी।

देवानंद और आशा पारेख ने जब प्यार किसी से होता है फिल्म में प्रमुख भूमिकाएं निभाई थी। बहुत बहुत धन्यवाद जवाब के लिए। लेकिन हमने संगीतकार का नाम भी पूछा था, शंकर जयकिशन का संगीत था इस फिल्म में। और हमारे एक श्रोता ने कहा है कि मौसम बादलों बयारों और बौछारों का है, भीगने का है, यादों की रिमझिम बूंदों की जुगलबंदी में कुछ गुनगुनाने का है। जिस तरह पावस के बादल धरती का मैल धोकर उसे उजला कर देते हैं, उसी तरह हमारे मन की परतों पर ठहरा आपाधापी अशांति और बेचैनी का गुबार भी बौछारों से धुलकर उज्जवल हो सकता है। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि भाई मौसम की बहुत बातें हो रही हैं और बारिश डर डर कर आ रही है, तो यकीन मानिए कि बारिश को हम बुला रहे हैं, बल्कि डर नहीं रही है बल्कि आने के लिए मजबूर होती जा रही है, और बारिश जल्द ही आ जाए हम तो यही दुआ करेंगे। एक और श्रोता ने बताया है कि वो आज शिमला में मौसम बहुत अच्छा हो गया है और मेलोडियस सॉन्ग सुनते हुए बहुत अच्छा लग रहा है उन्हें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे श्रोताओं के इन संदेशों के साथ ही साथ मौसम की जो बातें चलती जा रही हैं उनमें बहुत सुंदर तरीके से गीतों की इबारत पिरोई है हमारे एक श्रोता ने। लिखते हैं कि हे विविध भारती, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, सालों पुराना, मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना, 100 साल पहले तो नहीं 66 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा, तो आओ मिल जाएं हम सुगंध और सुमन की तरह, एक हो जाएं चलो हवा के संग प्रसारण तरंगों की तरह। क्या बात है, पिछले 3 दिनों से मौसम ने भी करवट ली है, भीगा भीगा प्यार का समय है, सुहाना सुहाना बरसात के नशे में जहां है, किसी को किसी की खबर ही कहां है, बीते हुए लम्हों की कसक याद करते हुए तड़प ये दिन रात की, कसक ये जिन बिन बात की, हे विविध भारती तुझे सुनने का भला ये रोग है कैसा, आप तो बता दे। भाई रोग तो नहीं है, तो आपकी बातों से लगता है कि किसी मर्ज का इलाज है विविध भारती सुनना, हमने सही कहा ना। एक और श्रोता कह रहे हैं कि मौसम का मिजाज समय अनुसार बदलता जाता है और इसके अनुरूप अपने आप को ढाल लेता है, बहारों का मौसम रंग बिरंगे फूल और सुगंध मन मस्तिष्क में घुल जाता है, धीरे धीरे ये बंधन दूर चला जाता है और उन लम्हों को याद करते रह जाते हैं। तो याद की बात हुई है, अब इस गीत को जरा सुनते हैं। आप हमें ये बताइए कि इस फिल्म में जो प्रमुख कलाकार हैं उनके नाम क्या थे।

जवाब मिला वासु की भूमिका कमल हासन ने निभाई थी और सपना बनी थी रति अग्निहोत्री। फिल्म एक दूजे के लिए का ये गाना लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीत। कितनी खूबसूरत पंक्तियां लिखी हैं आनंद बख्शी साहब ने, दुनिया में प्यार की एक ही बोली। तो बताइए कि इस एक ही बोली के साथ साथ कितने सारे गीत बनते चले जाते हैं और वो कौन सा गीत है जो आपको सबसे ज्यादा मन को लुभाता है? बताइए हमें कि इस भाव के साथ लिखा गया वो कौन सा गीत है जो आपको सबसे ज्यादा लुभाता है। हमारे श्रोताओं के कुछ संदेश हैं। मन किसी गीत नगमे की तरह खिल रहा है और किसी खास इंसान, अनजाना रिश्ते की तरफ, अपने भीतर छिपे किसी एहसास की तरफ आकर्षित हो रहा है। ये मौसम की इनायत भी हो सकती है और प्यार का एहसास भी। हमारे एक श्रोता ने बताया कि सुरीला सफर शुरू होते ही बनारस में बारिश शुरू हो गई। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई, बारिश की, ये मौसम की पहली बारिश, बहुत बहुत मुबारक। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि आज तो सुरीला सफर में शायद विवाह की बात होगी। एक ऐसा रिश्ता अनजान होते हुए भी एक दूसरे को सब कुछ सौंप देना, प्यार की असीम खुशी के साथ जीवन जीने की इच्छा और सात जन्म तक साथ निभाने का वादा करना ही जीवन है। एक और श्रोता ने कहा है कि कहा जाता है कि बंधनों के कई रूप होते हैं, सात फेरों का बंधन, सात जन्मों का बंधन, जन्म जन्मांतर का बंधन, परंतु एक बंधन और हो भी होता है, मन से मन का। बहुत सुंदर। रेशम सा कोमल, बहते हुए नीर सा पवित्र, हवाओं में खुली हुई चंदन और फूलों की महक सा, जो मन से मन की डोर को बांध कर रखता है। जब ये बंधन बनता है तो एक चुप सा मौन सा बन जाता है। यहाँ दिव्य प्रेम की अनुभूति होने लगती है जिसमें किसी अग्नि साक्षी

किसी हवन, यहाँ तक कि किसी सात वचन की भी कोई भूमिका नहीं है। यहाँ जो प्रेम डोर में बंधन होता है उसे आपस में केवल मन से मन को एक मौन ने स्वीकार किया है, न बांधने की चाहत न छूटने का डर, क्योंकि ये है मन से मन का बंधन। बहुत सुंदर बात कही आपने। और अब अगला गीत सुन रहे हैं, सुनिए और बताइए कि इस फिल्म के संगीतकार कौन हैं। और हाँ, मौसम को लेकर जो प्यार की बोली की बात है उसमें आपको सबसे सुंदर, सबसे प्यारा, मन के करीब गाना कौन सा लगता है?

धरती पे वहाँ एक अब्र जवा, देखो तो जरा क्यों झुकने लगा, ओ हो, और देख के ये क्यों दिल अपना कुछ घटने लगा, कुछ रुकने लगा, मौसम की

नजर। इकबाल कुरैशी का संगीत था इस फिल्म में लव इन शिमला का। ये गाना आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में। और हमने जो गानों के का जिक्र किया था कि ऐसे दिल के बोल, दिल की प्यार की बोली बोलने वाले कौन से गाने आपको पसंद हैं, तो हमारे श्रोताओं ने कई गाने, बड़े सुंदर सुंदर गाने भी लिख भेजे हैं। मीठे बोल बोले बोले पायलिया, और पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, रफ़ी जी सुमन जी शगुन फिल्म का गाना, और एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। एक और श्रोता ने लिखा है कि आना तो आके कभी अब जाना नहीं। एक श्रोता लिख रही है कि बाहर बरसात हो रही है और रेडियो सेट पर गानों की क्या बात है। एक और श्रोता ने बताया नजरों से कह दो प्यार में मिलने का मौसम आ गया। एक श्रोता पूछ रहे हैं कि रुम्बा कहाँ की भाषा है, इसका क्या मतलब है जी। तो अच्छा होगा कि हमारे जो कोई दक्षिण भारतीय साथी इस समय हो फेसबुक पर वो बताएं। एक बड़ा खूबसूरत सा गाना हमारे एक श्रोता ने लिख भेजा है, अरे ओ शोख कलियों मुस्कुरा देना, जो वो जब आए सुनो फूलों महक अपनी लुटा देना, वो जब आए। फिल्म

0: जब याद किसी की आती है का ये बड़ा ही सुंदर सा गीत इन्होंने हमारे साथ साझा किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक श्रोता बता रहे हैं कि फिल्म एक दूजे के लिए मैंने 1982 में पहला मैटनी शो देखा था, उस समय मैं फोर्थ ईयर कॉलेज में था। इस फिल्म ने सभी को पागल बना दिया था। और बहुत सारे संदेश और भी हैं। हमारे एक श्रोता ने कहा है कि मौसम अंगड़ाई में गदराई वसुधा के रूप सौंदर्य से बौराए आशिक मिजाजी दीवानगी को और भी दहनशील बनाती इबारत है। सुमन सुगंध व्याप्त कुसुम दल के मधुरस पान कराती और प्रेम रस बिखेरती इबारत में दीवानगी की हदें पार हो जाएं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। एक और श्रोता ने कहा है कि प्रकृति का सौंदर्य, फूलों की मुस्कान एवं भीनी खुशबू और मौसम का मनमोहक मिजाज आपस में मिलकर एक ऐसी जीवंत कविता रचते हैं जो तन और मन को गहराई से भिगो देती है। ये वो त्रिवेणी है जहां हर एक तत्व दूसरे का पूरक बनकर इस धरा को स्वर्ग जैसा अनुभव कराता है। सौंदर्य सुगंध और मौसम के संगम का सीधा असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। क्या बात कही है, बदलते मौसम के साथ प्रकृति का मिजाज भी बदलता है। आसमान में तैरते बादलों की लुका छिपी कभी रिमझिम फुहारें और क्षितिज पर बिखरती सूर्य की किरणें ऐसा समा बांधती हैं कि प्रकृति का हर कण जीवंत हो उठता है, जो आसमान के साथ जीवन में भी सतरंगी इंद्रधनुष रच देता है। तो बताइए कि ये जो इंद्रधनुष रचता है सतरंगी आसमान में बारिश के दिनों में, उस इंद्रधनुष के साथ रंगों का प्रयोग इस गाने में तो हो ही रहा है जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, और कहां कहां पर होता है, और क्या आज भी आप वैसे ही ललक कर इंद्रधनुष देखने छत पर जाते हैं या बाहर निकलते हैं जैसे बचपन में जाया करते थे?
1: नहीं नहीं।

सलील चौधरी का संगीतबद्ध किया हुआ ये सुरीला सा गाना आनंद फिल्म से मुकेश की आवाज में आपने सुना, और बहुत सारे श्रोताओं ने बताया वो गाना जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है। एक श्रोता ने लिखा है कि जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा, ये भी मुझे पसंद है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि इस मौसम का सबसे बेहतरीन सुंदर गीत जो मेरा और विविद भारती का पेटेंट परमानेंट गीत है, रिमझिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन। इस गीत का फिल्म का नाम मैंने विविद भारती रखा है, वैसे इस फिल्म का नाम है मंजिल। क्या बात है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि रफी साहब की आवाज है ये तो पहचाने, इन्होंने शायद लव इन शिमला फिल्म के उस गाने की बात की है। इसी गाने के लिए हमारे एक और श्रोता ने बताया है कि इस गाने में इलेक्ट्रिकल हवाईयन गिटार स्वर्गीय सरदार हजारा सिंह जी द्वारा बजाया गया है, और बड़ा प्यारा गीत दिल थाम चले हम, जब भी बारिश होती है तो पहले ये गाना होठों पर तैर जाता है, बरखा रानी जरा जम के बरसो, और ये पर्वतों के दायरे ये शाम का समा, ये गाना बहुत पसंद है हमारे एक और श्रोता को। मौसम आधारित गीतों में सबसे ज्यादा पसंद है ये गाना हमारे एक और श्रोता को, मौसम मौसम ये लवली मौसम, और दूसरा लोफर का आज मौसम बड़ा बेईमान है। और हमारे कुछ श्रोताओं ने दिल थाम चले गीत के बारे में बताया है कि बहुत ही रोमांटिक गाना है। एक श्रोता बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा लुभाने वाला फिल्म गीत है तीसरी कसम का, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। और ये एक और श्रोता ने कहा है कि इस गीत के बारे में केवल ये पता है कि रफी साहब गा रहे हैं। तो चलिए, हमारे जिन श्रोताओं को पता है कि इस फिल्म में रफी साहब की गीत के इस आवाज को पर्दे पर कौन अपने होठ हिला रहे हैं, तो अगर आपको पता हो तो हमें जरूर लिख भेजें। एक और श्रोता ने केदारनाथ फिल्म के गाने का जिक्र किया है, काफिराना सा है इश्क है या क्या है, ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो जैसे मिल रही हो इत्र से हवा, बहुत सुंदर गाना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, ये इनका गाना बहुत इन्हें प्रिय है। तमिल भाषा का शब्द है रुम्बा, हमारे एक श्रोता ने बताया है। और एक और श्रोता कह रही है कि आपकी दुआ का असर हुआ है, कल बनारस में रात को एक घंटा रिमझिम बारिश हुई थी, हमारे सभी पेड़ पौधे बारिश के पानी से भीग गया था, जैसे खिल गया सब पेड़ पौधे, बनारस में मौसम सहनीय हो गया है, आपको ढेर सारा शुभेच्छा। आप नहीं वर्षा के बाशिंदों को दुआ भेजिए जी, जरूर वहां बारिश होगा। क्या बात है भाई, हम तो बिल्कुल भेज रहे हैं अपने उन सभी श्रोताओं के लिए, ठंडे ठंडे बादल वहां तक पहुंचे। और अब ये गाना आप सबके लिए, जरा इस गीत को सुनिए, फिल्म का नाम और प्रमुख कलाकारों के नाम बताइए।

इंद्रधनुष को लेकर हमने जो सवाल पूछा था उसके जवाब कई देखने को मिले। इंद्रधनुष को देखना अच्छा लगता है बचपन में भी और अब भी, इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। और एक और श्रोता ने बताया कि मैं अमेरिका के नियाग्रा फॉल देखने गई थी, वहां मैंने एक ही जगह पर ही छोटे छोटे बहुत से इंद्रधनुष हर थोड़ी थोड़ी दूर पर देखे जो बहुत अजूबे से लगे। वाकई हम तो सोच रहे हैं कि क्या नजारा होगा वो। एक और श्रोता ने कहा है कि असल जिंदगी में मुंबई में इंद्रधनुष नहीं दिखता, आज का प्रोग्राम मुझे प्रोत्साहित कर रहा है कि मुंबई से बाहर जाके इंद्रधनुष देखूं। क्या बात है। एक और श्रोता ने कहा है कि इंद्रधनुष जब भी बादलों से झांकता था हम रंग गिनने लग जाते थे, शहरों में कम दिखाई देता है, मिस यू। सच में इंद्रधनुष जब भी दिखता है तो लगता है वाह वो दिन लौट आए। एक और श्रोता ने कहा है कि हम तो अभी भी इंद्रधनुष उतनी ही ललक के साथ देखते हैं, और एक बार तो दो एक साथ इंद्रधनुष निकले थे तो इच्छा भी मांग ली। हाँ ये टोटका तो बहुत ही ज्यादा कारगर होता था, और कितना इसको जो सबसे पक्की सहेलियां होती थी वो तुरंत दौड़कर बुला ले जाती थी कि चलो चलो दो इंद्रधनुष निकले हैं, जो मांगना है मांग लो। और बहुत बार मांगा जाता था कि भाई गणित का पर्चा बड़ा खराब होने वाला है, नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो वो उसमें अच्छे नंबर आ जाए, या कि हमें ये ड्रेस मिल जाए, कुछ इस तरह की ख्वाहिशें होती थी। आपने क्या कभी ऐसी कोई ख्वाहिश की है हमें जरूर बताइएगा। एक और श्रोता कह रहे हैं कि रुम्बा ये तमिल शब्द है, मतलब बहुत ज्यादा, बहुत या बहुत ज्यादा। एक और श्रोता ने कहा है रंग तो जीवन शैली का अभिन्न अंग है, शिक्षा हो, सजावट हो, प्रकृति हो, विज्ञान हो या जीवन ही क्यों ना हो, ये सात रंग ही असली हैं, बाकी सब नकली है। बरसातों में दूर पहाड़ पर ये इंद्रधनुष मनमोहक होता है। और ये भी तो बताइए कि इन सात रंगों का, इन सात की ये गिनती जो है वो सुरों में भी इस्तेमाल होती है, सात सतरंगी सपने भी होते हैं और इंद्रधनुष तो होता ही होता है। एक श्रोता ने कहा है कि हमारी सगाई के बाद जब पारिवारिक फंक्शन में होने वाली धर्मपत्नी से मुलाकात हुई थी तो मौका देखकर अकेले में ये गीत गाकर सुनाया था, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा, ये सुनकर वो मुस्कुराई। ये प्यार आज

तक कायम है और अंतिम सांस तक रहेगा। वाह बहुत सुंदर बात। एक और श्रोता कह रहे हैं, वाह बहुत सुंदर, मैंने तेरे लिए सात रंग के सपने, सुरीले सपने चुने, हर अंतरे में कई भावों को बांधकर दिल की बातें करता हुआ प्रतीत होता है, मुकेश जी की आवाज। और ये हमारे श्रोताओं ने कुछ संदेश में कहा है रजनीगंधा की बात। रजनीगंधा संग खिलता मन अक्सर किसी अनजाने से बंधन की महक से सराबोर हो जाता है। जिंदगी की आपाधापी में जब कोई खास करीब आता है तो भावनाएं धीरे धीरे से दिल में अपनी जगह बनाने लगती हैं। शुरुआत भले ही खामोश हो, लेकिन जैसे ही दिलों के तार जुड़ते हैं, जीवन के सारे सुर सुरमयी हो जाते हैं और बिखरे हुए जज्बात सिमट कर एक मुकम्मल ताल में बंध जाते हैं। बड़ी सुंदर बात कही आपने। तो चलिए अब अगला गाना सुनते हैं। इस गाने को सुनकर बताइए कि इस फिल्म में प्रमुख भूमिका में अभिनेत्री कौन थी। और साथ ही आपको यह भी बताना है कि ये जो फूल है रजनीगंधा, ये गुलदानों में बहुत लोकप्रिय होता है, या कभी हम जब किसी को बुके गिफ्ट करते हैं, आपको अपने फ्लावर वेज में कौन सा फूल सबसे सुंदर लगेगा? अगर आप किसी को देना चाहें या घर में सजाना चाहें, कौन सा फूल सबसे सुंदर लगता है?

पिछले गीत के सवाल का जवाब नजर आया। हमारे श्रोताओं ने बताया कि प्रेम गीत फिल्म के का जो गाना हमने सुनवाया था और पूछा था कि प्रमुख कलाकार कौन से हैं, राज बब्बर और अनीता राज पर फिल्माया गया है ये गाना और इनकी लिस्ट का ये पांचवा गीत शामिल हुआ। बहुत बहुत बधाई। और एक और श्रोता ने बताया कि जबलपुर का मौसम

0: बड़ा खुशगवार हो गया है। बरखा रानी आज सुबह से ही बरस रही हैं। सुबह सुबह छत पर जाकर सूर्य नमस्कार करने की आदत है। आज जब छत पर गए तो रिमझिम फुहारों और फुहारों के साथ फूलों का झूमना, पंछी की मधुर आवाज दिल को अजीब सुकून दे रही थी। ये मंजर हमने वीडियो में कैद कर लिया है। आज की बारिश शायद ये कहना चाह रही है, रजनीगंधा फूल तुम्हारे यूं ही महके जीवन में, ये पल हमें याद आएंगे, मौसम मस्ताना रास्ता अनजाना। अच्छा, इन्होंने कुछ और गीत भी बताए हैं, क्या मौसम है चल कहीं दूर निकल जाए। हाँ, ये भी बहुत सुंदर ही सा गीत है। एक श्रोता ने बताया कि बचपन में जब इंद्रधनुष दिख जाता था तो हम कुछ विश मांगते थे, और एक श्रोता ने कहा है कि वाह क्या सुंदर प्रश्न पूछा आपने, हम तो जब भी वर्षा ऋतु में मेघों का आगमन होता है तो मोबाइल लेकर छत पर चढ़ जाते हैं, रूई जैसे सुंदर सुंदर मेघों की क्लिक्स लेने के लिए। खूब सारी क्लिक्स लेते हैं लेकिन फिर वापस भागना पड़ता है भीगने के डर से, स्वयं नहीं मोबाइल के। सच में मोबाइल बचाना बहुत जरूरी है इस मौसम में। एक और श्रोता कह रहे हैं, जो हमने छोटे छोटे इंद्रधनुषों वाला एक संदेश पढ़ा था उसी से संबंधित है ये संदेश हमारी एक और श्रोता का। लिखा है, ये तो हमने भी देखा क्योंकि कनाडा और अमेरिका दोनों के बीच का नजारा ही है नियाग्रा फॉल्स पर, बड़ा ही प्यारा नजारा, हम कभी नहीं भूल सकते, वो इतना प्यारा समा, वो पल मानो हमारे दिल में सदा के लिए बस गया है। एक और श्रोता ने कहा है कि मौसम की बातें हो रही हैं तो आज सभी को गरजते बरसते बादलों का इंतजार है, लेकिन कुदरत भी और इंतजार करा रही है। इंतजार के इस वक्त के लिए इनको गीत याद आया है, कहां से आए बदरा, फिल्म चश्मे बदूर का गाना। और एक श्रोता कह रहे हैं कि भाई इंद्रधनुष प्रेमी इंद्रधनुष को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भली भांति देख सकते हैं और अपने अपने दुनिया को मुट्ठी में भरकर खुश हो सकते हैं। भाई ये कुछ मतलब ठीक है, देख सकते हैं, लेकिन देखने के साथ जो उसको एक उल्लास जुड़ा रहता है वो कैसे महसूस होगा। ये हमारे एक श्रोता ने मैसेज भेजा है कि आज कालिख वक्त एहसास और यादों के खूबसूरत ताने बाने को बुनता है, ये महज एक कुछ पंक्तियां नहीं बल्कि जिंदगी के सुरीले सफर का एक जीवंत दस्तावेज है। इसमें एक ऐसे रूमानी मौसम का जिक्र है जो अपने साथ सतरंगी ख्वाब लेकर आया है, जहां अनजाने रिश्ते भी सदियों पुराने लगते हैं। जैसे जैसे ही रजनीगंधा की भीनी खुशबू हवाओं में घुलती है, जिंदगी का हर बिखरा सुर एक मुकम्मल ताल बन जाता है। ये लम्हा भले ही हमेशा न ठहरे पर जाते जाते दिल में ताउम्र मुस्कुराने वाली एक मीठी कसक छोड़ जाता है। सच में एक और श्रोता ने कहा है कि पुष्प बहार का सुहाना मौसम, सुगंधित फूलों की महक जीवन को खुशियां प्रदान कर रही है, सृष्टि देवता खिलकर प्रसन्नता से हंस रही है, मन भावन गीत तन्मयता से गुनगुना रही है। बिल्कुल बादल बिजली चंदन पानी और सुमन सुगंध की तरह धीरे धीरे यह मस्ताना मौसम एक मीठी मीठी सी चुभन और ठंडी ठंडी सी अगन हमें अर्पित कर रहा है। सुरीले सफर में आज ऐसे ही कुछ मधुर गीत, और इन्होंने कुछ गीतों का भी जिक्र किया है। और बड़ी खुशी की बात है कि ये शुरुआत में भेजा हुआ संदेश, इसमें से कई गाने हमारी लिस्ट से मैच हो गए। एक और श्रोता ने कहा है कि कलियां और बहारों की तो बातें हैं, और रजनीगंधा फूल तुम्हारे यूं ही महके जीवन में, आओ मिल जाए हम सुमन और सुगंध की तरह, ये कुछ इन्होंने गीत लिखे हैं, तो चलिए ये गीत भी शामिल हो गए। और एक और श्रोता ने कहा है कि फूल और कलियों की बातों पर इन्होंने अपने चारों तरफ उन्हें खिलते हुए महसूस किया है। अब ये कार्यक्रम का आखिरी गीत आपके लिए, इस गीत को सुनिए, बताइए फिल्म का नाम और प्रमुख कलाकारों के नाम।
1: अभी अलविदा मत कहो।

रात होगी लेकिन यादों के ये चिराग जलते रहेंगे। हमारे श्रोताओं ने बताया निकाह फिल्म का ये गाना आपने सुना। महेंद्र कपूर की आवाज, हसन कमाल के बोल, रवि का संगीत, राज बब्बर और सलमा आगा की ये फिल्म। और बहुत सारे संदेश भेजे हैं उन फूलों के बारे में। हमारे एक श्रोता ने कहा है, रजनीगंधा तो सच में दिल से दिल की आवाज पहुंचाने का जरिया है। मानो हमारी गुरु स्वरूपा दीदी ने जब इतने प्यार से हमारे सत्संगी सखी के लिए रजनीगंधा फूलों का गुलदस्ता भेजा तो नेत्रहीन हो चुकी और डायलिसिस पर चल रही सखी फूलों को पाकर खुशी से झूम उठी और रजनीगंधा फूल तुम्हारे गीत गुनगुनाने लगी। उनकी खुशी देखकर हम सब भी खुशी से सारे दर्द भूल कर उनके साथ झूमने लगे। ये बदलाव पर व्यंग है जिसकी गिरफ्त में हम सभी प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग का दर्द झेल रहे हैं। हमारे एक और श्रोता ने कहा है, जो उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया पर देख सकते हैं और कर सकते हैं। और हमारे और श्रोताओं के भी संदेश हैं, लेकिन अब कार्यक्रम का वक्त हो रहा है। एक श्रोता कह रही है कि फ्लावर वास से ज्यादा हमको ये जो पेड़ों पर फूल अच्छे लगते हैं, पेड़ पौधों पर अच्छे लगते हैं, क्योंकि फ्लावर वास में ये जल्दी से मुरझा जाते हैं। हाँ, सच में मुरझा जाते हैं, लेकिन यादों की खुशबू कभी कम नहीं होती और कभी नहीं मुरझाते वो फूल जो मीठी मीठी बातों के साथ हमारे मन में यादों के रूप में सुरक्षित रहते हैं। इन्हीं बातों के साथ अब दीजिए राजुल को इजाजत। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन, विविध भारती।